कूड़ी रास कूड़ा व्यापार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहे भरपूर मत्थे टिका तेड़ धोती का खाई हाथ छुरी जग कसाई नील वस्त्र लै हुए परवान मलेश तान लै पुजे पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देख के चौका कड्डी कार।

0: ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋ ਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾ ਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਵੇਰ ਦੇ 6 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में लोगों से ईंधन का संयमित उपयोग करने की अपील की।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं का उद्देश्य राज्य को विनिर्माण के केंद्र के रूप में स्थापित करना, यातायात संपर्क मजबूत करना, रोजगार सृजित करना, परिचालन तंत्र में सुधार और सुरक्षा को बढ़ावा देकर लोगों को बेहतर यात्रा सुविधा प्रदान करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। श्री मोदी सोमनाथ महादेव की पूजा करेंगे और कुंभ अभिषेक करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और रोड शो में शामिल होंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हेमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में एनडीए के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है। भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के विधायक दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। स्पेन के कैनरी द्वीप समूह के पास जहाज पर घातक हंता वायरस प्रकोप के बाद यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को उतारकर उनके देशों में भेजा जा रहा है। बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए सभी यात्रियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोटोकॉल के अंतर्गत रखा गया है। स्पेन और फ्रांस के नागरिकों को लेकर सरकारी विमान स्थानीय समय अनुसार कल दोपहर मैड्रिड और पेरिस पहुंचे। यात्रियों को परीक्षण के लिए अस्पताल ले जाया गया। कनाडा, तुर्की, ब्रिटेन, आयरलैंड और अमेरिका के नागरिकों के आज पहुंचने की संभावना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जहाज के सभी यात्रियों के लिए 42 दिन के क्वारंटाइन की सिफारिश की है। स्पेन में भारतीय दूतावास ने कहा है कि हंता वायरस से प्रभावित जहाज से उतारे गए दोनों भारतीय नागरिक सुरक्षित हैं और उनमें बीमारी के कोई लक्षण नहीं है। इस जहाज पर दो भारतीय सहित लगभग 150 लोग सवार थे। रूस ने कहा है कि वह नाटो या जर्मनी के साथ युद्ध नहीं चाहता, लेकिन यूरोप में संयुक्त परमाणु सुरक्षा कवच पर चर्चाओं से महाद्वीप का रणनीतिक संतुलन बिगड़ सकता है। जर्मनी में रूस के राजदूत सर्गेई नेचेयोव ने बर्लिन में कहा कि यूरोप में परमाणु खतरे के किसी भी विस्तार से रूस को अपने परमाणु सिद्धांत पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर मॉस्को को सैन्य खतरों का सामना करना पड़ा तो वो संयम की गारंटी नहीं दे पाएगा। भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। सेमीफाइनल में कल यश कुमार ने 33 किलो वर्ग संयुक्त अरब अमीरात के कियान इकबाल

0: अल को 5-0 से हराया। 37 किलो वर्ग में वसंत अशोक कुमार ने किर्गिस्तान के अजतरेताली संचार बेकोफ को हराया। वहीं 43 किलो वर्ग में समीर बोहरा ने उज्बेकिस्तान के अदिजबेक इखलो में वो को 4-1 से जीत दर्ज की, जबकि सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में ईरान के अमीर मेहदी शाद को पराजित किया। 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने ईरान के सैयद दरिया मोहम्मद मूसा को, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने किर्गिस्तान के मुखमदाली बेर्दिकोव को हराया। रोहित पोथियाना, नितिन नोकपोंगकनबा, मेतई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया है। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इससे पहले चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 5 विकेट से हराया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स से असी आकाशवाणी के जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। ज्ञान अमृत

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स, डीआरएम 864 किलोहर्ट्स, एफएम बैंड 100.8 मेगाहर्ट्स, 100.9 मेगाहर्ट्स, ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। आओ हुण सुनिए खेतीबाड़ी प्रोग्राम।
1: खेतीबाड़ी

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्यवंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਰ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਪਰਿਚੈ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਤੱਕ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਸਮਾਂ। ਮੀਡੀਅਮ ਵੇਵ 343.6 ਮੀਟਰ ਯਾਨੀ 873 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, DRM 864 ਕਿਲੋਹਰਟਸ, FM ਬੈਂਡ 100.8 ਮੈਗਾਹਰਟਸ, 100.9 ਮੈਗਾਹਰਟਸ ਅਤੇ DTH ਦੀ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਸੇਵਾ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਜ਼ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵੇਰ ਦੇ 6:55 ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਪਲਾਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਵਿੱਚ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਇਯਮ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੰਪ੍ਰਤਿ ਵਾਰਤਾ ਹਸ਼ਰੂਯਂਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਚਕਃ ਡਾਕਟਰ ਗਣੇਸ਼ ਹੈਗੜੇ। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ह्यः तेलंगाना राज्ये प्रायः 400-900 कोटि रूप्यकाणां आधारभूत संरचनानां औद्योगिक परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासञ्च कृतवान्। तत्पश्चात् सभां संबोधयन् प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् केन्द्र सर्वकारेण कृतानां प्रयासानां कारणात् भारतदेशः पश्चिम एशिया संघर्ष जनितं ऊर्जा संकटं प्रभावी रीत्या नियंत्रयति। सः अवदत् यत् आयातित पेट्रोलियम उत्पादानां संयमेन उपयोगः अद्यतनीय आवश्यकता वर्तते।
2: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
1: इदानींतन वर्षेषु वैश्विक सौर ऊर्जा उत्पादकेषु शीर्ष श्रेण्यां भारतस्य उल्लेखनीयां प्रगतिम् उद्धृत्य प्रधानमन्त्रिणा उक्तं यत् पेट्रोल ईंधनेन सह इथेनाल इत्यस्य मिश्रणे अपूर्व प्रगतिः अभवत्।
2: बीते सालों में सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप देशों में पहुंच चुका है। पेट्रोल में इथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर अभूतपूर्व काम हुआ है। पहले हमने 100% एलपीजी कवरेज पर फोकस किया, अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: प्रथमस्य ज्योतिर्लिङ्गस्य श्री सोमनाथ महादेव मन्दिरस्य पुनर्निर्माणस्य 75 वर्षपूर्त्यवसरे अद्य प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी ऐषमः श्री सोमनाथ अमृत पर्व उत्सवे भागं गृहीष्यति। श्रीमोदी भगवतः श्री सोमनाथस्य प्रार्थनां करिष्यति, कुम्भाभिषेकञ्च विधास्यति, अनन्तरं जनसभाञ्च सम्बोधयिष्यति। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेलः, उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी, अन्ये नेतारश्च उपस्थिताः भविष्यन्ति। पश्चिमबंगालस्य मुख्यमंत्री सुवेन्दु अधिकारी अद्य नबन्ना इत्यत्र स्थिते राज्यसचिवालये मंत्रिमंडलस्य अध्यक्षतां करिष्यति। पञ्चमन्त्रिणां कृते विभागानां वितरणस्य सम्भावना वर्तते। इमे च शनिवासरे ब्रिगेड परेड ग्राउण्ड इत्यत्र मुख्यमन्त्रिणा सह पदस्य गोपनीयतायाः च शपथग्रहणं कृतवन्तः आसन्। नूतनमन्त्रिमण्डले भाजपादलस्य निर्वाचनप्रणाल्याः विषये चर्चा भविष्यति इत्यपेक्षा वर्तते। आयुष्मानभारतम्, अन्नपूर्णाभण्डारः, राज्यसर्वकारीयकर्मचारिणां कृते सप्तमवेतन आयोगस्य कार्यान्वयनम् इत्यादीनां मुख्यविषयाणाम् उपरि अपि चर्चा भवितुं शक्यते। अस्मिन् अवसरे मण्डल दण्डाधिकारिभिः, पुलिस इति आरक्षि अधीक्षकैः, विभिन्न विभागानां सचिवैः सह प्रशासनिक विधि व्यवस्था विषयाणां समीक्षा भविष्यति। अवधेयं यत् नवनिर्वाचिताः विधेयकाः अपि अस्यां सभायाम् उपस्थिताः भवेयुः। असमराज्यस्य राज्यपालः लक्ष्मणप्रसाद आचार्यः मुख्यमंत्री पदाय निर्वाचितं हिमन्त बिश्व शर्माणं राज्ये नूतनसर्वकारस्य घटनार्थम् आहूतवान्। भाजपा नेतृत्वेन एनडीए इत्यस्य विधायक दलस्य सर्वसम्मत्या नेतृरूपेण निर्वाचित

0: श्री हेमंत शर्मा घटबंधन नेतृभिः सह लोकभवने राज्यपालं मिलित्वा औपचारिक रूपेण सर्वकारस्य घटनार्थं प्रतिवेदनं दत्तवान्। राज्यपालः श्वः हेमंत विश्वशर्मणे नूतन मंत्रिपरिषदः सदस्येभ्यश्च पदस्य गोपनीयतायाः च शपथं प्रदास्यति। शपथग्रहण समारोहः खानापारा इत्यत्र पशुचिकित्सा महाविद्यालयस्य क्रीडांगणे आयोजितं भविष्यति, यस्मिन् प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः, रक्षामंत्री राजनाथ सिंहः, भाजपा अध्यक्षः नितिन नवीन इत्यादयः भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षा वर्तते। इति वार्ताः।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज से असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। सवेर दे 7 बज चुके ने, हुण तक दी मुख खबरां सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार दे यत्ना सदका भारत पछमी एशिया विच टकराव तो पैदा होने वाले ऊर्जा संकट नाल प्रभावशाली ढंग नाल निजिठ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने संतावित हड़ां ते लू की स्थिति नाल निजिठण लई देश दीआं तैयारियां दा जायजा लिया। उत्तर प्रदेश विच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मंत्रिमंडल का पसार किया। 6 भाजपा नेतावां ने मंत्री वजों सहुं चुकी। गुरुग्राम की एक विशेष PMLA अदालत ने मनी लॉन्डरिंग मामले विच पंजाब दे सनत मंत्री संजीव अरोड़ा नूं ED दी 7 दिनों की रिमांड ते भेज दिता। वाइस एडमिरल संजय वात्सायन नूं मुंबई स्थित समुद्री फौज की पछमी कमान का अगला फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ नियुक्त किया गया। राज्यसभा मैंबर संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तीजे गेट दौरान पंजाब विच 835 करोड़ की लागत नाल सड़कां बनणगियां। स्कूली सिक्ख्या विच पंजाब नीति आयोग की रिपोर्ट विच देश का सब तो वधिया कारगुजारी दिखाउण वाला सूबा बनिया। सिक्ख्या मंत्रालय गर्मी दीआं छुट्टियां दे दौरान देश भर के सारे स्कूलों विच भारती भाषा समर कैंप 2026 ला रहा है। जिला फतेहगढ़ साहब के पिंड हिंदूपुर नेड़े कार ते मोटरसाइकिल की टक्कर होने कारण मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्तियों की मौत हो गई। मौसम विभाग ने पंजाब ते हरियाणा विच अज लई मीह पैण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी किया। ISSF विश्व कप निशानेबाजी विच नीरू टांडा ते विवान कपूर की भारतीय जोड़ी ने ट्रैप मिक्सड टीम मुकाबले विच कांसे दा तमगा जितया। ते IPL क्रिकेट विच चेन्नई सुपर किंग्स ने कल लखनऊ सुपर जॉइंट्स नूं 5 विकटां नाल हराया। दूजे मुकाबले च रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस नूं 2 विकटां दे नाल हराया। ए सन हुण तक दीआं मुख खबरां। अगलियां मुख खबरां तुसीं सवेरे 9 बजे सुणोगे। ते आकाशवाणी जलंधर तों हुण प्रोग्राम सोहणी सवेर।

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चाहवान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सहित बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजन। अर्जियां भेजन लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजन की आखिरी तारीख 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहित जानकारी अते खाली फार्म साड़ी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकता है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावे।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से एक वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे, वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच चारधाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया और AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार के प्रयासों के कारण भारत पश्चिम एशिया संघर्ष से उत्पन्न ऊर्जा संकट का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रहा है। श्री मोदी ने तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में एक जनसभा में नागरिकों से एक वर्ष के लिए पेट्रोल और डीजल के संयमित उपयोग, अनावश्यक विदेशी यात्रा से बचने, सोने की खरीदारी नहीं करने और स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता देने जैसे उपाय अपनाने की अपील की।
1: जो एनर्जी प्रोडक्ट हम विदेशों से मंगाते हैं, हमें प्रयास करना है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें। इससे विदेशी मुद्रा की भी बचत होगी और युद्ध के संकट से होने वाले दुष्प्रभाव को भी कम किया जा सकेगा।
0: प्रधानमंत्री ने हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की ढांचागत और औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उप मुख्यमंत्री हर्ष सांघवी भी उपस्थित रहेंगे।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हवाई मार्ग से जामनगर से सोमनाथ पहुंचेंगे। हेलीपैड पर उतरने के बाद वे वीर हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो के दौरान जनता का अभिवादन स्वीकार करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंगी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
0: बाद में प्रधानमंत्री वडोदरा जाएंगे। वे शाम लगभग 6 बजे सरदार धाम हॉस्टल परियोजना का उद्घाटन करेंगे। इस परियोजना में 1,000 लड़कों और 1,000 लड़कियों के लिए हॉस्टल की सुविधाएं शामिल हैं। इसमें सेंट्रल डाइनिंग हॉल, पुस्तकालय और ऑडिटोरियम जैसी सुविधाएं भी हैं। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे, जिनमें रिसेप्शन एरिया, नागरिक सुविधाएं, डाइनिंग एरिया और ई लाइब्रेरी शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने श्री हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। इससे राज्य में NDA के लगातार तीसरे कार्यकाल का रास्ता साफ हो गया है।
3: सर्वसम्मति से भाजपा के नेतृत्व वाले NDA विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद श्री शर्मा ने गठबंधन के नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की और औपचारिक रूप से सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और नई मंत्रिपरिषद के सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह खानपाड़ा के वेटरनरी कॉलेज मैदान में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई गणमान्य लोगों के समारोह में शामिल होने की संभावना है। NDA में भाजपा, असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट शामिल हैं। गठबंधन ने विधानसभा चुनावों में 126 में से 102 सीटें जीती। भाजपा ने 82 सीटें हासिल की। श्री शर्मा पहली बार 2021 में मुख्यमंत्री बने थे। वह असम में पहले ऐसे गैर कांग्रेसी नेता बनने जा रहे हैं जो लगातार दो बार मुख्यमंत्री के पद पर रहेंगे। समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नवन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
4: पश्चिम बंगाल की नई

0: सरकार अपनी प्रशासनिक यात्रा शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नमन्न में पहली कैबिनेट बैठक करेंगे। उस बैठक में 5 नए शपथ ग्रहण किए गए मंत्रियों का विभागों का अन्य विभागों पर भी निर्णय लिए जाने की उम्मीद है। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चुनावी वादे एजेंडा में सबसे ऊपर रहेंगे, जिनमें आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का क्रियान्वयन, अन्नपूर्णा भंडार और राज्य कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग का लागू होना शामिल है। आज मुख्यमंत्री सचिवों, जिला मजिस्ट्रेट और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी मिलेंगे, ताकि प्रशासनिक कार्यों का गति और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की जा सके। संदीप अंदाज गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस और वामपंथी दलों ने भाजपा के खिलाफ संयुक्त विपक्षी मोर्चा बनाने के ममता बनर्जी का प्रस्ताव खारिज कर दिया है। ममता बनर्जी ने कांग्रेस, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी और कट्टर वाम दलों सहित सभी विपक्षी दलों से भाजपा के खिलाफ एकजुट होने का आह्वान किया था। कांग्रेस प्रवक्ता सौम्या एच रॉय ने ममता बनर्जी की अपील खारिज करते हुए पूछा कि वो कट्टर वामपंथी समूह की बात क्यों कर रही हैं। उन्होंने 2013 में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ माओवादी हिंसा का भी जिक्र किया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर पिछले चुनावों में कांग्रेस को बदनाम करने और भाजपा के उदय को बढ़ावा देने का आरोप लगाया और कहा कि ममता बनर्जी ने ही भाजपा को बंगाल में पैर जमाने का मौका दिया। माकपा के प्रदेश सचिव मोहम्मद सलीम ने भी इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए ममता बनर्जी को भ्रष्ट और सांप्रदायिक बताया। सीपीआई के प्रदेश सचिव स्वप्न बंदोपाध्याय ने कहा कि ममता बनर्जी के साथ जुड़ने का कोई सवाल ही नहीं है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तराखंड सरकार ने चारधाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति के बीच सतर्क रहने तथा सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है।
4: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से यात्रा के दौरान मौसम के बारे में ताजा जानकारी रखने और सावधानी के साथ यात्रा कार्यक्रम तैयार करने का आग्रह किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। सभी संबंधित सरकारी विभागों को यात्रियों के लिए आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए गए हैं। समाचार कक्ष से मैं SB त्रिपाठी।
1: पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार कर दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान का प्रस्ताव खारिज कर दिया है।
5: इससे पहले कल ईरान ने कहा था कि उसने पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका के प्रस्ताव पर जवाब भेजा है। यह जवाब पाकिस्तान के माध्यम से भेजा गया, जो ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता की भूमिका निभा रहा है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने कहा कि पश्चिमी देशों के साथ बातचीत को आत्मसमर्पण या पीछे हटने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इस बीच इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप से बातचीत की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय सुरक्षा स्थिति पर चर्चा की। इसराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के उच्च संवर्धनित यूरेनियम भंडार को की आवश्यकता पर सहमत हुए, जो वार्ता का प्रमुख मुद्दा बना हुआ है। ईरान ने चेतावनी दी है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में अमेरिकी समुद्री अभियानों के साथ फ्रांसीसी या ब्रिटिश युद्धपोतों की किसी भी तैनाती का निर्णायक और तत्काल जवाब दिया जाएगा। फ्रांस के अधिकारियों ने कहा कि परमाणु ऊर्जा से चलने वाले विमान वाहक पोत चार्ल्स डी गॉल, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री की स्टार्मर के नेतृत्व में रणनीतिक जलमार्ग में नौवहन की स्वतंत्रता बहाल करने के प्रयासों के तहत इस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। समाचार कक्ष से कृष्ण।
1: और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं अर्जुन शर्मा।
6: सुजो में AFC अंडर 17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज मेजबान चीन और भारत आमने सामने होंगे। ये मैच जीतते ही भारत फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में जगह पक्की कर लेगा। भारत इससे पहले 2017 और 2022 में मेजबान के तौर पर इस विश्व कप में हिस्सा ले चुका है, लेकिन उसने प्रतियोगिता के जरिए क्वालिफाई नहीं किया था। भारत ने ग्रुप स्टेज में शानदार प्रदर्शन करते हुए क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। इस बीच भारत के 6 खिलाड़ी ताशकंद में एशियाई अंडर 15 मुक्केबाजी चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए, जबकि 7 को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। फाइनल में कलयश कुमार ने 33 किलो वर्ग में, 37 किलो वर्ग में वसंत कुमार ने 43 किलो

0: वर्ग में समीर बोहरा ने, सुदर्शन वासुदेव चांडक ने 52 किलो वर्ग में, 58 किलो वर्ग में मोहम्मद यासिर ने, जबकि 67 किलो वर्ग में रौनक पराग लोखंडे ने जीत दर्ज की। रोहित पोथीना, नितिन नोंगो पोकांगवा, मेईतेई ओइना, प्रशांत हर्षवर्धन जीना, देव और सुशांत जयानी को सेमीफाइनल में हार का सामना करना पड़ा। इधर आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को 2 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने निर्धारित 20 ओवर में 166 रन बनाए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने 8 विकेट खोकर जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। भुवनेश्वर कुमार को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में आज शाम 7:30 बजे धर्मशाला में पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा।
1: पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरों को कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग भाग लेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0112-3104-8, 0112-3717-1-7 और 0112-3717-1-6। व्हाट्सएप नंबर 9289-09-4044 पर भी सवाल पूछे जा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
2: धन्यवाद विशाल। पश्चिम एशिया संकट से उत्पन्न चुनौतियों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देशवासियों से आह्वान, दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। पेट्रोल डीजल और गैस का संयम से करें इस्तेमाल। राजस्थान पत्रिका ने पीएम के हवाले से लिखा है, 1 साल सोना नहीं खरीदें, वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन मीटिंग करें। हिंदुस्तान ने आर्थिक विशेषज्ञों के हवाले से लिखा है, प्रधानमंत्री की अपील का सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद, आयात बिल घटने से अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। तमिलनाडु में नई सरकार का गठन भी अखबारों की सुर्खी बनी है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तमिलनाडु में विजय राज, 6 दशक बाद गैर द्रविड़ सरकार, टीवीके प्रमुख विजय ने ली सीएम की शपथ। वहीं देशबंधु की सुर्खी है, केरलम में नए मुख्यमंत्री के नाम को लेकर संशय बरकरार। बदलाव का चेहरा शीर्षक से अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, तमिलनाडु में द्रविड़ राजनीति का चक्र तोड़ते हुए थालापति विजय का मुख्यमंत्री बनना इस बात का प्रतीक है कि राज्य नई ऊर्जा, नई सोच और नए राजनीतिक प्रयोग की ओर बढ़ रहा है। ये देखना महत्वपूर्ण होगा कि मुख्यमंत्री विजय केंद्र राज्य संबंधों में संतुलन बनाने में कैसी परिपक्वता दिखाते हैं और सुशासन की मिसाल कायम करते हैं। भारत की सभ्यता का प्रतिबिंब सोमनाथ शीर्षक से केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री का लेख नवभारत टाइम्स में है। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने लिखा है, कोई सभ्यता तब तक मजबूत रहती है जब तक वो अपनी जड़ों से जुड़ी रहे। लोकतंत्र की ताकत संघर्ष में नहीं बल्कि संतुलन और सम्मान में है, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का ये बयान पंजाब केसरी में है। एक कार्यक्रम में गृहमंत्री ने कहा कि 1947 से संसद और विधानसभाओं द्वारा लाए गए बदलाव देश में लोकतंत्र की मजबूती को बताते हैं। झूठ को तोड़ता और सच को जोड़ता चीन सीमा पर सेना का रेडियो। दैनिक ट्रिब्यून के अनुसार भारत चीन सीमा से लगे हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सेना के ये रेडियो स्थानीय बोलियों में मौसम के अलर्ट के साथ साथ संवेदनशील सीमा पर गलत जानकारी से निपटने में मददगार साबित हो रहे हैं।
1: धन्यवाद फरहत। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच नागरिकों से 1 वर्ष तक सोना नहीं खरीदने, ईंधन की खपत कम करने और विदेशी मुद्रा संरक्षित करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री आज गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। वडोदरा में सरदार धाम हॉस्टल का शुभारंभ करेंगे। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्वा सरमा को राज्य में नई सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। उत्तराखंड सरकार ने प्रतिकूल मौसम के बीच 4 धाम यात्रियों और पर्यटकों से सतर्क रहने और यात्रा के दौरान सुरक्षा बरतने का आग्रह किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया। और AFC Under-17 महिला एशियाई फुटबॉल कप के क्वार्टर फाइनल में आज भारत और मेजबान चीन सूजो में आमने सामने होंगे। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार, ए आकाशवाणी ए। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट दरमियान लोगों को एक साल लिए सोना ना खरीदन, ईंधन की खपत घटाने ते विदेशी सिक्के की बचत की अपील की थी। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नवी सरकार बनाने लिए सदा दिता है। भारत विश्व पद्धर से स्थापित नवियावणयोग ऊर्जा समर्था में तीजे स्थान पर है। उत्तराखंड प्रशासन ने खराब मौसम दरमियान चार धाम यात्रियों के सैलानियों

0: मार्च 2025 विच 74 गीगावाट हो गई है। सोलर सेल समर्था भी 9 गीगावाट तो वध के 25 गीगावाट हो गई है। रिपोर्ट ए भी उजागर करती है कि भारत हुण भी प्रमुख हिस्सों लई दरामद ते बहुत ज्यादा निर्भर करता है। उत्तराखंड प्रशासन ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं ते सैलानियों नूं राज विच खराब मौसम की स्थिति के मद्देनज़र सुचेत रहन ते सुरक्षा मापदंडां की पालना करन की अपील की थी। मौसम विभाग ने कल ते बुधवार नूं उत्तराखंड के वख-वख हिस्सों खास करके पहाड़ी इलाकों में खराब मौसम ते मीह बारे ओरेंज अलर्ट जारी किया है। गढ़वाल डिवीजन के कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने श्रद्धालुओं ते सैलानियों नूं अपील की है कि वह अपनी यात्रा दौरान मौसम बारे ताज़ा जानकारी लेंदे रहन अते उस मुताबिक ही यात्रा की योजना बनाउन। उन्होंने भी कहा कि सारे संबंधित सरकारी विभागों नूं यात्रा लई जरूरी प्रबंध यकीनी बनाउन दे निर्देश जारी किए गए ने। पश्चिमी एशिया विच टकराव नूं खत्म करन दीआं कोशिशां दरमियान अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की नवी शांति तजवीज़ नूं रद्द कर दिता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान की तजवीज़ नूं पूरी तरह रद्द कर दिता है। कल पहला ईरान ने कहा कि उसने पश्चिमी एशिया विच टकराव नूं खत्म करन दे उद्देश नाल अमरीका की नवी तजवीज़ ते अपना जवाब भेजा है। ये जवाब पाकिस्तान राही भेजा गया सी जो ईरान ते अमरीका विचकार विचोले वजों काम कर रहा है। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशियन ने कहा है कि पश्चिमी देशों नाल उन्हां दी गलबात नूं समर्पण जां पिछे हटण वजों नहीं देखा जाना चाहिदा। इस दौरान इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कल रात राष्ट्रपति ट्रंप नाल गलबात की थी। इजरायली अधिकारियों मुताबिक दोवां नेतावां ने खेतरी सुरक्षा स्थिति ते चर्चा की थी। साउदी अरब ने संयुक्त अरब अमीरात कतर ते कुवैत के खेतरां ते समुंदरी सरहदां नूं निशाना बना के कीते गए ईरान के हमलों की सख्त निखेधी की है ते खाड़ी देशों की सुरक्षा लिए अपनी हमायत दोहराई है। इस तों पहलां संयुक्त अरब अमीरात ने कल कुवैत नूं निशाना बना के कीते गए ड्रोन हमलों की भी सख्त निखेधी की सी। स्पेन के मैड्रिड विच भारतीय दूतघर ने कहा है कि हंता वायरस तो प्रभावित क्रूज जहाज विच सवार दो भारतीय नागरिक सुरक्षित ने अते उन्हां विच वायरस के कोई लक्षण नहीं ने। डेनमार्क के झंडे वाला MV होंडियस जहाज कल स्पेन पहुंचा जिस विच दो भारतीय नागरिकों समेत करीब 150 लोग सवार सन। मौसम विभाग ने अज पंजाब हरियाणा चंडीगढ़ और दिल्ली में हनेरी झक्खण नाल बिजली लिशकण की पेशीनगोई की है। जम्मू कश्मीर ते हिमाचल प्रदेश विच भी इसी तरह के हालात रहने की संभावना है। पंजाब में जलंधर होशियारपुर ते मोहाली समेत वख-वख जिलों में बदलवाई बनी हुई है ते रात के समय मीह पिया है। खेडां विच चीन दे सुजो विच औरतां दे AFC अंडर 17 एशिया कप फुटबॉल दे क्वार्टर फाइनल विच अज भारत दा मुकाबला मेज़बान चीन नाल होएगा। यह मैच जीतण ते भारतीय टीम औरतां दे फीफा अंडर 17 विश्व कप लई क्वालीफाई कर लेगी। एशियन लेवेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 अज गुजरात के गांधीनगर विच शुरू हो रही है। ये चैंपियनशिप 17 मई नूं समाप्त होएगी। ये मुकाबला भारत विच 44 साल बाद कराया जा रहा है। IPL क्रिकेट विच बीती रात रायपुर विच रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरू ने मुंबई इंडियंस नूं 2 विकटां नाल हरा दिता है। इस तों पहले एक होर मैच विच चेन्नई विच चेन्नई सुपर किंग्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स नूं 5 विकटां नाल हराया। अज धर्मशाला विच शामी 7:30 बजे पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स नाल होएगा। आखिर च खास खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिमी एशिया संकट दरमियान लोगों एक साल लिए सोना ना खरीदन ईंधन की खपत घटाउन ते विदेशी सिक्के की बचत की अपील की है। असम के राज्यपाल ने हिमंत बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार बनाने लिए सद्दा दिता है। भारत विश्व पद्धर से स्थापित नवियाणयोग ऊर्जा समर्था विच तीजे स्थान पर है। उत्तराखंड प्रशासन ने खराब मौसम दरमियान चार धाम यात्रियों ते सैलानियों नूं सुचेत रहन ते सुरक्षा मापदंडां दी पालना करन दी अपील की है। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला प्रादेशिक बुलेटिन दोपहर बाद 1:10 होएगा। नमस्कार।
1: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं।
2: एक जरूरी सूचना, आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक NRT कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विच

0: पतंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार। उमंग कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत है।
0: और अजीत का भी नमस्कार और जोहार। अब प्रस्तुत है हमेशा की तरह एक सुंदर विचार जो हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकिरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने। लिखते हैं,
2: जिंदगी जीने के लिए अनेक तरीके हो सकते हैं, मगर सर्वश्रेष्ठ तरीका वही है जिससे स्वयं को सकारात्मक और रचनात्मक संतुष्टि मिले और दूसरे को उससे कोई नई दिशा।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार के लिए। जी हाँ श्रोताओ, जो काम करना हमें अच्छा लगे वो हमें जरूर करना चाहिए। तो श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम में संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: ग्राम टेका बजरंग चौक वार्ड नंबर 2 छत्तीसगढ़ से लकी ऋषि नवरंग।
0: और खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी ने लिखा है, सर अजीत जी और मैडम विमलेश जी सप्रेम नमस्ते जी।
2: नमस्ते जी।
0: अगला संदेश हमें मिला है स्वार रोड मुरसेना से गुलफशां इदरीसी, जीनत अमान इदरीसी, नाजिया शाजिया, भाई मोहम्मद नादिर, मोहम्मद साजिद, छोटू नाहिद और पापा हबीब अहमद इदरीसी जी।
2: प्रोग्राम पेश करने वालों को हमारी ओर से आदर और सम्मान। सर और मैम, हमें उमंग प्रोग्राम बहुत ही अच्छा लगता है। इस प्रोग्राम से हमें बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं।
0: बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का संदेश भेजने के लिए। आपसे निवेदन है इसी तरह से संपर्क बनाए रखिए, संदेश भेजते रहिए। और हाँ, मात्र सुविचार भेजकर और प्रश्नों के उत्तर भेजकर ही संतुष्ट न हो जाइए, हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रिया भी जरूर दीजिए। तो अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों की। हमारा पहला प्रश्न था, दक्षिण भारत में भी बहुत से प्राचीन गुरुकुल हैं, उनमें से कुछ प्रसिद्ध गुरुकुलों के नाम बताइए।
2: इसका उत्तर है साथियों, श्रृंगेरी शारदा पीठम और कांची कामाकोटी पीठम मुख्य रूप से दक्षिण भारत के प्रसिद्ध गुरुकुल हैं।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
2: श्रोताओं, इसका सही उत्तर है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम है आर्कटिक महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये सबसे छोटा महासागर है।
0: हमारा तीसरा प्रश्न था, समुद्र के पानी में नमक किन किन स्रोतों से आता है।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के पानी में नमक लाने का सबसे बड़ा स्रोत है नदियाँ, जो चट्टानों, मिट्टियों, पर्वतों से खनिज के घोल के साथ साथ नमक को भी ले आती हैं, जो खनिजों के साथ ही मिला होता है।
0: और अब हमारा अगला प्रश्न सुनिए, जो हमने पूछा था, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं।
2: इसका उत्तर है श्रोताओं, समुद्रों को प्रदूषित होने से बचाने का सबसे पहला उपाय है नदियों को प्रदूषित होने से बचाना, क्योंकि अधिकांश नदियां समुद्रों में ही गिरती हैं और अपने साथ प्रदूषित कूड़ा कचरा ले आती हैं। दूसरा उपाय है, हम समुद्रों में कचरा खासकर प्लास्टिक न फेंकें, इससे भी समुद्र प्रदूषित होता है।
0: और हमारा अंतिम प्रश्न था, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम बताइए और ये भी बताइए कि ये कहाँ पर है।
2: जी हाँ, इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, समुद्र के सबसे गहरे स्थान का नाम है चैलेंजर द्वीप, जो प्रशांत महासागर के मारियाना ट्रेंच में फिलीपींस के पास स्थित है।
0: तो श्रोता मित्रों, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। यदि आपने हमारी प्रश्नोत्तरी में भाग लिया तो आपका आभार,
2: और यदि नहीं लिया तो हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि आप न सिर्फ भाग लें लेकिन दूसरों को भी, विशेषकर विद्यार्थियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
0: तो आइए अब सुनते हैं आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: आकार में समुद्र के सबसे बड़े जीव का नाम बताइए।
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
2: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब बारी है श्रोताओं आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम जिसका शीर्षक है
2: माई बाईसाइकिल। ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक की कविता का संगीत रूपांतर है। कार्यक्रम के द्वारा बच्चों को

0: Children, you have listened to the song just now. Did you like it?
1: Yes, sir. We liked it.
0: Very good. So remember, always, whenever we ride a bicycle, we have to be careful about our safety and also the safety of others.
2: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम माई बाइसिकल। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम
3: सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल।
4: साथियों, भारत भूमि ने एक से बढ़कर एक वीरों को जन्म दिया है, जिन पर देश को नाज है। आइए आज याद करते हैं भारतीय सेना के एक ऐसे शहीद जांबाज की कुर्बानी, जिसको अपनी अद्वितीय बहादुरी के कारण भारत का सर्वोच्च शौर्य पुरस्कार परमवीर चक्र मिला। भारत मां का ये सपूत था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल, जो जिया तो सिर्फ 20 साल, पर भारत की जनता के दिलों में उसकी यादों का दिया जलता रहेगा सालों साल। अरुण का जन्म 14 अक्टूबर 1950 को पूना में हुआ था। वे एक ऐसे परिवार से थे जिसका एक लंबा सैन्य इतिहास रहा है। अरुण का बाल्यकाल फौजी माहौल में बीता। अरुण जब 8 साल के थे तो वो सैनिकों के साथ खेलते, उनसे युद्ध की कहानियां सुनते और उन्हीं के साथ लंगर में जाकर खाना खाते। उनका जवानों के प्रति प्यार और फौज के प्रति रुझान देखकर साफ साफ पता चलता था कि अरुण ने भी फौज में भर्ती होने का मन बना लिया है। अरुण की प्रारंभिक शिक्षा उन विभिन्न स्थानों पर हुई जहां उनके पिता तैनात थे, पर अरुण के जीवन में एक निर्णायक अवसर वो भी था जब उसने सन 1962 में प्रसिद्ध सेंट लॉरेंस स्कूल सनावर में दाखिला लिया। अरुण की शिक्षा के अंतिम 5 वर्ष वहीं बीते। सनावर में बिताए उन 5 सालों में जैसे अरुण का व्यक्तित्व निखर सा गया। अपने स्कूल के बैंड में वे क्लैरिनेट बजाया करते थे। अरुण ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने 23 जून 1971 को अपना पाठ्यक्रम पूरा किया। जून 1971 में उन्हें पूना हॉर्स रेजिमेंट में नियुक्ति मिली। रेजिमेंट की परंपरा के अनुसार किसी भी युवा अधिकारी को सारे काम करने पड़ते थे, जैसे ड्राइवर, गनर, रेडियो ऑपरेटर से लेकर टुकड़ी तक का नेतृत्व। अरुण को जो भी काम मिलता

जब सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल और उनके साथियों ने सुना कि हमारी फौज पर दुश्मन के टैंकों ने जवाबी हमला कर दिया है, तो वो अपने टैंक के साथ पूरे जोश के साथ सैनिकों की मदद के लिए आगे बढ़े। अभी वो आगे बढ़ ही रहे थे कि उनके टैंकों पर भी दुश्मन ने गोले बरसाने शुरू कर दिए। टैंकों का आक्रमण होते ही अरुण ने बड़ी फुर्ती से अपने टैंक का मुंह दुश्मन की ओर मोड़कर उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। दुश्मन अरुण के इस घातक हमले को झेल नहीं पाया और पीछे हटने लगा। सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ने अपने टैंक की रफ्तार तेज कर उनका पीछा करना शुरू किया।

0: और दुश्मन के एक टैंक को नष्ट कर दिया। तभी पीछे से कमांडर का रेडियो पर आदेश आया,
1: सेकंड लेफ्टिनेंट आरोन पीछे लौटो और स्क्वाड्रन की पोजीशन से आ मिलो। अब हम एकजुट होकर फिर से हमला करेंगे।
2: यस सर।
0: आदेश सुनकर अभी वे लौट ही रहे थे कि तभी दुश्मन के टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ने उन पर धावा बोल दिया। सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल ने उनका सामना पूरी बहादुरी से किया। अभी सेकंड लेफ्टिनेंट खेत्रपाल दुश्मनों से जूझ ही रहे थे कि दुश्मन का एक गोला उनके टैंक पर आ गिरा और टैंक में आग लग गई, जिससे वे बुरी तरह घायल हो गए। पीछे से फिर आदेश आया,
1: अरुण तुम्हारे टैंक में आग लगी है, उसे छोड़ो और पीछे आओ।
3: सर मैं अपना टैंक नहीं छोड़ूंगा, अभी मेरी गन काम कर रही है और दुश्मनों को ठिकाने लगाकर ही दम लूंगा।
0: युद्ध के इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर अब उस क्षेत्र में केवल सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण ही अपने टैंक के साथ बचे थे। इसके बाद टैंकों का ऐसा भयानक युद्ध हुआ जो युगों युगों तक याद रखा जाएगा।
4: सर सर ये क्या, ये तो टैंकों की पूरी स्क्वाड्रन ही हमारी ओर बढ़ती चली आ रही है साहब।
3: इन्हें रोकना ही पड़ेगा। प्रयाग सिंह टैंक की रफ्तार तेज करो।
5: यस सर।
3: नाथ सिंह निशाना साधो।
4: यस सर। दाहिनी ओर का टैंक बिल्कुल हमारे टारगेट पर है सर।
3: फायर।
4: सर
3: ये तो क्या, अब दूसरों को देखता हूं। टर्न द गन टू द लेफ्ट।
5: जी।
3: फायर।
4: सर सर वो आखिरी वाला टैंक तो वापस मुड़ रहा है सर।
3: हाँ लगता है आक्रमण करेगा, निशाना साधो।
4: ठीक है सर।
0: दो टैंक आमने सामने खड़े थे, दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे। और उसी विस्फोट में अरुण ने वीर गति पाई। हालांकि सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल का देहांत हो गया, लेकिन उनकी बहादुरी की वजह से वो दिन भारत का रहा। दुश्मन का एक भी टैंक भारतीय कब्जे वाले इलाके में घुस न सका। हमारी सेना ने उस दिन दुश्मन के 10 टैंक नष्ट किए, जिनमें 4 टैंक अकेले अरुण ने नष्ट किए थे। इस बहादुरी भरे कारनामे के लिए अरुण को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।
6: अरुण की यादों के सहारे समय बीतता गया और 2001 की बात है, मेरा मन हुआ जाकर अपना जन्म स्थान सरगोधा देखाऊं जो पाकिस्तान में है, और मैं रवाना हो गया। और देखिए कैसा संयोग था कि मेरी मुलाकात उसी पाकिस्तानी ब्रिगेडियर से हुई। उन्होंने मेरी मेजबानी का दायित्व संभाला और मुझे मेरे पैतृक गांव की यादगार यात्रा कराई। मैं उनके घर करीब 3 दिन ठहरा। ज्यों-ज्यों मेरा लौटने का समय नजदीक आता गया, त्यों-त्यों हमारी मित्रता गहरी होती गई। पर समय समय पर ऐसा लगता था कि कुछ बात अभी बाकी है।

0: और वो क्या थी मैं समझ नहीं पा रहा था। बात करते करते बीच में रुकना, उनके परिवार के लोगों की आंखों में करुणा, विदाई के एक दिन पहले हम सब ने एक साथ भोजन किया। सोने का समय हो चला था, अभी हम सोने जा ही रहे थे कि ब्रिगेडियर ने कहा, सर मैं वर्षों से आपसे कुछ कहना चाहता हूं पर कैसे कहूं ये समझ नहीं आ रहा। ये बात आपके बेटे अरुण के बारे में है। मैंने उनसे पूछा कि तुम अरुण के बारे में जानते हो? उन्होंने कहा जी बहुत अच्छी तरह से, जिस बहादुरी की वजह से उसकी घर घर में चर्चा होती है वो नजारा मैंने अपनी आंखों से देखा है। याद आता है वो दिन जब शकरगढ़ की उस युद्धभूमि पर दो टैंक आमने सामने खड़े थे, जिसमें से एक टैंक में था आपका बेटा अरुण और दूसरे में और कोई नहीं, मैं ही था। हम दोनों ने एक साथ एक दूसरे पर गोले दागे, पर नियति को शायद यही मंजूर था कि मैं जिंदा हूं और अरुण शहीद हो गया। मैंने जो किया वो मेरा काम था, पर सिपाही होने के साथ साथ मैं एक इंसान भी हूं, और जब मुझे पता चला कि उस समय अरुण सिर्फ 21 साल का था तो उस घटना ने मुझे बड़ी बुरी तरह से झकझोर दिया। जिस बहादुरी से आपके बेटे ने अपनी मातृभूमि की रक्षा की उसके लिए मैं उसे सलाम करता हूं। मेरे लिए ऐसे व्यक्ति का सामना करना जिसने मेरे पुत्र की हत्या की थी आसान नहीं था, पर उस समय मेरे जहन में बस यही पंक्तियां आई, हिंद के सैनिक तुझे प्रणाम, सारी दुनिया में तेरा नाम, दुश्मन के गलियारे में भी होती है तेरी चर्चा आम।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। श्रोताओं आशा है कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आए होंगे, तो फिर देर कैसी, भेज डालिए अपना संदेश। अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है, तो अपने मित्र अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
1: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग
4: तुसी NCERT वालों स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम उमंग सुन रहे सी। मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। 10 बज चुके ने, हुण तक दियां मुख खबरां सुनो। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पछमी एशिया संकट दरमियान लोगों नूं एक साल लई सोना ना खरीदण, ईरदन की खपत घटाउण ते विदेशी सिक्के की बचत की अपील की है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अज पहले ज्योतिरलिंग सोमनाथ महादेव मंदिर की मुड़ सारी के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 हिस्सा लैणगे। असाम के राज्यपाल ने हिम्मत बिस्वा शर्मा नूं राज विच नवी सरकार बनाने सद्दा दिता। भारत विश्व पद्धर से स्थापित नव्याण योग ऊर्जा समर्था विच तीजे स्थान पर है। गुरुग्राम की एक विशेष PMLA अदालत ने मनी लॉन्डरिंग मामले च पंजाब के सनत मंत्री संजीव अरोड़ा ED की 7

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहरगढ़।
1: सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया।
0: लड़ीवार नाटक होया।

0: ਲਾਈਫ ਔਨ ਇਨ ਫਰਮਾਇਸ਼ੀ ਫਿਲਮੀ ਗੀਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਲੋ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਘੜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 11 ਵਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣੋਗੇ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय गुजरात के सोमनाथ में हैं। वे सोमनाथ अमृत पर्व में शामिल होंगे। प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर यह पर्व मनाया जा रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करेंगे, जिन्होंने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का सपना देखा था। श्री मोदी मंदिर में विशेष पूजा अर्चना करेंगे तथा मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक और ध्वजारोहण भी करेंगे। इस अवसर पर भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम सोमनाथ के आकाश में रोमांचक एयर शो प्रस्तुत करेंगी। पूजा अर्चना के बाद प्रधानमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। वे एक विशेष स्मारक डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष स्मारक सिक्का भी जारी करेंगे। मयूर सोलंकी, आकाशवाणी समाचार, सोमनाथ।
1: प्रधानमंत्री बाद में वडोदरा भी जाएंगे, जहां वे शाम को सरदार धाम छात्रावास का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी सरदार धाम परिसर में स्वागत कक्ष, नागरिक सुविधाएं, भोजन कक्ष और ई पुस्तकालय सहित विभिन्न सुविधाओं का भी दौरा करेंगे। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज राज्य सचिवालय नबन्ना में मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शनिवार को मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी।

0: इनके बीच विभागों के बंटवारे की उम्मीद है। नए मंत्रिपरिषद की बैठक में भारतीय जनता पार्टी के चुनावी वायदों को लेकर चर्चा होने की संभावना है। असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने भारतीय जनता पार्टी के हिमंता बिस्व शर्मा को राज्य में नई सरकार का गठन करने के लिए आमंत्रित किया है। असम में एनडीए की ये पहली के लगातार तीसरी सरकार होगी। एनडीए विधानमंडल दल का सर्वसम्मति से नेता चुने जाने के बाद श्री हिमंता ने गठबंधन के अन्य नेताओं के साथ लोकभवन में राज्यपाल से मुलाकात की थी और सरकार बनाने का दावा पेश किया था। श्री आचार्य कल श्री शर्मा और मंत्रिपरिषद के नए सदस्यों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित अन्य लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। नवनिर्वाचित तमिलनाडु विधानसभा का पहला सत्र आज से शुरू हो रहा है। कार्यवाहक अध्यक्ष एमवी करुपैया नए सदस्यों को शपथ दिलाएंगे। तमिलक वेत्री कड़गम के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में नई सरकार को 13 मई से पहले सदन में बहुमत साबित करना होगा। पश्चिम बंगाल में विशेष जांच दल ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के सिलसिले में 3 लोगों को उत्तर प्रदेश से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 3 कुख्यात शूटर हैं। हत्या की साजिश में शामिल अन्य लोगों का पता लगाने के प्रयास जारी हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में भटियात उपमंडल में काकिरा लाहरू सड़क पर एक कार दुर्घटना में 6 पर्यटकों की मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हुए हैं। मृतकों में से 5 गुजरात के निवासी थे जबकि चालक मंडी जिले का रहने वाला था। उत्तराखंड सरकार ने चार धाम यात्रा के श्रद्धालुओं और पर्यटकों से राज्य में खराब मौसम की स्थिति में सतर्क रहने और सुरक्षा मानकों का पालन करने की अपील की है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड के विभिन्न भागों विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में कल और बुधवार को खराब मौसम और बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यात्रियों से राज्य में खराब मौसम को देखते हुए 12 और 13 मई को यात्रा कार्यक्रम तैयार करते समय अधिक सजग रहने की अपील की गई है। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने कहा कि इस दिन पोखरण परीक्षण क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किए गए थे जो देश की आत्मनिर्भरता और सामरिक शक्ति की यात्रा में एक निर्णायक क्षण साबित हुआ। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस दिन भारत उन वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम और समर्पण को गर्व से याद करता है जिनके प्रयासों से 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण संभव हुए थे। पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े शांति प्रस्ताव पर अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता न होने के कारण घरेलू शेयर बाजार में आज 1.25% से अधिक की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1089 अंक गिरकर 76,240 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियावेव 343 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं। दिन दे 11:05 वज रहे ने। आओ सुनदे हां एक देश प्यार दा गीत।

0: आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ अमृत महोत्सव में सम्मिलित हो रहे हैं। इस समारोह का सजीव विवरण आपको सुनवा रहे हैं। विवरण दे रहे हैं नीलम मलकानिया और कौशिक राय। विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ हैं श्री आशुतोष शर्मा।
1: नमस्कार। आज गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में प्रभास पाटन में सोमनाथ अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की इस महोत्सव में गरिमामय उपस्थिति रहेगी। पुनर्निर्मित मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ये महोत्सव मनाया जा रहा है। इस दौरान बहुत सी गतिविधियां होंगी। आयोजन का विवरण आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। मैं नीलम मलकानिया अपने साथी कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ इस विशेष प्रसारण में आपका स्वागत करती हूं और साथ ही स्वागत कर रही हूं हमारे आज के विशेषज्ञ सनातन संस्कृति मर्मज्ञ और वेद विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा का भी। हम आपको बताएं कि आज के इस आयोजन के हिस्से के तौर पर एक विशेष रोड शो का आयोजन हो रहा है। विभिन्न सांस्कृतिक झांकियों का प्रदर्शन हो रहा है। पारंपरिक प्रस्तुतियों के माध्यम से प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। स्थानीय कलाकार और सामाजिक संगठन भी इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। साथ ही संत समाज के लोग हैं, आध्यात्मिक

0: की जो हस्तियां हैं उनकी उपस्थिति इस विशेष आयोजन में बनी हुई है। मंदिर की भव्यता और दिव्यता आज कुछ अधिक ही है। ये सोमनाथ विरासत के 75 वर्षों का उत्सव है। प्रथम ज्योतिर्लिंग माना जाता है सोमनाथ को, द्वादश ज्योतिर्लिंग जो हैं उनमें, और कहा जाता है प्रभासम च परिक्रम में पृथ्वी क्रम संभवम, यानी दिव्य प्रभास की परिक्रमा पूरी पृथ्वी की परिक्रमा के समान होती है। हम आपको बताएं कि माननीय प्रधानमंत्री जी श्री सोमनाथ न्यास के अध्यक्ष भी हैं और उनके अपने उद्गार हैं कि सोमनाथ आशा का वो गीत है जो हमें सिखाता है कि सृजन की शक्ति विनाश से कहीं अधिक प्रबल होती है।
1: सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्यां महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरम् परलयं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यं भीमशंकरं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावले वाराणस्य तु विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालय तु केदारं घुष्मेशं च शिवाले एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायप्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणं विनश्यति। Namaskar and welcome to this very special broadcast to commemorate the 75th anniversary of the restoration of the most important Jyotirling temple at Somnath. The Honorable Prime Minister will be participating at the Somnath Amrit Mahotsav 2026, and Somnath is the amalgam of our ancient heritage, our culture and our deep faith. As we mentioned that Somnath is among the most important and the first of the 12 Jyotirlings. It is nestled next to the sea, and the main shikhar of the temple is 155 feet high. The temple is a seven-storied structure built in the Chalukya style, featuring a 10-ton kalash at its peak and a 37-foot flagpole. And today we shall also see the Kumbhabhishek and the Dwajarohan by the Honorable Prime Minister, and the flypast by the Indian Air Force Surya Kiran aerobatic team. And this will be a sight to see. And we have with us Dr. Ashutosh Sharma. First of all, Dr. Sharma, can you explain to our listeners the importance of the Kumbhabhishek?
2: नमस्कार, आप सभी को आज के इस विशेष महोत्सव की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो अभिषेक आज हो रहा है इसका विशेष नाम कुंभाभिषेक है। वास्तविकता में वैसे तो हम भगवान शिव के अभिषेक को रुद्राभिषेक के नाम से जानते हैं, परंतु इस कुंभाभिषेक का महत्व इसलिए भी है क्योंकि जब विशेष पूजा की जाती है, विशेष अर्चना की जाती है, तो उसका एक विशेष नाम होता है, वह है कुंभ। कुंभ कहते हैं घड़े को। इसीलिए जहाँ विशेष तीर्थ होते हैं वहाँ पे सहस्रघट, यानी कि हजार मटकों से, हजार घड़ों से जल को लाकर के, गंगा जल आदि, नर्मदा का जल आदि लाकर के जो पूजा की जाती है, अर्चना की जाती है, स्नान कराया जाता है, उसे अभिषेक की संज्ञा दी गई है। वैसे तो स्नान आदि की प्रक्रिया सभी के लिए सामान्य रूप से होती है, चाहे किसी भी पिंड रूप में हो, और उसी पिंड के रूप में मनुष्य भी है एवं जितने भी चराचर जगत में प्राणी हैं सभी वो पिंड रूप हैं। लेकिन उस पिंड के अंदर जो बैठने वाला सूक्ष्म जगत शरीर है वह स्वयं शिव है, जो इस स्थूल से निकलने के बाद भी सूक्ष्म जो जाता है उसको हम पिंड रूप में ही मानते हैं सूक्ष्म रूप से, और उसको मन के साथ संयोग किया गया है क्योंकि मननात रायते, जो मंत्र को लिया गया वो मन से है। इसीलिए आप देखेंगे सोमनाथ में सोम का अर्थ भी चंद्रमा है, और चंद्रमा को जब हम मानते हैं तो चंद्रमा मन का कारक है, इसलिए मन की प्राप्ति के लिए चंद्रमा जल का भी है, मन का भी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि जल के द्वारा अपने मन को शुद्ध करो, अपने वाणी को शुद्ध करो, और अपने अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए अर्चना की जानी चाहिए।
0: जी आशुतोष जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, जैसा कि हम बता रहे हैं और सुनते आए हैं कि जो सोमनाथ मंदिर है, ये जो ज्योतिर्लिंग है, इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग में प्रथम स्थान प्राप्त है, तो हम इसका महत्व भी आज आपसे जानना चाहेंगे।
2: जो हमारे द्वादश ज्योतिर्लिंग है, लिंगों की जब हम बात करते हैं तो लिंग किसे कहते हैं, तो लिंग जो शब्द है संस्कृत धातु में लिगि गतो में अच प्रत्यय लग के बना है, इसका अर्थ होता है आकृति, चिन्ह, प्रतीक या लक्षण, अर्थात एक विशेष प्रभाव को बताने वाला जो लक्षण है उसे लिंग कहा गया। यदि हम देखें तो एक स्थिति

0: मिलती है जिसमें कहा गया निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। तो निराकार का अर्थ क्या है, दुनिया में जितनी भी आकृतियां निकली हैं, जितने भी चिन्ह उत्पन्न हुए हैं या जो भी हम दृश्यमान देखते हैं, वो चराचर जगत में प्रस्तुतिकरण उस लिंग के माध्यम से ही होता है।
1: जी
0: अब वो लिंग कई प्रकार के हैं, स्थूल लिंग हो सकता है, आत्मलिंग है, ज्योतिर्लिंग है। ज्योतिर्लिंग उसे कहते हैं जो स्वयंभू है, जो भगवान शिव की विशेष प्रभाव शक्ति के द्वारा उत्पन्न हुआ, चाहे वो जमीन से हुआ, चाहे वो अलग अलग प्रकार से हुआ। जैसे अगर हम साउथ इंडिया में देखें तो पंचभूतात्मक लिंगों का भी वर्णन मिलता है। तो ये प्रथम क्यों है, क्योंकि इसका विवरण शिव पुराण में कोटि रुद्र संहिता के अध्याय 13 और 14 में भी इसका वर्णन है, और स्कंद पुराण में प्रभास खंड में भी। यदि आप आज का नाम देखें तो आज का नाम तो यह नहीं है, यह जूनागढ़ रियासत का पहले था स्थान, बाद में वेरावल में विलय हो गया, लेकिन इसको जो आरंभिक नाम है प्राचीन काल से उसका नाम है प्रभास तीर्थ। यदि आप देखें तो भगवान कृष्ण ने भी अपना जो शरीर का त्याग किया है इसी क्षेत्र में किया है। अर्थात कि जब भगवान भी आते हैं तो अपने पंचभूतात्मक शरीर को छोड़ने के लिए, मुक्ति के रूप में अपने सूक्ष्म शरीर को ऊपर बढ़ाने के लिए शिव की कृपा चाहिए।
1: जी
0: इसीलिए यहाँ पे प्रथम रूप जो है, हमारा जन्म क्यों हुआ, ये पुनर्जन्म के चक्र में क्यों फंसे, क्योंकि हमारे मन के अंदर जो अलग अलग विकार हैं वो आ जाते हैं। और इसी की एक कथा हमें पुराणों में मिलती है चंद्रमा के रूप में, कि जब चंद्रमा अर्थात हमारा मन, जब 27 नक्षत्र अर्थात उसकी पत्नियां उसमें किसी जगह पर स्थिर हो गया, यानी कि हमारे जो चलायमान मन को सही रूप ना लग के एक जगह अटकाव में आ गया, तो उसमें कमी आ गई, हम समत्व भाव को प्राप्त नहीं कर पाए। इसीलिए शिव ने उसके दो भाग करे, पाप भाग को नीचे किया कि आप शुद्धिकरण करो। इसीलिए आप देखेंगे यहाँ पे सोमनाथ क्यों, क्योंकि चंद्रमा ने यहाँ पे अभिषेक किया है, चंद्रमा ने महामृत्युंजय आदि के द्वारा अपने पाप का विमोचन किया है, पाप को नष्ट किया है, अर्थात अपने मन को शुद्ध किया। तो ये चंद्रमा कौन है, चंद्रमा कोई व्यक्ति हो या ना हो, लेकिन हमारे अंतःकरण में बैठा हमारा मन जो चलायमान है, जो सत्व रूप है, जो हमें आगे बढ़ा सकता है, उसकी पूजा और उसको सही दृष्टिकोण से आगे बढ़ाना, ये चंद्रमा का उद्देश्य है। इसलिए सोमनाथ मंदिर का उद्देश्य है।
1: जी
2: And the Honorable Prime Minister offering prayers at the historic Somnath Tirth, which is the first of the Jyotirlings. And today, the 11th of May marks the 75th year since the inauguration of the restored temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad. The Honorable Prime Minister had at the beginning of this year had gone to Somnath Temple for the Somnath Swabhiman Parv, and today we are marking the Somnath Amrit Mahotsav 2026. As the Prime Minister said recently in a newspaper article, the Honorable Prime Minister said that Somnath gives us a civilizational message. The vast sea before it evokes timelessness. The waves tell us that no matter how fierce the storms are or how turbulent the tides are, one can always rise again with dignity and strength. The waves return to the shore as though reminding every generation that the spirit of the people can never be subdued for long. And the Honorable Prime Minister is offering prayers at the सोमनाथ मंदिर।
1: मंदिर में विशेष पूजन अर्चन चल रहा है, मंगल ध्वनियां आप तक पहुंच रही हैं आकाशवाणी के माध्यम से। और हम आपको बताएं कि सोमनाथ मंदिर जो है वो अदम्य साहस और जिजीविषा का प्रतीक भी है, जैसा कि हम अक्सर सुनते आए हैं। कई बार विदेशी आक्रांताओं ने इसे लूटा तोड़ा, लेकिन हर बार जीर्णोद्धार हुआ, पुनरुद्धार किया गया इस मंदिर का, क्योंकि आस्था का प्रतीक है। चालुक्य या मारु गुर्जर स्थापत्य शैली में निर्मित लगभग 150 फीट ऊंचे शिखर वाला एक भव्य मंदिर है ये, जो एकता का प्रतीक भी है। अरब सागर के तट पर कपिला हिरण और सरस्वती के पावन त्रिवेणी संगम पर स्थित है, और ये एक ऐसा मंदिर है जिसमें सिर्फ भारतीय नागरिक नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु लगातार आते रहे हैं, और अंतरराष्ट्रीय महत्व इस मंदिर का है, हमारे इतिहास का हिस्सा है। हम कह सकते हैं कि ये हमारे इतिहास और भविष्य के बीच का एक ऐसा सूत्र है जो आध्यात्मिकता का लगातार संचार करता रहा है। राष्ट्रीय पुनर्जागरण का सबसे दृढ़ स्तंभ सोमनाथ को माना जाता है। सोमनाथ स्वाभिमान का प्रतीक है, और इसीलिए सोमनाथ स्वाभिमान पर्व जो है वो भी बहुत चर्चा में रहा, उसने भी बहुत प्रेरित किया सभी को। और यहाँ पर आज मंदिर की जो सज्जा है वो विशेष है, पुष्प सज्जा की गई है, शिव भगवान से जुड़े हुए प्रतीक चिन्ह जो है वो

0: स्थान स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। डमरू की आकृति, नंदी जी की आकृति, त्रिशूल यहाँ पर पुष्पों से बनाए गए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विशेष पूजन अर्चन किया है जिसका वो हिस्सा बने हैं। ऐसा माना जाता है कि ये भी भगवान शिव से आशीर्वाद लेकर आध्यात्मिकता का संचार करके और राष्ट्र कल्याण की भावना के साथ किया गया है। हम आपको बताएं कि इस समय सोमनाथ मंदिर में अमृत महोत्सव चल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी की इसमें गरिमामय उपस्थिति है। साथ ही जो अन्य कार्यक्रम होंगे उनमें एक विशेष आकर्षण रहेगा सूर्य किरण फॉर्मेशन, जो अलग अलग ये बनाएंगे। वायुसेना की सूर्य किरण टुकड़ी है जो कई तरह के फॉर्मेशन बनाएगी और हवाई करतब दिखाते हुए यहाँ पर मंदिर में नमन करते हुए पुष्प वर्षा भी की जाएगी। 1951 में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हुआ था, भव्य आयोजन था। उस समय 101 तोपों की सलामी दी गई थी मंदिर के प्रांगण में और आज माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति पूरे आयोजन को और अधिक गरिमामय बना रही है।
1: Yes, you are absolutely right, Neelam, and as you mentioned that our ancient scriptures say that a pradakshina of the divine Prabhasa, that is the Somnath, is equal to the pradakshina of the whole earth itself. While people come to Somnath to pray, they also experience the remarkable continuity of a civilization whose flame could never be extinguished. Empires rose and fell, tides changed, history moved through the conquests and upheavals, yet Somnath continues to endure in our consciousness. Today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. Manaha Shiva Sankalpa Mastu Shumukhascha Ekadan.

0: विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्त मानस्य अद्य ब्रह्मणो।
1: डॉक्टर आशुतोष, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कुछ समय बाद यहाँ पे ध्वजारोहण भी होगा, और जैसे कि हम लोग देख सकते हैं

0: ये सोमनाथ मंदिर के ध्वज पे नंदी जी और त्रिशूल है, तो इसके बारे में हमारे श्रोताओं को थोड़ा बता दें।
1: इसके लिए हमें समझना होगा कि जो वास्तु शास्त्र के मूल ग्रंथ हैं, जैसे रूप मंडनम, प्रसाद मंडनम, तो प्रसाद का अर्थ ही महल या मंदिर है। उसमें ऐसा विवरण मिलता है कि जो पूरा मंदिर है, जहाँ से हम आरंभ मंदिर में एंट्री लेते हैं वहाँ से और शिखर तक, एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है, ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है, ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है, और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है, जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं।

0: एंट्री लेते हैं वहां से और शिखर तक एक मनुष्य रूप आकृति की कल्पना की गई है, जिसमें आप देखेंगे मंडपम या अर्ध मंडपम या महामंडपम आदि जो क्षेत्र हैं, ये पेट और वक्षस्थल के आदि भाग हो जाते हैं। अब क्योंकि हमारा पूरा शरीर का जो मूल ब्रह्म रूप है ये गर्दन से ऊपर मस्तक भाग होता है, इसीलिए यहाँ पर जो व्यवस्था है ये किसी भी पिंड को रखने की या भगवान को रखने की कल्पना है, क्योंकि हमारे मस्तक में जो तृतीय नेत्र हम मान के चलते हैं या दृष्टि रूप जो मान के चलते हैं, दृष्टि से भगवान का दर्शन होता है रूप क्षेत्र में, तो इसीलिए हमारा मस्तक जो है वो शिखर के रूप में है और उसके अंदर जो उठने वाली दृष्टि रूप है जिसे हम तीसरा नेत्र भी कह सकते हैं या मन की आंख भी कह सकते हैं, उसका दर्शन हम कैसे करें कि भगवान हमारे पास है, उसके लिए जैसे हम मन के अंदर आंखें बंद करके विचार करते हैं, इसी प्रकार से दृष्टि रूप से हम बाह्य रूप में शिखर और उसके ऊपर बैठा हुआ जो कलश स्थापना होती है और उसके साथ जो ध्वजारोहण होता है, ये बताता है कि यहाँ पर भगवान का जागृत वास है, ये उसका प्रमाण हो जाता है। और आप देखेंगे भगवान शिव के जो मंदिर है उसमें विशेष रूप से जहां भी कोई मंदिर होगा वहां त्रिशूल विशेष होगा। त्रिशूल की आवश्यकता क्यों है? त्रिशूल कोई हथियार नहीं है जो हम कई बार सामान्य रूप से देखते हैं, ये बताता है समाधि रूप में जब हम चलते हैं तो हमारे तीन प्रकार से विचार चलेंगे, शरीर चलेगा, मन चलेगा, चित्त चलेगा, आत्मा का संयोग उसमें बनेगा। वो तीन रूप क्या हैं? सत्व, रज और तम। इसे अहंकार की संज्ञा दी गई है। ये तीन प्रकार के अहंकार हैं, इसी में तमोगुण प्रधान तत्व से हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध और उसी से उत्पन्न आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी उत्पन्न हुए, और उसी के जो रजोगुण और जो सतोगुण रूप से हमारे जो ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया और मन की उत्पत्ति हुई है। अतः हम ये देख सकते हैं कि यदि हमारे शरीर में पंचभूतात्मक जो हमने पिंड लिया और इस पिंड के हटने के बाद भी जो सूक्ष्म जगत में शरीर में जाएगा, जो पुनर्जन्म का कारण बनेगा, उसका मूल प्रभाव का जो हम ये कारण यदि समझ सकें तो हम समझेंगे कि यह सत्व, रज और तम ही है। इनका तीनों का आपसी संयोग और व्यवस्थितीकरण ये त्रिशूल बताता है, इसीलिए इसमें जो मध्य क्षेत्र आप देखोगे उठा हुआ है उसे रजोगुण की संज्ञा दी गई है। रज वो जो गति दे, आगे बढ़ाए, मूवमेंट दे, इसीलिए उसके संयोग से दोनों गुणों का जब साम्यवस्था हो जाती है तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है, इसीलिए मुक्तिनाथ क्षेत्रों में हमेशा शिवार्चन होता है।
1: जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस जानकारी के लिए। हम अपने श्रोताओं को बताएं कि इस समय वैदिक मंत्रोच्चार और पूरे विधि विधान के साथ मंदिर में पूजन अर्चन जो है वो चल रहा है, मंगल ध्वनियां हैं चारों ओर, सोमनाथ अमृत महोत्सव ये है, और इस पावन पर्व की याद में समृद्ध विरासत और आध्यात्मिक महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रतीक के रूप में कार्यक्रम में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया जाएगा और एक सिक्का भी जारी किया जाएगा। अलग अलग क्षेत्र की विशिष्ट हस्तियों की कार्यक्रम में उपस्थिति है, अनेक माध्यमों से वो इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, और ये भी संयोग ही है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि जनवरी माह में सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के बाद ये दूसरा अवसर है जब प्रधानमंत्री जी सोमनाथ जी के दरबार में राष्ट्र निर्माण की प्रतिबद्धता के साथ पहुंचे हैं, उपस्थित हैं, और यहाँ सोमनाथ अमृत महोत्सव का हिस्सा बन रहे हैं। पूजन अर्चन के बाद आम श्रद्धालु भी दर्शन कर पा रहे हैं मंदिर में, और वायु सेना के जो यान हैं वो सूर्य किरण टुकड़ी जो है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बहुत सारे देशों के विभिन्न कार्यक्रम जो होते हैं उसमें भाग लेती रही है, वो अलग अलग फॉर्मेशन बनाते हुए कार्यक्रम में और अपनी ओर से भाग लेगी और इसकी रोचकता को और बढ़ाएगी। जो एक्रोबेटिक यान होते हैं इन्हें देखना भी बहुत आकर्षण का एक हिस्सा रहता है और उत्सुकता इनकी लगातार बनी रहती है माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
2: Yes, and as we mark the 75 years of the consecration of the rebuilt Somnath Temple by the first President of India, Dr. Rajendra Prasad, the Honorable Prime Minister today, as my colleague Neelam mentioned, will release a special commemorative postal stamp and a coin of Rs. 75 denomination. As we were speaking earlier, today is also a time to remember the countless greats who stood firm in the face of tyranny. They were Lakulisha and Soma Sarman, who transformed Prabhasa into a great center of philosophy, Chakravarti Maharaj Dharmasena IV of the Vallabha, built the second temple 3 centuries ago. Bhima Deva, Jayapal and Anandapal will always be remembered for defending civilizational honor against invasions.

0: महोत्सव में सोमनाथ अमृत महोत्सव।
1: सोमनाथ अमृत महोत्सव आयोजन किया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी की विशेष उपस्थिति। इस कार्यक्रम में संत समाज के लोग हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूजन अर्चन किया विधि विधान के साथ, और साथ ही आज के आयोजन में विभिन्न कार्यक्रम होंगे। अभी आप शिव स्तुति सुन रहे थे, आइए आपको सुनवाते हैं एक और भजन।

0: सोमनाथ अमृत महोत्सव चल रहा है इस समय, सोमनाथ मंदिर में इसका आयोजन किया जा रहा है। और आशुतोष जी, इस दौरान हम देख रहे हैं कि मंदिर में जो विशेष पुष्प सज्जा की गई है, इसमें स्थान स्थान पर हम ओम की आकृति देख रहे हैं, तो इसका महत्व हम आपसे पूछेंगे, लेकिन हम आपको ये भी
1: एंड यस नीलम द टाइम फॉर द सूर्य किरण्स द एरोबैटिक टीम द सूर्य किरण एरोबैटिक टीम SKAT the red and white Hawk MK-32 aircraft of the Indian Air Force led by Group Captain Ajay Dasharathi performing this wonderful aviation adventure atop the skies of the Somnath Temple, adding glitter and color. What a sight indeed. And a wonderful performance by the Indian Air Force's Surya Kiran aerobatic team. And we also saw the petals being dropped from the helicopters of the Indian Air Force. And now we can listen to the chants of Har Har Mahadev as the Dhwajarohan is going on.
0: जी बिल्कुल, और हम जैसा कि कह रहे थे कि स्थान स्थान पर ओम की आकृति देख रहे हैं, भगवान शिव से जोड़ा जाता है, तो हम ओम उच्चारण के विषय में आपसे जानना चाहेंगे।
2: जब हम भगवान शिव की आरती करते हैं तो दो विशेष शब्द आते हैं, इसमें बोला एकानन चतुरानन पंचानन राजे। तो एकानन भगवान विष्णु, चतुरानन भगवान ब्रह्मा और पंचानन भगवान शिव, अर्थात पंच महाभूतों के जो स्वामी हैं वो भगवान शिव हैं। और उसी में फिर दूसरा अक्षर आता है प्रणव अक्षर के मध्य, ये तीनों एका, अर्थात इन तीनों का जो मूल स्वरूप है ब्रह्मा विष्णु और महेश, उस प्रणव में आ जाता है। उस प्रणव के तीन अक्षर क्या हैं, अ उ और म। तो अगर हम देखेंगे तो अ की जब हम ध्वनि करते हैं तो नाद ब्रह्म से आता है, पेट के पास से आता है। वहीं ऊ की अगर हम एक वाइब्रेशन देखें तो हमें वक्षस्थल से, छाती के पास से, सीने के पास से ये आती है। और यदि हम म अक्षर को देखें तो

0: में गले के कंठ से जब हम अवरोध करते हैं व्यंजन रूप में, तो अल्व उसमें होकर के पूर्ण शब्द ना होकर हलंत लग के वो म बंद हो जाता है। तो आप देखिए कि ऊर्ध्व गति हमारे प्राण जो ऊपर की ओर उठने वाले हैं, उन प्राण शक्ति का जो द्योतक है वो भगवान शिव हैं। और
1: ध्वजारोहण,
0: अब ध्वजारोहण भी आप देखेंगे हमेशा नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई मानी गई है
2: जी।
0: अर्थात कि ये एक प्रकार से प्रकृति के तत्व को बताती है। इसलिए यदि हम देखें भगवान शिव की जो अर्चना कहते हैं, तो इसमें वेदों में वर्णन मिलता है सवन, ये एक प्रात सवन, मध्य सवन और सायं सवन, तीन सवन के रूप में बताया गया कि प्रातकालीन जब समय होता है सूर्योदय का, उस समय भगवान शिव का पूजन किया जाना चाहिए। मध्य दिवस जब सर के ऊपर सूर्य हो तब किया जाना चाहिए, और सायंकाल जब सूर्यास्त का समय हो तब शिव का पूजन किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम सभी समय पर ना भी कर पाएं तो विशेष समय जो भगवान शिव के पूजन का है उसे कहते हैं प्रदोष काल। प्रदोष काल अर्थात संध्या का समय जो सूर्यास्त का होता है, उस समय हम पूजन करें भगवान शिव का तो बहुत उत्तम है, क्योंकि वह तमोगुणी प्रधान तत्व है। तमोगुण अर्थात हम शाम को देखेंगे तो हम थक जाते हैं, रिलैक्स हो जाते हैं, एक गहन डूब जाते हैं, हमें निद्रा के बाद नहीं पता हम किस लोक में रहते हैं, किस अवस्था में रहते हैं, तो वहाँ हमारी सुरक्षा कौन कर रहा है उस अंधकार में। हम किस प्रकार से अपने प्राणों को भूल कर भी जिस पे आश्रित हो सके पंचभूतात्मक रूप से, वो भगवान शिव हैं। इसीलिए शाम को जब सोते समय सदैव ओम नमः शिवाय का जाप वेदों में बोला गया, प्राणों में बोला गया, और जब उठते हैं तो ओम नमो नारायणाय का जाप हमें बोला गया है
2: जी। तो यानी हम अपने दिन की शुरुआत भी प्रभु का नाम स्मरण करके कर सकते हैं, और संध्या काल में भी जब सही समय है उस वक्त हम भगवान शिव का पूजन अर्चन कर सकते हैं। और हम आपको बताएं श्रोताओं कि सोमनाथ अमृत महोत्सव के इस अवसर पर भारतीय वायु सेना के जो यान है, विशेष सूर्य किरण एक्रोबेटिक टीम है, उसने अद्भुत प्रदर्शन किया है, और विभिन्न आकृतियां जो हैं वो इन यानों ने अद्भुत संयोजन दिखाते हुए बनाई हैं। स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल ने नेतृत्व करते हुए यहाँ पर इन यानों ने जो मंदिर है, हम कहते हैं कि ऐतिहासिक महत्व वाला ये मंदिर है, और साथ ही आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक है, हमारी समृद्ध विरासत का प्रतीक है सोमनाथ मंदिर, उस पर जो सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, इस अवसर को विशेष बना दिया है। पुष्प वर्षा मंदिर पर की गई, साथ ही विभिन्न आकृतियाँ बनाई गई, और जो हवाई करतब दिखाए गए उसे देख कर यहाँ उपस्थित जन जो है वो पूरी तरह से उत्सुक रहे, और साथ ही जोश भी भर दिया है। और यही आज का भारत है जिसका बार बार उल्लेख किया जाता है कि हम तकनीकी रूप से भी समृद्ध हैं, लेकिन साथ ही जो आध्यात्मिक चेतना है हमारी, जो विरासत है, उसे लेकर भी हम आगे बढ़ेंगे। और इसीलिए जो लक्ष्य है हमारा 2047 में, वो लक्ष्य जो है उसके लिए बार बार माननीय प्रधानमंत्री जी हमें प्रेरित करते हैं, और हर भारतीय अपनी ओर से पूरे सजग रूप से उस ओर बढ़ना चाहता है, विकसित भारत के लक्ष्य की ओर अपनी विरासत को संजोए रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति सोमनाथ अमृत महोत्सव में।
1: यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट, एंड इंसिडेंटली नीलम, टुडे इज द वेरी डे दैट द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड इनॉग्यूरेटेड द रिकंस्ट्रक्टेड सोमनाथ टेम्पल ऑन द 11th ऑफ मे 1951, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैड ऑन दैट ओकेजन सेड दैट द सोमनाथ टेम्पल प्रोक्लेम्स टू द वर्ल्ड दैट एनीथिंग विथ अनपैरेलल्ड फेथ एंड लव कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। ही एक्सप्रेस्ड द होप दैट the temple will live in the hearts of the people. He also said that the restoration of the temple was a fulfillment of Sardar Patel's dream. But taking that spirit forward, it is important that we restore prosperity to the lives of the people. These are important and inspiring messages that the first president of India gave. This is the path that the government of India has been following for over a decade. And as you mentioned, that the resolve of Viksit Bharat by 2047 is indeed something that which every Indian is working towards under the guidance of the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. And he has many times proclaimed the principle Vikas Bhi, Virasat Bhi, from Somnath to Kashi, from Kamakhya to Kedarnath, from Ayodhya to Ujjain, from Trimbakeshwar to Srisailam. The government of India's team has had the opportunity to equip our spiritual centers with the latest facilities while at the same

0: time preserving their traditional character. And this is very important, and this has boosted the local economy, it has secured livelihoods and deepened the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat.
1: जी, और आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, अगर हम देखें तो इनका पर्यटन में भी बहुत बड़ा योगदान होता है, और पर्यटन जो है वो देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण एक भूमिका निभाता है. जो धार्मिक स्थल हैं इनका माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो हमारे विशेष धार्मिक स्थल हैं उनके आसपास का जो क्षेत्र है उसको भी विशेष रूप से विकसित किया गया है ताकि जितने भी धार्मिक जो पर्यटक आते हैं और अगर वो विदेशी हैं तो उन्हें भी विश्व स्तरीय सुविधाएं मिल सके, उन्हें तकनीक मिल सके. और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से विभिन्न गलियारे जो हैं इस तरह से विकसित किए गए हैं कि पार्किंग की सुविधाएं वहां रहें, पेयजल की सुविधाएं रहे, और हमारे जो मंदिर हैं उनके नियमों का पालन होते हुए भी जो पर्यटक हैं, जो दर्शक हैं, जो श्रद्धालु गण हैं वो अपने समय को यादगार बनाते हुए उस समय को एंजॉय कर पाएं, वो तस्वीरें ले सकें. अलग अलग जगह पर अब सेल्फी पॉइंट्स भी बनाए जाते हैं ताकि घर पर मधुर स्मृतियां ये दिखाई जा सकें. जब दर्शन करने आते हैं श्रद्धालु जन अपने पूरे परिवार को लेकर, तो ऐसे में अगर दिव्यांग जन हैं उस परिवार में या फिर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी विशेष की सुविधाएं अब हमारे बड़े मंदिरों के आसपास मिलती हैं. ठहरने की जो व्यवस्था है वो पहले से ज्यादा अच्छी की गई है, बेहतर की गई है, और ये भी ध्यान रखा गया है कि जो हमारे विशेष ज्योतिर्लिंग हैं उनकी जो मान्यता है, उन मान्यताओं से जुड़े जो प्रतीक चिन्ह हैं अब वो भी सोवनियर के रूप में मिल सकें. और साथ ही इस तरह की वेबसाइट भी अब राज्य सरकार जो है वो संचालित करती है, और इंटरनेट के माध्यम से भी हमें विशेष रूप से ये जानकारी मिल सकती है कि हम जो हमारे धार्मिक स्थल हैं उन तक कैसे पहुंचेंगे, कहां से हम बुकिंग करवा सकते हैं, और जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय यात्रा करने वाले जो पर्यटक होते हैं उनके लिए अलग अलग भाषाओं में भी ये सुविधाएँ उपलब्ध करवाई गई हैं. यानी आध्यात्मिक चेतना का जो प्रसार करने का एक संकल्प है उसके साथ साथ तकनीक को शामिल किया गया है, और डिजिटल भारत जो है, डिजिटल होती दुनिया ये हमारी है, उसमें भारत विशेष रूप से एक भूमिका निभाता है. और सूर्य किरण टुकड़ी ने बहुत अच्छे प्रतीक चिन्ह बनाए सोम मंदिर के में. इस अमृत महोत्सव का विवरण हम जारी रखेंगे, लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि हमारे आसपास दुनिया में क्या हो रहा है. तो आपको सुनवा रहे हैं अभी समाचार.
2: जीत लिया है. इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ.
3: दिस इज आकाश.
4: मीडिया वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्ज़ थी. असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तो बोल रहे हैं. दिन दे 12:05 बज रहे ने. आज सुनते हैं प्रोग्राम वसदे वेड़े.

0: कि उप यानी समीप और वास यानी रहना, अर्थात हम ईश्वर के समीप रहें। ईश्वर के समीप रहने का अर्थ क्या है कि बाह्य दुनिया को छोड़ के आंतरिक दुनिया में खो जाएं, अर्थात आध्यात्मिक चक्र में खो जाएं। तो जब हम ज्ञान ध्यान की मुद्रा में रहते हैं तो ना हमें भूख प्यास का महत्व होता है, ना शरीर की गतिविधियों का विशेष महत्व होता है, तो स्वतः ना उस समय भूख लगती है ना प्यास लगती है, हम भगवान में खो चुके होते हैं, लिंक हो जाते हैं। तो हम उस प्रक्रिया को लेकर चल रहे हैं उपवास। एक दूसरा तत्व आता है व्रत। व्रत का अर्थ क्या है कि हमें कार्य को करते रहना है लेकिन भगवान के निमित्त हमें अपने आप को साधना है, वो शरीर को साधने के चक्र की बात है। उसमें क्या है कि वेदों में वर्णन है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि यदि व्रत करते हैं और भूख लग जाए तो क्योंकि हम पूजा कर रहे हैं, घंटों घंटों बैठे हैं पूजा में, 5 घंटे 4 घंटे, तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि शरीर के चक्र की एक्टिविटी ना चले, जठरग्नि प्रबल ना हो। तो उसमें क्या बोला कि ब्राह्मण आदि जैसे हैं तो कोई दूध पी ले, क्षत्रिय है तो जरा सा जौ का दलिया खा ले, या वैश्य है तो आमिक्स या पनीर या श्रीखंड खा ले। अर्थात कहने का तत्व है कि हमें भोजन पर प्रयोग नहीं करना है और ना ही शरीर के ऊपर इतना आदि हो जाना कि हमें पूजा में मन ना लगे। तो ये व्रत की प्रक्रिया है, एक उपवास की प्रक्रिया है। अब उपवास की प्रक्रिया का मतलब आध्यात्मिक प्रक्रिया है साक्षात, ये हम लेके चले
1: जी। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हम द्वादश ज्योतिर्लिंग के दर्शन को बहुत ही पुण्यकारी मानते हैं, तो जब कभी हम किसी ज्योतिर्लिंग के दर्शन करके घर वापस आते हैं तब आचार व्यवहार कैसा होना चाहिए हमारा?
0: सबसे पहले तो आप एक शब्द सुनेंगे कि ज्योतिर्लिंग
1: जी,
0: तो लिंग का हम यदि समझें तो आप एक बात ऐसे समझ सकते हैं सामान्य क्रम से कि यदि मैंने बोला मेरे शरीर का हाथ मेरा अंग है तो ये हाथ किसका अंग है, जिसका वो अंगी होगा, यानी कि एक मूल एक आकृति होगी जिसका एक भाग उसका अंग कहलाएगा। तो यदि मैं शिवलिंग को लिंग बोल रहा हूं तो प्रमुख रूप से है कि शिवलिंग है
1: जी।
0: तो यदि मैं आप देखूं कि यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो वो कहते हैं शिव से वो शव हो गया, तो निकला कौन, वो लिंग के रूप में जो स्थापना में जाना एक सूक्ष्म शरीर जिसे हम कहते हैं आत्मा, वो निकला। और इसीलिए हम शरीर में देखेंगे 11 प्रकार की वायु है जिसको रुद्र बोला गया, जैसे प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान, नाग, कूर्म, क्रक्कल, देवदत्त, धनंजय, और 11वीं वायु है जीवात्मा। जब ये एक साथ निकलते हैं तो सगे संबंधी रुदन करते हैं, उसी को बोला गया रुद्र। ये रुद्र है, ये 11 वायु हैं। इसी प्रकार से जब हम किसी भगवान को भोग लगाते हैं तो हम मंत्र बोलते हैं ओम नाभ्या आसीद अंतरिक्ष, नाभि अर्थात हमारे शरीर का नाभि क्षेत्र, और उसी में अंतरिक्ष बोला, यानी कि उसी को अंतरिक्ष की संज्ञा दी गई, और उसके अंदर उस नाभि से अंतरिक्ष में हम तीन लोकों की कल्पना करते हैं, पृथ्वी लोक जिसे भूलोक कहा, अंतरिक्ष लोक जिसे भुवा लोक कहा, और सूर्य लोक जिसे सह लोक कहा। तो इन तीन चक्रों में जब हम बात करते हैं पंच प्राणों के बारे में, प्राण, अपान, उदान, समान और व्यान, ये तीन प्रकार, जैसे एक व्यक्ति मनुष्य भोजन मुख से करता है, दृष्टि रूप से भगवान किस रूप से लेते हैं, दृष्टि रूप से, और वायु मार्ग से ग्रहण करते हैं। इसीलिए जब भगवान को भोग लगा दिया जाता है तो फिर बाद में वो भोजन नहीं रह के प्रसाद बन जाता है। तो प्रसाद की संज्ञा क्यों, क्योंकि भगवान ने उसका आंखों से, नेत्रों से, अपनी दृष्टि से और अपने वायु मार्ग से ग्रहण करके उसका स्पर्श कर लिया है, उस तेजोमय रूप को उसको आकार दे दिया। तो लिंग का अभिप्राय क्या है, उस शिव यानी वो आत्म रूप में जो लिंग रूप है जो हमें अपने मूल व्यवस्था को बताता है। हम यदि अपनी एक चक्र की व्यवस्था समझे तो हम देखेंगे 4 प्रकार के जीव उत्पन्न होते हैं, जरायुज जो गर्भ से पैदा होते हैं, अंडज जो अंडे से पैदा होते हैं, सुइदज जो दुर्गंध पसीना आदि से पैदा होते हैं, और चौथा उद्भिज जो पेड़ पौधे जो जड़ों से पैदा होते हैं। इन 4 प्रकार की सृष्टि हम देखेंगे किसी भी ब्रह्मांडीय प्रकृति में पैदा हो सकते हैं
1: जी। तो आपने प्रसाद का जिक्र किया बीच में, यानी जब भी हम किसी पावन भूमि का दर्शन करके आते हैं घर पर तो प्रसाद जरूर साथ लेकर आएं और वो घर परिवार में वितरित किया जाए।
0: बिल्कुल। अब यहाँ पर क्योंकि शिवजी को जब पूजन किया जाता है तो एक विशेष प्रावधान है कि प्रसाद लाएं या ना लाएं, क्योंकि ये भी बोला कि शिव पे चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण कर लिया तो कुत्ते की योनि मिलती है, ऐसा वर्णन भी मिल गया शास्त्रों में। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि उसको प्रत्यक्ष नहीं लेना है। लोग कहते हैं जो शिव पर जल चढ़ा उसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोला कि क्योंकि भगवान शिव ने चंडमुंड आदि को अधिकार दिया कि मेरा सर्वप्रथम जो भी मुझे ग्राह्य होगा वो सबसे पहले तुम्हें मिलेगा, जो तुम छोड़ दोगे वन्य को मिलेगा। तो क्या बोला, इसीलिए क्या होता है कि जो आप देखो नालिका जहां से भी सामग्री वहां से निकलती है भगवान शिव की, उसको लांगना नहीं चाहिए नहीं तो सारा पुण्य नष्ट हो जाता है
1: जी।
0: तो क्या बोला कि वो गर्भगृह में होती है, चंडमुंड का स्थान बना दिया जाता है किसी भी गर्भगृह में जहां पर भी शिवालय हो। तो जब उसके बाह्य रूप से आते हैं तो हम परिक्रमा कर सकते हैं लेकिन उसको उल्लंघना नहीं है, इसीलिए भगवान शिव की अर्ध परिक्रमा करने का विधान है, पूर्ण परिक्रमा करने का विधान ही नहीं है
1: जी।
0: और वहां पर उसके

0: आज जो बाहर सामग्री निकल गई उसको आप भोज्य रूप में प्रसाद रूप में बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं।
1: जी, एक और प्रश्न है। अक्सर ये कहा जाता है कि घर का जो मंदिर होता है, भले ही वो छोटा मंदिर हो, लेकिन शिवलिंग वहां नहीं रखना चाहिए, लेकिन कई लोग होते हैं वो घर में शिवलिंग की स्थापना करते हैं।
0: तो बिल्कुल, मैं आपसे जानना ये बहुत ही मतांतर वाला विषय है, लेकिन वास्तविकता ये तब आती है जब हम ग्रहण को ना ले उस अर्थ को जो कि वेदों में या शास्त्रों में लिखा है। शास्त्र में बिल्कुल शिवलिंग रखने का महत्व बताया है, लेकिन किस प्रकार का शिवलिंग। यदि आप शिवलिंग की आकृति हमारा जो अंगूठा है उससे बड़ा रखते हो तब दोष लगता है।
1: जी,
0: स्फटिक का शिवलिंग रख सकते हैं, मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करके उसका विसर्जन कर सकते हैं, या जो नर्मदा में जो भी हमें शिवलिंग मिले जिसे हम नर्मदेश्वर कहते हैं उसको यदि हम छोटी मुद्रा में लेके आए उसका अर्चन करें तो हो सकता है, लेकिन स्वयंभू शिवलिंग, जागृत शिवलिंग या प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग को घर में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि पंच भौतिक तत्व में उसकी ऊर्जा आपको वहां पे क्षेत्रीय रूप से आवरण करेगी। ऐसे में आपके सामान्य ऊर्जा, क्योंकि दैनिक ऊर्जाएं हमारे जीवन की अलग होती है और विशेष ऊर्जाएं अलग होती है, ऐसे में दो ऊर्जाओं का यदि सामान्य सकारात्मक प्रयोग हो जाए तो बहुत उत्तम हो जाता है, लेकिन यदि वो दोनों आपस में विच्छेद कर दें तो कई बार अर्थ के अनर्थ भी हो जाते हैं।
1: जी, यहां मैं ये भी जानना चाहूंगी, कई बार अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे मंदिर होते हैं जिनकी बहुत मान्यता होती है, शिव जी के मंदिर है, लेकिन ऐसे में ज्योतिर्लिंग दर्शन का विशेष महत्व है, तो अगर बहुत बड़ा कोई मंदिर है और ज्योतिर्लिंग मंदिर है, दोनों में अंतर क्या है?
0: मंदिर क्या है कि एक तंत्रोक्त भाग से इस स्थापना तत्व को लेकर चलता है जिसमें हम कहेंगे कि प्राण प्रतिष्ठित किया जाता है।
1: जी,
0: आप देखेंगे जब भी किसी मंदिर में स्थापना होती है तो कई दिन का प्रोसीजर चलता है, कहीं 5 दिन, कहीं 11 दिन, कहीं 10 दिन, कहीं 15 दिन, कहीं 1 महीना, वो जलाधिशयन, अन्नाधिशयन आदि की प्रक्रियाएं होती है। जैसा हमने जब राम जी की मंदिर की प्रतिष्ठा हुई तो उसमें भी बहुत सारे विधान हमने देखने को मिले।
1: जी,
0: अब जब शिवलिंग की स्थापना होती है तो उसके लिए जो स्थापना करने वाला उसका विचार आवरण भी शिव जैसा होना चाहिए, पहले तो ये प्रधानता आ जाती है। आज के समय में उस प्रकार के शुद्धि और क्रियाएं सबकी नहीं रही, इसलिए अघोर रूप में अघोरी आदि शिवलिंग की स्थापना करते हैं। प्राचीन समय में आप देखोगे मार्कंडेय ऋषि आदि ने हजारों लाखों शिवलिंग की स्थापना की, तो स्थापना करने का अपना एक महत्व है। बोला जाता है कि जो शिव की स्थापना करता है वो स्वयं शिव के समान हो जाता है, ये बोला। फिर यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करें तो यहाँ एक शब्द आता है कि ये किसी ने स्थापना नहीं की गई, ये स्वयंभू है, यानी कि प्रकृति में विशेष ऊर्जा को लेकर के प्रकृति ने स्वयं उसको उत्पन्न किया, या भगवान की विशेष शक्ति के द्वारा वो उत्पन्न हुए। यदि इस तत्व को देखें तो ये प्राण प्रतिष्ठित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयंभू ऑटोमेटिकली प्राण प्रतिष्ठित उत्पन्न ही हुए हैं। ये विशेष महत्व हो जाता है कि एक मैनमेड है। हम जब कोई कार्य करते हैं तो हम अल्प रूप से करते हैं, और जब भगवान कोई कार्य करते हैं तो पूर्ण रूप से करते हैं। इसीलिए भगवान को पूर्ण मधा पूर्ण मदम पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, ये तत्व की संज्ञा दी गई है। और ये किस प्रकार से है, जैसे समुद्र में से एक लोटा जल निकालो तो वो अपूर्ण नहीं माना जाएगा, है वो उसी का अंग, लेकिन समुद्र भी अपने आप में पूर्ण है और वो लोटे में भरा हुआ जल भी अपने आप में पूर्ण है। इस प्रकार से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही बचेगा। इस प्रकार के विधान से भगवान शिव को ज्योतिर्मय रूप से यहाँ पे अभिषेक किया जाता है और दर्शन किया जाता है।
1: जी, कई बार हमने ये भी देखा है जब ज्योतिर्लिंग पर या फिर शिव मंदिर में अलग अलग उपादानों पर जलाभिषेक किया जाता है तो उसमें कुछ सामग्री डाली जाती है, थोड़े अक्षत होते हैं, पुष्प होते हैं, और दुग्धाभिषेक भी करते हैं कई लोग, तो मैं इनका महत्व आपसे जानना चाहूंगी।
0: देखिए, लोग कहते हैं कि भगवान शिव को जल चढ़ाना चाहिए।
1: जी,
0: जिनके मस्तक पर ही जल हो उसको जल की क्या आवश्यकता। आप ये भी तो देखें, तो यहाँ जल चढ़ाने का मूल महत्व नहीं है, यहाँ अर्घ देने का मूल महत्व है, और इसीलिए अर्घ रूप में औषधियां मिलाई जाती है, कहीं पंच औषधि, कहीं सर्व औषधि आदि का मिलाने का महत्व है। ऐसे ही आप देखेंगे भगवान सूर्य, सूर्य भी स्वयं नारायण रूप भी कहे गए, शिव रूप भी कहे गए, तो लोग कहते हैं सूर्य को जल चढ़ाओ, जल नहीं चढ़ाना होता, सूर्य को अर्घ देना होता है। अगर आप देखेंगे इस महत्व को तो जो अभी हमारे बड़े बूढ़े वो जानते हैं कि अर्घ दिया जाता था ऊपर से दिया जाता, जल के अंदर चावल या फूल आदि डाल करके उसको अर्घ रूप में बना के भगवान को अर्पण किया जाता था, एक सेवा के रूप में, एक सत्कार के रूप में, एक आदर के रूप में, तो यह आदर रूप है। दूसरी बात, जब हम प्रकृति में तत्व में देखें तो यहाँ पे शिव रूप क्या है जो पंच रूप से आया, और उसका जब हम सोमीयकरण देखेंगे, सोम तत्व क्या है, लताओं का रस, सोम एक प्रकार की अमृत रूप लता थी जिसे बोला कि वेदों में बोला इंद्र ने सोम रस का पान किया, तो ये सोम रस कोई वैसी चीज नहीं है जो आजकल में निषेध मानी गई, ये सोम रस का मतलब है औषधियों का अर्क, जिसे हम आयुर्वेद में भी प्रयोग करते हैं अर्क के रूप में, लेकिन लोगों ने मत

0: अंतर में इसके अलग अलग प्राचीन से नवीनीकरण कर दिया और अर्थ का अनर्थ कर दिया। तो यहां पर क्या, जो भी रस के रूप में आए किसी भी तत्व के, उसको अर्पण किया जाना चाहिए। जैसे गाय है तो एक अंग है, भगवान का एक रूप है, तो उसके द्वारा जो प्राप्त हुआ दूध, वो किया, दूध क्या है, सबसे सूक्ष्म रूप है। अगर हम अपने स्किन में भी देखें तो सबसे बारीक रूप से, महीन रूप से दूध जा सकता है, सबसे शुद्धता का प्रतीक होता है। इसीलिए पय बोला गया, आपके रूप में बोला गया, आपह मयो व्यवस्था, इस प्रकार के मंत्र मिलते हैं। तो जल और दूध को मिला के करना चाहिए प्रयोग, या जैसे गन्ना है तो गन्ने के रस को प्रयोग करो, या गन्ने के रस से बनने वाले गुड़ को प्रयोग करो, वो एक विधान है। तिल आदि को अर्पण करने का प्रयोग है, अर्थात हम कह सकते हैं, या पेड़ है तो पेड़ के द्वारा उत्पन्न होने वाली पत्ती या उसका फल, अर्थात बिल्व या बिल्व पत्र, दोनों हम उसको अर्पण कर सकते हैं भगवान को। तो अलग अलग रूप से जिसकी जैसी भावना, जिसकी जैसी आवश्यकता, उसके अनुरूप भगवान को जो अर्पण करें। भगवान तो सर्वसाध्य है, जो दे दो सब सर्वसुलभ हो जाता है, इसलिए अर्पण कर देना चाहिए।
1: यस, एंड वी आर bringing to you the Somnath Amrit Mahotsav 2026 that has been held at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat, and the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi, has offered prayers at the Sri Somnath Temple, and he has also watched the special air show. The Surya Kiran aerobatic team of the Indian Air Force performed this spectacular air show atop the Somnath Temple, and the Honorable Prime Minister will be addressing a gathering at Somnath in just a short while from now, and meanwhile we bring you some devotional bhajan.

0: The Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi has arrived at the dais, and the Honorable Chief Minister of Gujarat Sri Bhupendra Bhai Patel and the Honorable Deputy Chief Minister of Gujarat Sri Harsha Sanghvi are also present, and the Honorable Prime Minister has performed a puja at the Sri Somnath Temple and is participating in the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at Prabhas Patan in Somnath, Gujarat.
1: माननीय प्रधानमंत्री जी इस समय मंच पर उपस्थित हैं, साथ ही गुजरात के माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र भाई पटेल और माननीय उप मुख्यमंत्री श्री हर्ष सांघवी उनके साथ उपस्थित एक विशाल जनसमूह जो है वो इस समय हम देख पा रहे हैं, और पारंपरिक परिधान कुछ ने धारण किए हैं, सर पर जो है वो पगड़ी पहनी हुई है, हाथों में पताकाएं हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी पूजन अर्चन करके यहाँ पर आए हैं, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मस्तक पर जो है वो भी तिलक धारण किया है, और यहाँ पर विशाल जनसमूह जो है बेहद उत्सुक और उत्साहित है, गमछे धारण किए हुए हैं, अंगवस्त्र पहने हैं, हाथों में पताकाएं हैं लगातार लहराते हुए, और एक विशाल स्क्रीन जो है वो दिखाई दे रही है जिस पर की मंदिर की प्रतिकृति बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी का अब अभिनंदन किया जा रहा है, पगड़ी उन्हें पहना कर अभिनंदन किया गया, और साथ ही अंगवस्त्र माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभिवादन स्वीकार किया, हाथ जोड़कर सबका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और इस वक्त मंचासीन जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनकी उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में, माननीय प्रधानमंत्री जी को अब एक स्मृति चिन्ह भेंट किया जा रहा है, सोमनाथ मंदिर की प्रतिकृति है, एक बेहद सुंदर तस्वीर माननीय प्रधानमंत्री
0: Minister in Gujarat government, Sri Arjun Modwadia, and a huge sea of people here at Prabhas Patan, and another memento being presented to the Honorable Prime Minister of India that features the lion of Gir, and this is quite close to the Gir sanctuary, and as we can see that there's a huge public who are present here and have come to listen to the Honorable Prime Minister, and yet another memento, a kalash being presented to the Honorable Prime Minister by the Sri Somnath Trust, and the Honorable Prime Minister himself is the president of the Sri Somnath Trust, and we have

0: Kashi Vishwanath corridor, the Sri Ambaji temple in Gujarat, and also the Pran Pratishtha of the Sri Ram Lala temple at Ayodhya. And this is the hallmark of the government of India, and the Honorable Prime Minister is now releasing the commemorative postal stamp, and also the stamp is being now released by the Honorable Prime Minister and the Chief Minister of Gujarat and the Deputy Chief Minister of Gujarat. It's a 5 rupee postage stamp depicting the Somnath Temple.
1: एक स्मारक डाक टिकट इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर की तस्वीर उस पर बनी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो डाक पुस्तिका है उसे जारी किया और उपस्थित जनसमूह की ओर विशेष रूप से उसे दिखाया भी, और मंच के जो पार्श्व भाग में स्क्रीन है उस पर भी इसकी छवियां इस समय होगी।
0: एंड नाउ नीलम, द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर विल रिलीज द कमेमोरेटिव coin. It is a 75 rupee denomination coin, and it's very beautiful indeed. The two sides can be seen on this very special memento that the Honorable Prime Minister is displaying, and this is to mark the occasion of the 75th anniversary of the consecration of the rebuilt Somnath Temple. It says Bharat, India, rupees 75, with the lion capital of the Sarnath, and on the heads there's the beautiful replica of the Somnath Temple.
1: 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का भी इस अवसर पर जारी किया गया। सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण के बाद उद्घाटन होने के 75 वर्ष पूरे होने पर विशेष ये कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, सोमनाथ अमृत महोत्सव। माननीय प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति इस अवसर पर, अन्य गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर उपस्थित हैं, और एक विशाल जनसमूह माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए उत्सुक। प्रधानमंत्री जी ने स्मारक डाक टिकट और सिक्का जारी किया है, और सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण पुनरुत्थान जो किया गया है और जो ऐतिहासिक इसका महत्व है उसके उससे जुड़ी प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया माननीय प्रधानमंत्री जी ने, और माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन अब इस कार्यक्रम में।
0: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, will now address the gathering.
2: जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव। गुजरात के मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, उपमुख्यमंत्री भाई हर्ष संघवी जी, गुजरात सरकार के मंत्रीगण, सांसद एवं विधायकगण, अन्य सभी महानुभाव, देवी और सज्जनों, आज प्रभास पाटन का पवित्र क्षेत्र एक अद्भुत प्रभा से भरा हुआ है। महादेव का ये साक्षात्कार, ये सौंदर्य धरती और आसमान से हुई पुष्प वर्षा, भगवा ध्वजों की यह आभा, कला संगीत और नृत्य की अद्भुत प्रस्तुतियां, वेद मंत्रों का उच्चार, गर्भगृह में हो रहा शिव पंचाक्षरी का अखंड पाठ, और इस सब के साथ साथ सागर की लहरों का जयघोष, ऐसा लग रहा है जैसे ये सृष्टि एक साथ बोल रही है जय सोमनाथ, जय जय सोमनाथ।

साथियों, समय खुद जिनकी इच्छा से प्रकट होता है, जो स्वयं कालातीत है, जो स्वयं काल स्वरूप है, आज उन देवाधिदेव महादेव की विग्रह प्रतिष्ठा के हम 75 वर्ष मना रहे हैं। ये सृष्टि जिनसे सृजित होती है, जिनमें लय हो जाती है, यतो जायते पाल्यते येन विश्वम तमीशम भजे लियते यत्र विश्वम। आज हम उनके धाम के पुनर्निर्माण का उत्सव मना रहे हैं। जो हलाहल को पीकर नीलकंठ हो गए, आज उन्हीं की शरण में यहां सोमनाथ अमृत महोत्सव हो रहा है। ये सब भगवान सदाशिव की ही लीला है। साथियों, दादा सोमनाथ के अनन्य भक्त के रूप में मैं कितनी बार यहां आया हूं, कितनी ही बार उनके सामने नतमस्तक हुआ हूं, लेकिन आज जब मैं यहां आ रहा था तो समय की ये यात्रा एक सुखद अनुभूति दे रही थी। अभी कुछ ही महीने पहले मैं यहां आया था, तब हम सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मना रहे थे। प्रथम विध्वंस के 1000 वर्ष बाद भी सोमनाथ के अविनाशी होने का गर्व, और आज इस आधुनिक स्वरूप की प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष, हम केवल दो आयोजनों का हिस्सा भर नहीं, सिर्फ हिस्सा भर नहीं बने हैं, हमें 1000 वर्षों की अमृत यात्रा को अनुभव करने का शिवजी ने मौका दिया है। साथियों, 75 साल पहले आज के ही दिन सोमनाथ मंदिर की पुनर्स्थापना, ये कोई साधारण अवसर नहीं था। अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था। आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है। साथियों, इसलिए आज इस अवसर पर मैं केवल 75 वर्षों की झांकी नहीं देख रहा हूं, मैं यहां देख रहा हूं विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ

किया है। मैं यहां देख रहा हूं असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहां देख रहा हूं हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहां देख रहा हूं भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके न हरा सके। और मैं यहां देख रहा हूं सोमनाथ का अमृत महोत्सव, ये केवल अतीत का उत्सव नहीं है, ये अगले 1000 वर्षों के लिए भारत की प्रेरणा का महोत्सव भी है। मैं सभी देशवासियों को दादा सोमनाथ के कोटि कोटि भक्तों को इस महोत्सव की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज का दिन एक और वजह से भी विशेष है। 11 मई 1998 यानी आज के ही दिन देश ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था। देश ने 11 मई को पहले 3 परमाणु परीक्षण किए। हमारे वैज्ञानिकों ने भारत के सामर्थ्य को, भारत की क्षमता को वैज्ञानिकों ने दुनिया के सामने रखा। दुनिया में तूफान आ गया, भारत उसकी ये हैसियत, कि कौन होता है भारत जो परमाणु परीक्षण करे। और दुनिया की आंखें लाल हो गई, दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए, आर्थिक संकट की संभावनाओं के रास्ते सारे के सारे बंद कर दिए गए। कोई भी हिल जाता जब दुनिया भर की बड़ी बड़ी शक्तियां इतना बड़ा आक्रमण कर दें, तो आगे के रास्ते दिखते नहीं हैं। लेकिन हम कोई और मिट्टी के बने हुए हैं। 11 मई के बाद दुनिया हम पर टूट पड़ी थी। 11 मई को वैज्ञानिकों ने अपना काम कर लिया था, लेकिन 13 मई को फिर 2 और परमाणु परीक्षण हुए। उससे दुनिया को पता चला था कि भारत की राजनीतिक इच्छा शक्ति कितनी अटल है। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है।

भारत को झुका नहीं सकती, दबाव में नहीं ला सकती। साथियों, देश ने पोखरण परमाणु परीक्षण को ऑपरेशन शक्ति नाम दिया था, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की आराधना ये हमारी परंपरा रही है। अर्धनारीश्वर शिव स्वयं भी शक्ति के साथ ही पूर्ण होते हैं। आपको याद होगा, जब देश का मिशन चंद्रयान सफल हुआ था, तब चंद्रमा पर जहां भारत का रोवर लैंड हुआ, उस जगह का नाम भी हमने शिव शक्ति पॉइंट रखा है, क्योंकि हमारी आस्था में चंद्रमा शिव से जुड़ा है और शिव शक्ति से जुड़े हैं। और ये कितना सुखद है कि चंद्रमा के नाम से ही इस ज्योतिर्लिंग को हम सोमनाथ कहते हैं। साथियों, शिव और शक्ति की हमारी आराधना का जो विचार है, वो देश की वैज्ञानिक प्रगति के लिए भी प्रेरणा बने। आज हम ये संकल्प साकार होते देख रहे हैं। मैं इस अवसर पर भगवान सोमनाथ के चरणों से सभी देशवासियों को ऑपरेशन शक्ति की वर्षगांठ की भी बधाई देता हूं। साथियों, जब मैं पिछली बार यहां आया था, तब मैंने कहा था, जिसके नाम में ही सोम अर्थात अमृत जुड़ा हो, उसे नष्ट कौन कर सकता है। इतिहास के लंबे कालखंड में इस मंदिर ने कितने ही आक्रमण झेले। महमूद गजनवी, अलाउद्दीन खिलजी जैसे अनेक आक्रांत आए, लुटेरों ने सोमनाथ मंदिर का वैभव मिटाने का प्रयास किया। वो सोमनाथ को एक भौतिक ढांचा मानकर उससे टकराते रहे। बार बार इस मंदिर को, इस ढांचे को तोड़ा गया और ये बार बार बनता रहा, हर बार उठ खड़ा होता रहा, क्योंकि तोड़ने वालों को मालूम नहीं था हमारे राष्ट्र का वैचारिक सामर्थ्य क्या है। हम भौतिक शरीर को नश्वर मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम जानते हैं उसके भीतर बैठी आत्मा अविनाशी है। और फिर तो शिव तो सर्वात्मा है, इसलिए अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार, ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी

उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया, इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़ जामसा महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। मैं आज इस अवसर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, श्रीमान के एम मुंशी जी, ऐसी सभी ज्ञात अज्ञात दिव्यात्माओं को भी श्रद्धापूर्वक आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनका स्मरण हमें ये प्रेरणा देता है कि हमें न केवल अपनी सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है, बल्कि इस जिम्मेदारी को आने वाली पीढ़ियों के हाथों में सौंप कर भी जाना है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक स्थल हजारों वर्षों से भारत की पहचान रहे हैं। इतनी समृद्ध विरासत हमें मिली है, लेकिन आप विडंबना देखिए, हमने दशकों तक उसके महत्व को नहीं समझा। दुनिया में से कितने ही उदाहरण हैं जहां विदेशी हमलावरों ने राष्ट्रीय पहचान से जुड़े स्थलों को नष्ट किया, लेकिन जब उस देश के लोगों को मौका मिला, सबने साथ आकर अपनी पहचान को फिर से सहजा, फिर से संवारा, पुनः प्रतिष्ठा की। लेकिन हमारे यहां राष्ट्रीय स्वाभिमान से जुड़े विषयों पर भी राजनीति होती रही। सोमनाथ खुद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आजादी के बाद पहले दायित्वों में से एक था कि सोमनाथ मंदिर का पुनरुद्धार करते, इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने इसके लिए इतने प्रयास किए। लेकिन हम सब जानते हैं उन्हें इसके लिए नेहरू जी द्वारा कितना विरोध झेलना पड़ा था। मैं आज इसके विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये सरदार साहब की इच्छा शक्ति थी कि इतने विरोध के बावजूद सरदार साहब डिगे नहीं, सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ और देश ने सदियों के कलंक को भी धो दिया। साथियों, दुर्भाग्य से देश में ऐसी शक्तियां आज भी प्रभावी हैं जिन्हें राष्ट्रीय स्वाभिमान से ज्यादा तुष्टीकरण जरूरी लगता है। राम मंदिर निर्माण जैसे अवसरों पर भी हमने देखा है किस तरह राम मंदिर निर्माण का भी विरोध किया गया। हमें ऐसी मानसिकता से सावधान रहना है।

इस तरह की संकुचित राजनीति को हमें पीछे छोड़ना होगा। हमें विकास और विरासत को साथ लेकर के आगे बढ़ना होगा। साथियों, बीते वर्षों में मुझे सोमनाथ ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सोमनाथ दादा की सेवा का जो अवसर मिला, इस मंदिर और क्षेत्र के विकास के लिए जो ऐतिहासिक काम हुए, उस परिवर्तन को आज हम सब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। लेकिन साथ ही इस सेवा का मुझे व्यक्तिगत लाभ भी हुआ है। आज मुझे देश के सभी पवित्र तीर्थों के विकास का जो मौका मिल रहा है, ये भगवान सोमनाथ का ही कृपा प्रसाद है। साथियों, आज काशी में सदियों बाद बाबा विश्वनाथ धाम का इतना भव्य विस्तार हुआ है। आज उज्जैन में महाकाल महालोक के विशाल दर्शन भी हो रहे हैं। केदारनाथ धाम का पुनर्निर्माण भी हुआ है। जैसा मैंने पहले कहा, अयोध्या में 500 साल की प्रतीक्षा भी पूरी हुई है। आज वहां भव्य मंदिर में रामलला विराजमान है। साथियों, ऐसे कितने ही पवित्र तीर्थ, पवित्र मठ, मंदिर और क्षेत्र, उनकी जो महिमा हमने पुराणों में सुनी है, आज वहां हमें उस समृद्ध परंपरा के दर्शन होने लगे हैं। और ये इतना कुछ 10-12 साल के भीतर भीतर हुआ है। साथियों, हमारे सांस्कृतिक केंद्रों की उपेक्षा देश के विकास में बड़ी बाधा रही है, क्योंकि हमारे तीर्थ भारत की आध्यात्मिक सामाजिक व्यवस्था के केंद्र तो है ही, वो देश की आर्थिक प्रगति के भी स्रोत रहे हैं। आज आप देखिए, चार धाम महामार्ग परियोजना, गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब तक रोपवे परियोजना, करतारपुर कॉरिडोर, बौद्ध सर्किट का विकास, इनके जरिए देश में तीर्थ क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं। सोमनाथ परिसर भी इसका एक सशक्त उदाहरण है। आज सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट से सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। हजारों लोगों का जीवन इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। देश दुनिया के कोने कोने से जो लोग यहां आते हैं, वो गुजरात के बाकी हिस्सों में भी जाते हैं। इससे प्रदेश और देश में प्रगति के नए द्वार खुलते हैं। साथियों, हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलिद्वम ब्रह्मा, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा। हम हमारे तीर्थों और मंदिरों के विकास के साथ साथ उनकी गरिमा के लिए जागरूक होना होगा। हमें ऐसा जीवन अपनाएं जिससे प्राकृतिक और पर्यावरण की रक्षा हो। साथ ही हम हमारे पुण्य स्थलों को पूरी दुनिया के लिए एक उदाहरण के रूप में विकसित करें। हमें इन संकल्पों को अपनी आस्था से जोड़

0: लेकर जीना होगा। साथियों, जब नई पीढ़ियां अपने इतिहास, अपनी आस्था और अपने सांस्कृतिक मूल्यों से जुड़ती है, तब राष्ट्र का आत्मबल और मजबूत होता है। आज भारत जिस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारी सांस्कृतिक निरंतरता की भी बहुत बड़ी भूमिका है। आधुनिक और विरासत, आधुनिकता हो या विरासत हो, भारत में इसे कोई अलग नहीं कर सकता। भारत में एक दूसरे के विरोधी नहीं है, ये साथ साथ आगे बढ़ने वाली शक्तियां हैं, एक दूसरे में प्राण पूरने वाली शक्तियां हैं। सोमनाथ हमें याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूत रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे, जब वो अपनी विरासत को आने वाली पीढ़ियों तक उसी श्रद्धा और विश्वास के साथ उनके हाथों में सुपुर्द करे। 75 वर्ष पहले जब पुनर्निर्मित, ये पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है। एक बार फिर सभी देशवासियों को विरासत में विश्वास करने वाले हर नागरिक को, आप सभी को इस अवसर की बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ बोलिए, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ, हर हर महादेव।
1: The Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi, was addressing the gathering at the Somnath Amrit Mahotsav 2026 at the Somnath Temple at Prabhas Patan in Gujarat. The Prime Minister said that the Somnath Temple is the symbol of India's national respect, and it has withstood the travails of time. It has withstood the tyranny of Mahmud of Ghaznavi and Alauddin Khilji and many other tyrants. The Prime Minister paid tributes to Lakulisha and Soma Sarma and others, kings and commoners who defended the Somnath Temple and also rebuilt them over 1,000 years. He paid special tributes to Sardar Vallabhbhai Patel and to Dr. Rajendra Prasad. The Prime Minister said that the government is committed towards keeping up our heritage and our culture, and he also said that the government is committed towards Vikas Bhi and Virasat Bhi. The Prime Minister also mentioned that today is the anniversary of Operation Shakti, that is on the 11th of May in 1998, India tested nuclear weapons for the second time under the leadership of Atal Bihari Vajpayee. And as we come to the end of this special broadcast, we conclude with this mantra: Om Namah Shambhavaya Cha Mano Bhavaya Cha Namah Shankaraya Cha Mayaskaraya Cha Namah Shivaya Cha Shivtaraya Cha Har Har Mahadev.
2: आज सोमनाथ मंदिर प्रांगण में सोमनाथ अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया माननीय प्रधान

0: प्रधानमंत्री इस आयोजन में शामिल हुए। सोमनाथ भारत की अजय सभ्यता का प्रतीक है, ये कहा गया। सोमनाथ भारत की शाश्वत ज्योति है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जनसमूह को संबोधित किया और कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को झुका नहीं सकती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिव शक्ति पॉइंट का उल्लेख किया, ऑपरेशन शक्ति का उल्लेख किया, महान विभूतियों का स्मरण करते हुए उन्हें नमन किया और साथ ही प्रकृति पूजन परंपरा का भी उल्लेख करते हुए हर भारतीय को प्रेरित किया कि अपनी आध्यात्मिक चेतना को हमेशा ऊर्ध्वगामी रखें और जो हमारे आस्था के स्थल हैं उनके प्रति समर्पण बनाए रखें और इस तरह से राष्ट्र सेवा में लीन रहें। ये विशेष प्रसारण आप आकाशवाणी के माध्यम से सुन रहे थे। विशेष प्रसारण प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार वत्स के साथ स्टूडियो में हमारे साथी हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर आशुतोष शर्मा के साथ और एस वाई खान के साथ अपने को कमेंटेटर कौशिक रॉय के साथ मैं नीलम मलकानिया इस विशेष आयोजन की आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देते हुए अब आप सभी से अनुमति लेती हूं। नमस्कार।
1: अभी आप सोमनाथ अमृत महोत्सव का सजीव विवरण सुन रहे थे। विवरण दे रहे थे नीलम मलकानिया और कौशिक रॉय। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानु जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: मानयोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अज पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर दी मुड़ उसारी दे मौके ते सोमनाथ अमृत पर्व 2026 विच हिस्सा लै रहे सन। इस समारोह दा सीधा प्रसारण तुसी साडी दिल्ली केंद्र तों सुन रहे सी। असी आकाशवाणी दे जलंधर केंद्र तों बोल रहे हां। दिन दे 1:15 बजे ने आओ सुनदे हां प्रोग्राम फौजी वीरां लई।

0: कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित ए रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: तै सोचा विच मैं हुन फोलां की खोया की पाया
0: लड़ीवार नाटक होया

0: सोमनाथ अमृत पर्व समारोह नु कीता संबोधन, कहा सोमनाथ अमृत पर्व अगले 1000 साल लई देश दी प्रेरणा होवेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों पछम एशिया संकट दौरान राष्ट्र नु मजबूत करन विच देशवासियां नु भाईवाल बनन दा सद्दा, अज राष्ट्रीय तकनालोजी दिवस मनाया जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में काकिरा लाहरू सड़क से एक कार हादसे च 6 सैलानियों की मौत, 4 होर गंभीर जख्मी। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होगा। इस दे नाल ही राष्ट्रीय खबरों का यह बुलेटिन खत्म होंदा है। साडा 1:10 का प्रदेशिक खबरों का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे 2:30 ते। नमस्कार,
1: ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में सोमनाथ अमृत पर्व के दौरान महापूजा की और कुंभ अभिषेक की रस्म अदा की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोमनाथ मंदिर के अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नज़रिए को तरगीब मिलेगी। वज़ीर-ए-दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल पर तबादले ख्याल के लिए वजीरों की गैर रस्मी बाख्तियार ग्रुप की मीटिंग की सदारत की। मरकज ने विकसित भारत जीराम जी एक्ट के निफाज को नोटिफाई कर दिया है जो 1 जुलाई से शुरू होगा। स्टेट बैंक की तहकीक में कहा गया है कि आलमी उथल पुथल के तनाजुर में मुल्क की मईशत बदस्तूर मुस्तहकम है और अगले माली साल में शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया है। और IPL क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सोमनाथ अमृत पर्व के मौके पर पहले ज्योतिर्लिंग सोमनाथ महादेव मंदिर में खसूसी महापूजा की। जनाब मोदी ने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभ अभिषेक रस्म अदा की। मंदिर की तारीख में पहली मरतबा 11 तीर्थ स्थानों का पवित्र जल इस्तेमाल करते हुए मंदिर के शिखर पर जल अभिषेक किया गया। जनाब मोदी ने परचम कुशाई की तकरीब में भी शिरकत की। इस दौरान भारतीय फिजाइया ने एयर शो का अहतमाम किया जिसमें सूर्य किरण टीम ने सोमनाथ मंदिर के ऊपर आसमान में शानदार फिजाई करतब का मुजाहरा किया। इस मौके पर हेलीकॉप्टरों से मंदिर के ऊपर फूल बरसाए गए। इसके बाद जनाब मोदी खसूसी नुमाइश देखने गए। सोमनाथ मंदिर की तामीरों के अफ्तताह के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व मनाया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर पुख्ता अकीदे, रूहानियत और मुल्क की दायमी रूह की एक पवित्र अलामत के तौर पर कायम है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व माजी का जश्न मनाने के लिए सिर्फ एक फेस्टिवल नहीं है बल्कि ये आइंदा 1000 बरस के लिए मुल्क की तहरीक का बायस है। वो गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव के मौके पर आवाम से खिताब कर रहे थे।
2: पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर में 75 वर्ष पहले प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भारत ने एक नई चेतना यात्रा शुरू की थी। आज 75 वर्ष बाद वही यात्रा और अधिक व्यापक रूप में हमारे सामने है। हमें इसे नई ऊंचाई पर लेकर जाना है। हमारे संकल्पों को पूरा करने में दादा सोमनाथ का आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ रहे, यही प्रार्थना है।
1: वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि सोमनाथ हमें ये याद दिलाता है कि एक मुल्क उस सूरत में ही मजबूत और मुस्तहकम रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से मरबूत रहे। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत भारत को ना झुका सकती है ना दबा सकती है। उन्होंने कहा कि 11 मई को पहले 3 न्यूक्लियाई तजुर्बे किए गए और मुल्क के साइंसदानों ने पूरी दुनिया को भारत की सलाहियतों से बावर कराया। उन्होंने कहा कि इन तजुर्बात से दुनिया भर ये जाहिर हुआ कि मुल्क की सियासी कुव्वत इरादी कितनी मजबूत है।
2: हमारी आस्था हमें जीवन जीने का तरीका भी सिखाती है, क्योंकि हम मानते हैं सर्वम खलित्वम ब्रह्म, अर्थात सृष्टि का हर एक घटक, इस संपूर्ण प्रकृति भी ईश्वर का ही स्वरूप है। इसलिए हमारी आस्था नदियों में भी है, वृक्षों में भी है, हम जंगलों को भी श्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं, हम पर्वतों में भी पवित्रता का भाव रखते हैं। और आज जब दुनिया प्राकृतिक जीवन शैली की ओर लौट रही है, हमें हमारी शक्ति को भी पहचानना होगा।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सकाफत और सियाहत के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत का एक मजमून शेयर किया है जिसमें सोमनाथ मंदिर की दायमी तहजीबी अहमियत और मजबूती को उजागर किया गया है। सोशल मीडिया की एक पोस्ट पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क के देरपा जज्बे को तकवियत पहुंचाते हुए सोमनाथ एक मंदिर से कहीं ज्यादा

0: जाकर है। जनाब मोदी ने इस बात को उजागर किया कि खंडराज से आहिया तक इसके सफर से मुल्क के शानदार मजबूत विरासत और विरसे की अक्कासी होती है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने लोगों पर जोर दिया है कि वो मगरबी एशिया बहरान के तनाजुर में मुल्क को मजबूत बनाने में साझेदार बने। हैदराबाद में एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क के लोगों से 7 अपीलें की। जनाब मोदी ने शहरियों पर जोर दिया कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और कार पूलिंग के इस्तेमाल के जरिए दरामद शुदा ईंधन की खपत कम करके गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर बचाने में मदद करें। वज़ीर-ए-आज़म की अपील एक ऐसे वक्त सामने आई है जब मगरबी एशिया बहरान और आबनाए हुरमुस में तातुल जारी रहने की वजह से खाम तेल की कीमतें $100 फी बैरल से ऊपर चल रही हैं। गुज़श्ता महीने के आखिर में खाम तेल की कीमतें $126 फी बैरल तक पहुंच गई थीं, जो पिछले 52 हफ्ते में सबसे ज्यादा है।
1: वैश्विक संकट के इस समय में हमें कर्तव्यों को सर्वोपरि रखते हुए कुछ संकल्प लेने होंगे और उन संकल्पों को पूरे समर्पण भाव से पूरा करना होगा। जैसे एक बड़ा संकल्प है पेट्रोल डीजल का संयम से इस्तेमाल करना, हमें पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करना होगा। अगर कार में ही जाना जरूरी है तो फिर कार पूल करने का प्रयास करें।
0: वज़ीर-ए-आज़म ने वर्क फ्रॉम होम के सिलसिले को बहाल किए जाने की ज़रूरत भी उजागर की। जनाब मोदी ने लोगों से कहा कि वो खुरदनी तेल का इस्तेमाल कम करें। साथ ही उन्होंने किसानों पर जोर दिया कि वो मुल्क के बाहर से मंगाई गई कीमियावी खाद पर इन्हिसार कम करें। वोकल फॉर लोकल तहरीक को उजागर करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि 2047 तक विकसित भारत का निशाना हासिल करने के लिए खुद किफालत और नामियाती खेती बाड़ी ज़रूरी हैं।
1: एक ज़माना था जब संकट आता था तो लोग देश हित में सोना दान दे देते थे। आज दान की जरूरत नहीं है, लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा।
0: मगरबी बंगाल के वजीर आला शुभेंदु अधिकारी ने बांग्लादेश से मुत्तसिल सरहद पर बाड़ लगाने के लिए आरजी बीएसएफ को मुंतकिल करने का ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि जमीन की मुंतकली का अमल पीर से शुरू हो जाएगा और 1.5 महीने के अंदर अंदर इसे मुकम्मल कर लिया जाएगा। चुनाव के बाद मगरबी बंगाल में नई सरकार की तश्कील के बाद आज काबीना की पहली मीटिंग में यह फैसला किया गया। जनाब अधिकारी ने रियासत में आयुष्मान भारत सेहत स्कीम नीज मरकजी सरकार की कई दीगर स्कीमें नाफिज करने का भी ऐलान किया।
2: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसपोर्ट करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड डिपार्टमेंट जो लैंड उनका पास है, उन्होंने लैंड डिपार्टमेंट ने बहुत सारा एक्सरसाइज भी करके रखा है, वो लैंड ट्रांसपोर्ट आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने मगरबी एशिया की सूरत हाल की निगरानी के लिए तश्कील करदा बाख्तियार वज़रा के गैर रस्मी ग्रुप की एक मीटिंग की आज सदारत की। खत्ते में बदलती हुई सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इस मीटिंग का इनेकाद किया गया था। मरकज ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी ग्रामीण एक्ट 2025 के निफाज को नोटिफाई किया है। इस साल 1 जुलाई से मुल्क भर में इसका इतलाक होगा। देही तरक्की की वजारत ने कहा है कि यह कानून जिसके तहत हर माली बरस में 125 दिन के रोजगार की गारंटी दी जा रही है देही भारत को बाख्तियार बनाएगा। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक तहकीकी रिपोर्ट के मुताबिक आलमी उतार चढ़ाव के बावजूद मुल्क की मईशत मजबूत है। इसमें माली साल 2026-27 के दौरान मईशत की शरह तरक्की 6.6% रहने का अंदाजा लगाया गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला दिल्ली कैपिटल्स से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव से अगले 1000 साल के लिए मुल्क के नज़रिए को तरगीब मिलेगी। जनाब मोदी ने मंदिर के अहिया को 75 साल मुकम्मल होने पर महापूजा की। मगरबी बंगाल के वज़ीर-ए-आला शुभेंदु अधिकारी ने सरहद पर

0: ਅਸੀਂ ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦਿਨ ਦੇ 2:15 ਵੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਓ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸੇ ਦੁਪਹਿਰ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਕਨਕਲਤਾ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव भारत के दृष्टिकोण को आने वाले 1000 वर्ष तक प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर के पुनर्निर्माण के 75 वर्ष पूरे होने पर महापूजा की। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करने की घोषणा की। राज्य में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का भी शुभारम्भ। केंद्र ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के 1 जुलाई से क्रियान्वयन की अधिसूचना जारी की। एसबीआई के शोध के अनुसार वैश्विक चुनौतियों के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था मजबूत बनी हुई है। अगले वित्त वर्ष में 6.6% की वृद्धि का अनुमान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्ष तक देश की प्रेरणा बनेगा।
2: मैं यहाँ देख रहा हूँ विनाश में सृजन के संकल्प को, जिसे सोमनाथ ने चरितार्थ किया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ असत्य पर सत्य की विजय को, जिसे प्रभाष पाटन ने बार बार जिया है। मैं यहाँ देख रहा हूँ हजारों वर्षों की आध्यात्मिक चेतना को, जिसने मानव मात्र के कल्याण की सीख समूचे विश्व को दी है। मैं यहाँ देख रहा हूँ भारत के उस अविनाशी स्वरूप को, जिसे सदियों के कुत्सित प्रयास भी न मिटा सके, न हरा सके।
1: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र तभी लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है जब वो अपनी जड़ों से जुड़ा रहे।
2: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि 11 मई 1998 को 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे, जिनके माध्यम से देश के वैज्ञानिकों ने भारत की क्षमताओं का प्रदर्शन पूरी दुनिया के सामने किया।
2: दुनिया भर की शक्तियां भारत को दबोचने के लिए मैदान में उतरी, अनेक प्रकार के बंधन लग गए। उस समय पूरी दुनिया का दबाव भारत पर था, लेकिन अटल जी के नेतृत्व में बीजेपी सरकार ने दिखाया था कि हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है। दुनिया की कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती।
1: इससे पहले प्रधानमंत्री ने सोमनाथ महादेव मंदिर में विशेष महापूजा की। उन्होंने सोमनाथ मंदिर के शिखर पर कुंभाभिषेक भी किया। मंदिर के इतिहास में पहली बार शिखर पर 11 तीर्थस्थलों से लाए गए पवित्र जल से जलाभिषेक किया गया। श्री मोदी ध्वजारोहण समारोह में भी शामिल हुए। इस बीच वायुसेना ने एयर शो किया, जिसमें सूर्य किरण एरोबेटिक्स टीम ने सोमनाथ के ऊपर मनमोहक करतब दिखाए। हेलीकॉप्टर के जरिए पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद श्री मोदी ने विशेष प्रदर्शनी का अवलोकन किया। श्री मोदी ने हमीरजी गोहिल सर्कल तक रोड शो भी किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित

0: सोमनाथ स्वाभिमान उत्सव के अवसर पर देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में उन्होंने कहा कि ये उत्सव भारत की शाश्वत ऊर्जा का उत्सव है और सोमनाथ मंदिर भारत की आध्यात्मिक चेतना और आस्था का सशक्त प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर की दृढ़ता और शाश्वत सभ्यतागत महत्व को उजागर करने वाले संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के लेख को साझा किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ एक मंदिर से अधिक देश के मजबूत मनोबल का प्रमाण है। अपने लेख में श्री शेखावत ने मंदिर के इतिहास को समकालीन भारत के साथ जोड़ते हुए लिखा है कि सोमनाथ की भावना 21वीं सदी के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत है। श्री शेखावत ने सोमनाथ स्वाभिमान पर्व के तहत वर्ष भर चलने वाले राष्ट्रीय आयोजनों का उल्लेख किया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज कहा कि राज्य सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। चुनाव के बाद पश्चिम बंगाल में नई सरकार गठित होने के बाद आज हुई मंत्रिमंडल की पहली बैठक में यह निर्णय लिया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने के लिए जमीन रोक रखी थी।
1: आज पहले कैबिनेट में हम लोग बीएसएफ को लैंड ट्रांसफर करने का डिसीजन ले लिया है। लैंड ट्रांसफर आज से शुरू होगा। पहले कैबिनेट ये आने वाला 45 डेज के अंदर पूरा के पूरा जमीन एमएचए को ट्रांसफर करेगा, बीएसएफ फेंसिंग पूरा कर देगा और इल्लीगल इन्फिल्ट्रेटर्स का जो हमारी प्रॉब्लम चल रहा है ये भी कुछ दिन के अंदर रिजोल्व हो जाएगा।
0: श्री अधिकारी ने राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना और कई अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन की घोषणा की। राज्य को अब आधिकारिक तौर पर आयुष्मान भारत योजना में शामिल कर लिया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना का लाभ भी प्राप्त किया जा सकेगा। श्री अधिकारी ने बताया कि केंद्र सरकार के दिशा निर्देश तत्काल लागू किए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल ने चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा दिए गए वचन के अनुसार विद्यालय की नौकरी के आवेदकों के लिए उम्र सीमा में 5 वर्ष का विस्तार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। तमिलनाडु विधानसभा में आज 100 से अधिक नवनिर्वाचित सदस्यों ने शपथ ली। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय और कैबिनेट सदस्यों, प्रतिपक्ष नेता उदयनिधि स्टालिन, पूर्व मुख्यमंत्रियों इडापड्डी के पलनीसामी तथा ओ पन्नीरसेल्वम ने भी शपथ ली। इसके अलावा प्रमुख सदस्यों प्रेमलता, विजयकांत, सौम्या, अंबुमणि और गठबंधन के नेताओं ने भी शपथ ली। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम 2025 के क्रियान्वयन के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। यह अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देशभर में लागू हो जाएगा। देशभर में नए ढांचे के क्रियान्वयन के लिए मौजूदा वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेही भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और गांव के समग्र और सतत विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महिला श्रमिकों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम कार्यस्थलों पर बच्चों की देखभाल के लिए एक महत्वपूर्ण प्रावधान करता है। 5 वर्ष से कम उम्र के 5 या अधिक बच्चों की उपस्थिति में उनकी देखभाल के लिए एक महिला श्रमिक को नियुक्त किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच राष्ट्र को सशक्त बनाने में देशवासियों को साझेदार बनने का आह्वान किया है। हैदराबाद में कल एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्र से साथ अपील की। उन्होंने नागरिकों से सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पोलिंग के जरिए आयातित ईंधन के उपभोग को कम करके विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित करने में मदद करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 वर्ष

0: ले विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह किया। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेशों में शादी कार्यक्रम और अत्यधिक सोने की खरीदारी न करने का आग्रह भी किया। वोकल फॉर लोकल आंदोलन का नारा बुलंद करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आत्मनिर्भरता और जैविक कृषि भारत के लिए आवश्यक है।
1: भारत सरकार खेतों में डीजल पंप की जगह सोलर पंप की योजना चला रही है। मैं कोविड काल में भी आग्रह करता था कि हम स्थानीय चीजें खरीदें, वोकल फॉर लोकल के मंत्र को लेकर चले। हम मेड इन इंडिया चीजें खरीदकर भी विदेशी मुद्रा बचा सकते हैं और हमारे देश में स्थानीय उत्पादन की कोई कमी नहीं है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज पश्चिम एशिया की स्थिति की निगरानी करने के लिए गठित अनौपचारिक अधिकार प्राप्त मंत्री समूह की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में क्षेत्र की उभरती स्थिति की समीक्षा की गई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मौजूदा वैश्विक अनिश्चितताओं को देखते हुए नागरिकों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है। आज नई दिल्ली में आयोजित सीआईआई के वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री वैष्णव ने कहा कि पश्चिम एशिया में संघर्ष अब भी जारी है और शांति की स्थिति अभी दूर है। देश के लिए आर्थिक मोर्चे पर जिम्मेदारी से काम करना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नागरिकों को अपने दैनिक जीवन में उन क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां विदेशी मुद्रा का खर्च कम से कम किया जा सके।
2: हमारे प्रधानमंत्री ने हम सभी नागरिकों से उन सभी चीजों पर होने वाले खर्च को कम करने का आग्रह किया है जिनके लिए विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ती है। साथ ही हमें अधिक से अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करनी भी होगी। ये दोनों बातें एक साथ होनी चाहिए। इसलिए मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रधानमंत्री के राष्ट्र के नाम दिए गए आह्वान को गंभीरता से ले।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे में एकीकृत कार्बन कैप्चर और उपयोग संयंत्र का उद्घाटन किया। उन्होंने भूवैज्ञानिक कार्बन डाइऑक्साइड पृथक्करण के लिए वैज्ञानिक ड्रिलिंग का भी शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने इस गंभीर वैश्विक समस्या का समाधान विकसित करने के लिए IIT बॉम्बे को बधाई दी और घोषणा की कि इस परियोजना को अगले महीने फ्रांस में होने वाले भारत इनोवेट्स 2026 में प्रस्तुत किया जाएगा। सरकार ने सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रहे उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि वाइस एडमिरल AN प्रमोद ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने भारतीय विमानों और हवाई अड्डों को निशाना बनाया था। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने श्योपुर जिले में कुनो राष्ट्रीय उद्यान के खुले जंगल में आज दो मादा चीता को छोड़ा। ये दोनों चीते इस वर्ष फरवरी में बोत्सवाना से भारत लाए गए 9 चीतों में से हैं। उन्हें क्वारंटीन और अनुकूलन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूरी करने के बाद जंगल में छोड़ा गया। इनके आने से देश में चीतों की कुल संख्या 57 हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @TIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। वैश्विक उथल पुथल के बावजूद देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। भारतीय स्टेट बैंक द्वारा आज जारी रिसर्च रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2026-27 में अर्थव्यवस्था में 6.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। रिपोर्ट में पिछले वित्त वर्ष की चौथी तिमाही में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि का अनुमान लगभग 7.2% लगाया गया है। वैश्विक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत ने विकास की मजबूत गति को बनाए रखा है। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का सामना दिल्ली कैपिटल से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे धर्मशाला में खेला जाएगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा

जी बिल्कुल, राजी खुशी रहो ते आबाद रहो ते खुश रहो हमेशा, ते देखो जिंदगी बहुत ही खूबसूरत हो जाएगी। फिलहाल जिंदगी दा फलसफा यही है कि अज असी मना रहे हैं जी राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस, जिस दे नाल तुसी चिपक के बैठे हो यानी कि इस तरह की टेक्नोलॉजी है जिस दे नाल तुहाडा मूड बहुत ज़्यादा वधिया हो जाता है। जी बिल्कुल, मैं DTH दी पंजाबी सेवा दी गल कर रही हूँ, यानी कि जित्थों तुसी सुन रहे हो, यानी कि कई दो टेलीविज़न तो सुन रहे ने, कई न्यूज़ ऑन एयर ऐप तो सुन रहे ने, ते कई रेडियो तो ही सुन रहे ने, ठीक क्या ना ते इस तरह की टेक्नोलॉजी है जो तुहाडे मूड नू बहुत ही ज़्यादा वधिया कर देंदी है, ते हमेशा नवी तो नवी जो है इनफॉर्मेशन तुहानू सुनन नू मिलदी है। ते हाँ, कई बार ये टेक्नोलॉजी सानू लै भी डुबदी है ओ किदां कि हर घर विच मावां यही पिट रही होंदियां कि साडे जो जवाक ने ना वो मोबाइलों के नाल जो है चिपके हुए ने, हर घर विच बच्चा बाहर दिखदा ही नहीं गली विच, हर बच्चा जो है कमरे दे कोने च जाके बैठा होंदा है ते हाथ विच मोबाइल फड़ के बैठा है ते उसनू बाहर की हो रहा उसनू कुछ नहीं पता। ये भी टेक्नोलॉजी है। ते तीजी टेक्नोलॉजी है कि तुसी किते जाना है तो तुहाडे कोल साइकिल भी है, वो तो चलो कार्ड होगी है ना, ते उस तो बाद तुहाडे कोल जाण दे लई दो पहिया वाहन भी है, वो भी टेक्नोलॉजी है। तुसी कुछ सर्च करना है, वो भी टेक्नोलॉजी है। किन्नी सारी, मतलब मैं जे गल करां तो एक घंटा लग जाएगा। फिलहाल इस दिन बारे तुहानू सारा कुछ पता भी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि हर दिन की जो इन्फॉर्मेशन है, हर दिन की जो हिस्ट्री है, टाइम टू टाइम पता होनी चाहिए है, भावें तुसी सवेर तो जो है हिस्ट्री सुन रहे हो, इतिहास सुन रहे हो। तो भारत में राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस यानी कि नैशनल टेक्नोलॉजी डे हर साल 11 मई नूं मनाया जाता है। ये दिन देश की विज्ञानक अते तकनीकी तरक्की नूं समर्पित है। मुख तत्व ते महत्व की है दसांगे जरूर। फिलहाल सब तो पहला जिसका बेसब्री दे नाल तुहानूं इंतजार हुंदा ना खतां दा, वो भी पढ़ने बहुत ज़्यादा जरूरी है, नहीं तो यह टेक्नोलॉजी ना मैनू पुट्ठी पै सकती है कि तुसी जो है न्यूज़ ऑन एयर ऐप तो जो सुन रहे हो बंद करके जा सकते हो, टैलीविजन बंद कर सकते हो कि साडा तो ना पढ़िया ही नहीं जा रहा चलो खैर पढ़ते हैं जी तुहाडे भेजे हुए खत। लिख रहे ने सानू पिंड राजपुरा तो हरदीप सिंह, जगवीर ज्वाला, डॉक्टर धर्मवीर, मुकेश जगसीर सिंह ते सारा परिवार। अलिका डबवाली तो लिख रहे ने रूप सिंह लखोत्रा, करमजीत, सरबजीत, रानी, सोनू ते रजनी, विजय, पूजा, अनीता, के ते आर के कोंडल लिख रहे ने हाजीपुर तो। अमरगढ़ तहसील सादुल शहर तो लिख रहे ने कुलवंत मान, लखविंदर कौर मान, खुशप्रीत कौर, गुरनूर, हरविंदर, राजा सिंह, कुलविंदर कौर ते के एस मान। ते सानू बहुत ज़्यादा मान हो रहा जी कि तुसी हर रोज़ जो है चिट्ठियां भेज दियो सानू। लिख रहे ने पिंड गोविंदगढ़ माझी वाला यानी कि राजस्थान तो, इन्नी दूर तो बैठ के तुसी खत लिख दियो।

दे वो सारे जो हाथों को लेके इन हाथों में तूने कहा था। आदत नहीं मुझको रोने की पर आंखों से आंसू फिसल जाते हैं। ना करना चाहूं पर बातों में अक्सर तेरे ही किस्से निकल आते हैं। दिल कहे मेरा उससे प्यार करना छोड़ दे, सेम टू सेम जैसे वो गई छोड़ के। चल लेता कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैनू मेरा मोड़ दे, मोड़ दे, मोड़ दे, मोड़ दे। चल चल चल चल चल चल चल चल चल लेता कर मेरा जो भी तेरे कोल लाके सब कुछ मैनू मेरा।

नमस्कार। मीडियम वेव 343 या 6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स, DRM 864 किलो हर्ट्स, FM 100.8 मेगा हर्ट्स, FM 100.9 मेगा हर्ट्स, FM 103.6 मेगा हर्ट्स आकाशवाणी अमृतसर, DTH की पंजाबी प्रसारण सेवा का ही जलंधर केंद्र है। शाम के 4 बज रहे ने, अपनी दूसरी सभा लैके असी हाजिर हाँ। आप सब का स्वागत करते हैं। सभा के शुरू में लो सुनो हूँ तक के मुख समाचार।

प्रेम पुजारी फिल्म चो लिया के आए गीत सुन रहे थे सुसी किशोर कुमार ते लता मंगेशकर दी आवाज़ों विच ते आओ सुनते हैं प्रोग्राम दा आखरी गीत मोहम्मद रफी दी आवाज़ विच फिल्म जानवर चो लिया गया।

तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम, पालह अकिर्त कना पूरन दृष्ट तेरी राम। ओ परमात्मा वड्डी ताकत वाला है, इन्ना बुलंद कि असी दुनियावी प्राणियां दी निक्की जिन्नी अकल उस परमेश्वर दे वड़प्पण नूं समझ ही नहीं सकती। अकाल पुरख प्रभु दी सिफ तो सलाह बेअंत है, उस दी उपमा दे लई शब्द ही नहीं बने। इतना इसे तरह है जिस तरह राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु नानक देव जी फरमाउंदे ने, तू सुल्तान कहा हो मिया तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी मैं मूरख कहण ना जाई। सरवण करदे हां भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए

0: तू सुल्तान कहा हो मिया, तेरी कवन वडाई, जो तू देह सो कहा स्वामी, मैं मूरख कहन न जाई। इस शब्द का गायन कीता सी भाई मनजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे ने। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी बहु उपदेशात्मक है। बाणी विच एक आदर्शक शख्सियत उसारी लई सुचजी जीवन जुगत उपलब्ध है, जो वड्डे पागा नाल प्राप्त हुंदी है। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी विचली बाणी दे बाणीकारा ने शब्दां दी परिभाषा बयान कीती है, सिर्फ कोशागत अर्थ ही बयान नहीं कीते। जिवें सो मुला जो मन स्यों लरै, जा फिर काजी सो जो काया बिचार है, ते जा फिर सो सुरतान जो दुए सरतान है। भगत कबीर जी अपनी रचना विच फरमाउंदे ने कि मुला केवल ओ है जो अपने मन नाल जूझदा है। इथों तक कि गुर उपदेश नूं ग्रहण करके काल नाल भी जूझण दी समर्था रखदा है, ओ जमा नूं भी शिकस्त दिंदा है। ऐसे मुल्ला नूं सदा सलाम है। सुनदे हां प्रिंसिपल कृष्ण सिंह होरां पासों वार्ता, सो मुल्ला जो मन स्यों लरै।
1: श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच 6 गुरु साहिबान, 15 भगतां, 11 पट्टां ते गुरसिखां समेत 31 प्रमुख रागां ते आधारित बाणीकारां दी बाणी है। विचार अधीन बाणी तुक भगत कबीर जी वलों उचारण कीती हुई है, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब विच अंकित राग भैरों विच 1159-60 अंग ते सुभायमान है। भगत कबीर जी का जन्म बनारस विखे 15वीं सदी विच पिता नीरू जी ते माता नीमा जी दे जुलाहा परिवार विच होया। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे लिखत पाठ का मूल स्रोत ते इस दी धर्म मूल धर्म चेतना की है दा बोध तुरकी बाणी आई, जैसी में आवै खसम की बाणी, तैसला करी ज्ञान वे लालो

तू दाना साहिब सिर मेरा, खिजमत करी जन बंदा तेरा। आप जी सरवण कर रहे सो भाई कमलजीत सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया ए शब्द।

0: गुजरात में सोमनाथ अमृत महोत्सव में प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़कर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
1: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
0: प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि खरीफ सीजन 2026 के लिए देश में उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक है। सरकार ने कहा है कि देश के पास 60 दिन का कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई बैठक के दौरान ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा है कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से की गई 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी ने कल देशवासियों से 1 वर्ष तक विदेश यात्रा से बचने और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील की थी। श्री मोदी ने लोगों से खाना पकाने के तेल की खपत कम करने, प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा सोने की अनावश्यक खरीदारी से बचने का भी आग्रह किया था। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। निर्धारित समय में काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ शेर चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। बंबई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 1313 अंक की भारी गिरावट के साथ 76015 पर बंद हुआ। निफ्टी 360 अंक कम होकर 23816 पर आ गया। एएफसी अंडर 17 एशिया कप महिला फुटबॉल का क्वार्टर फाइनल भारत और मेजबान चीन के बीच सुझाव में खेला जा रहा है। ताजा समाचार मिलने तक चीन ने 2-0 की बढ़त बना ली थी। उधर आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच धर्मशाला में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: मिडवेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। लहुन सुनो साडे अज दे बाकी रहंदे प्रोग्रामां दा वेरवा ते उहनां दा प्रसारण समां। शाम 6:30 बजे सुनोगे

एक विशेष सूचना। आकाशवाणी जलंधर वालों कुछ खाली स्टाफ क्वार्टर ते ऑफिस स्पेस किराए जां लीज ते दित्ते जाण दा प्रस्ताव है, जो सिर्फ केंद्र सरकार, सूबा सरकार, जनतक खेतर दे अदारे यानी PSU ते विधानिक संस्थावां नूं दित्ते जाणगे। इन्हां च शामिल ने आकाशवाणी जलंधर स्थित ऑफिस स्पेस ते आकाशवाणी स्टाफ कलोनी BMC चौंक जलंधर ते अर्बन एस्टेट फेज 1 जलंधर स्थित रिहायशी फ्लैट्स। चावान आकाशवाणी जलंधर दे उप महानिदेशक नाल संपर्क करन। फोन नंबर है 0181-298-3036। ईमेल आईडी jalandhar@prasarbharati.gov.in।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च महारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

कहानी है सुना रही आकाशवाणी। फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुना।

0: कोई ओपन वाईफाई नहीं,
1: मतलब धोखा धड़ी नू बाय बाय।
0: आरबीआई कहता है
2: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।
3: नमस्कार, ए आकाशवाणी है, हुण तुसी जनरल शर्मा तो प्रदेशक खबरां सुनो। पहला इस बुलेटिन दीआं खास खबरां। सरकार ने कहा किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है, देश को 60 दिनों का कच्चा तेल ते कुदरती गैस और 45 दिनों का LPG भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे 26 मई नूं होण वालियां 105 नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दीआं चोणां लई चोण प्रोग्राम का ऐलान। वोटां की गिनती 29 मई नूं होवेगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया, पास फीसद 94.52% रही। कुड़िया ने मुंडिया नूं पिछे छड्डदिआं फरीदकोट ते जैतो दी हरलीन शर्मा रही अव्वल। मौसम विभाग वालों अज पंजाब के वख-वख हिस्सों च हंधरी झखड़ नाल बिजली लिशकण बारे ओरेंज अलर्ट अते इस तों बाद 14 मई तक येलो अलर्ट जारी। अते IPL क्रिकेट विच अज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 दिल्ली कैपिटल्स नाल होवेगा। ते हुण खबरां विस्थार नाल। सरकार ने कहा है कि किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद विच कोई कमी नहीं है, देश को 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों का कुदरती गैस और 45 दिनों का LPG भंडार मौजूद है। ये जानकारी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली पछमी एशिया बारे मंत्रियों के गैर रस्मी समूह की 5वीं मीटिंग दौरान दी गई। इस मीटिंग विच संघर्ष के मौजूदा हालात की समीक्षा की गई और लोगों उत्ते इसके घट्टो घट प्रभाव को यकीनी बनाने लई देश की तैयारी मजबूत करने के तरीकों पर भी विचार वटांदरा किया गया। भारत उन्हां कुछ मुल्कां विचों एक है जिथे टकराव शुरू होने तो 70 दिनों तो वध समय बाद भी आलमी अस्थिरता के इस समय च पेट्रोलियम दीआं कीमतां स्थिर रहियां ने। मंत्रियों नूं दस्सिया गया कि लोगों लई जरूरी वस्तां दे ढुकवें भंडार ते मौजूदा भंडार संकट जारी रहने की स्थिति च लंबे समय की समर्था बनाने लई ने। सरकार ने कहा कि सप्लाई प्रबंधन सही है ते लोगों नूं घबराउण जां ईंधन जां होर उत्पादां की ज़्यादा खरीददारी करन की कोई जरूरत नहीं है। पंजाब राज चोण कमिशन ने 26 मई नूं सूबे विच 8 नगर निगमां, 76 नगर कौंसलां अते 21 नगर पंचायतां समेत 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां करवाउण दा ऐलान कर दित्ता है। वोटां दी गिनती 29 मई नूं होवेगी। जिन्हां 8 नगर निगमां विच चोणां होण जा रहियां ने उन्हां विच बठिंडा, मोगा, पठानकोट, बटाला, मोहाली, अबोहर, बरनाला ते कपूरथला शामिल ने। रजिस्टर्ड वोटरां की कुल गिनती 36,72,932 है, जिन्हां विच 18,98,000 तों वध मर्द अते 17,73,000 औरतां ते 226 होर वोटर ने। वोटरां नूं अपनी वोट पाउण दे हक की वरतों करन लई ज़िलिआं विच 3,977 पोलिंग स्टेशन स्थापित किए गए ने। राज चोण कमिश्नर राजकमल चौधरी ने अज चंडीगढ़ विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान चोण प्रोग्राम का ऐलान करदिआं कहा कि चोण प्रोग्राम के ऐलान के नाल ही सारिया नगर निगमां, नगर कौंसलों ते नगर पंचायतों के अधिकार खेत्र च जिथे चोणां होण जा रही ने आदर्श चोण जाबता तुरंत प्रभाव नाल लागू हो गया। यह चोण प्रक्रिया पूरी होण तक लागू रहेगा। चोणां लड़ रहे उम्मीदवारां लई नामजदगी प्रक्रिया 13 मई तो शुरू होगी ते 16 मई तक जारी रहेगी। नामजदगी पत्रां की पड़ताल 18 मई नूं होगी, जबकि नामजदगियां वापस लैण की आखिरी तरीक 19 मई निर्धारित की गई है। कमिशन ने चोणां नूं निरपक्ष, आजाद अते शांतिपूर्ण ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध कीते ने। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलान दिता है। इस साल 2025-26 च 2,69,505 रैगूलर प्रीख्यार्थियों 2,54,744 पास हुए हैं, पास फीसद 94.52% रही है। कुड़ियों की पास फीसद 95.96% मुंडियों की पास फीसद 93.23% रही। कुड़ियां ने मुंडियां नूं एक बार फिर तो पिछे छड्ड दिता है। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर अमरपाल सिंह ने नतीजों के वेरवे सांझे करदिआं दस्सिया
4: नतीजे के अनुसार जेडे पास परसेंटेज दे बेस ते पहले पांच जिले हैं अमृतसर, फिरोजपुर, पठानकोट के अनुसार पहले तीन स्थान प्राप्त किए ने। हरलीन शर्मा डॉटर ऑफ जसविंदर कुमार, सरस्वती सीनियर सेकेंडरी स्कूल जैतो फरीदकोट, इस बच्ची के 646 नंबर आए हैं 650 विचों 99.38% के हिसाब से। दूजे नंबर ते रहे ने मनी महेश शर्मा, पिता का नाम विजय कुमार, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चमोली बसी रोपड़, जिन्हों के 645 नंबर आए हैं 99.23%। तीजे नंबर ते रिया राणी, सतनाम सिंह, श्री गुरु हरकृष्ण पब्लिक स्कूल मॉडल टाउन हुशियारपुर, इन्होंने 645 नंबर आए हैं 99.23 नाल।
3: इस तो इलावा एक ई रिक्शा चालक का पुत्र महेश कुमार ठाकुर बोर्ड की 10वीं जमात की प्रीख्या च जलंधर जिले का टॉपर रहा। लाडोवाली रोड स्थित सरकारी गर्ल्स सैकेंडरी स्कूल के विद्यार्थी महेश ने वित्तीय मुश्किलों का सामना करदिया दृढ़ता ते अनुशासन 650 विचों 643 अंक प्राप्त किए। 98.92% अंकों के नाल उसने सूबे की मैरिट सूची में तीजा स्थान भी हासिल किया।

0: आकाशवाणी तो सुन रहे हो। साड़ा एक्स हैंडल है @DIRRNU जलंधर। साड़ा फेसबुक पेज है RNU-AIR जलंधर। यूट्यूब से साड़ा चैनल है @AIR जलंधर। उपराष्ट्रपति सीवी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के मौके पर देश के विज्ञानियों और इंजीनियर्स को शुभकामनावां दित्तियां ने। एक सोशल मीडिया पोस्ट में उपराष्ट्रपति ने जिक्र किया कि इस दिन पोखरण टेस्ट रेंज के परमाणु परीक्षण किए गए सन, जो कि देश की आत्मनिर्भरता और रणनीतिक शक्ति वाल एक परिभाषित पल साबित होया। उन्होंने कहा कि 11 मई 1998 में भारत ने दुनिया को अपनी शानदार विज्ञानक ते तकनीकी समर्थावान का प्रदर्शन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय टेक्नोलॉजी दिवस के मौके पर देशवासियों को बधाई दी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इस दिन भारत उन्होंने विज्ञानियों की अणथक मेहनत ते समर्पण को माण नाल याद करता है, जिन्हों के उपरालिया ने 1998 च सफल पोखरण परीक्षणा संभव बनाया। चंडीगढ़ प्रशासन के सभ्याचारक विभाग ने मुड़ उसारे गए सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन की 75वीं वरेगंढ मनाने लिए आज चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर च सोमनाथ स्वाभिमान पर्व मनाया। भारत सरकार के सभ्याचार मंत्रालय वालों देशव्यापी यादगारी प्रोग्राम शुरू किए गए ने। इस सूबा पद्धरी प्रोग्राम दौरान सैकड़े भागीदारा ने गुजरात के पवित्र मंदिर तो सीधा प्रसारण देखा। सभ्याचार सकत्र मनदीप सिंह बराड़, चंडीगढ़ प्रशासन के होर अधिकारियों के नाल इस प्रोग्राम च शामिल होए। जश्नां के हिस्से वजों एक कलश यात्रा भी कढ़ी गई। इस प्रोग्राम ने भारत की अमीर सभ्याचारक विरासत को उजागर करदिया विश्वास, श्रद्धा और राष्ट्रीय स्वैमान की भावना को उत्साहित किया है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सिख कौम के महान जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर वालों की सरहद फतेह समर्पित विशेष धार्मिक प्रोग्राम उलीके गए हैं। श्रोमणी कमेटी के मैंबर अवतार सिंह ने दसिया कि गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे 10 मई को आरंभ हुए श्री अखंड पाठ साहब के भोग 12 मई को पाए जाएंगे। उन्होंने दसिया कि अज रात गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे दीवान सजाए जाएंगे तो कल 12 मई को गुरुद्वारा श्री चप्पड़चिड़ी साहब विखे लांडरा तो पंच प्यारों की अगुवाई तो श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की छत्र छाया हेठ एक विशाल फतेह मार्च भी सजाया जाएगा। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलमी यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स ऑफ फॉर इनोवेशन विच यूनिवर्सिटी ब्रांड ते प्रतिष्ठा की श्रेणी च विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त करके एक होर महत्वपूर्ण मील पत्थर प्राप्त किया। इस रैंकिंग का ऐलान बीती 7 मई को किया गया। इस प्राप्ति नाल गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी दुनिया दी प्रमुख यूनिवर्सिटियां च शुमार हो गई है ते एक मजबूत आलमी अकादमिक ब्रांड वजों उभरी है। जिक्रयोग है कि यूनिवर्सिटी बहुत घट भारतीय जनतक यूनिवर्सिटियां विचों एक है जिन्हां नूं यह वकारी कौमांतरी मानता प्राप्त हुई है। इस मौके खुशी का इजहार करदिया वाइस चांसलर प्रोफेसर करमजीत सिंह ने कहा कि यह सम्मान यूनिवर्सिटी नाल जुड़े फैकल्टी विद्यार्थियों साबका विद्यार्थियों अधिकारियों कर्मचारियों ते सारे हिस्सेदारां दे समर्पण वचनबद्धता ते दूरदर्शी उपरालियां दा सांझा नतीजा है। मौसम विभाग ने पंजाब, हरियाणा और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में अज तो 15 मई तक 5 दिनों वख-वख थावां ते हल्की तो दरमियानी बारिश होने की पेशीनगोई की है। मौसम विभाग ने दोवां सूबियां ते केंद्र शासित प्रदेश में कल ही ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिस तों बाद 15 मई तक येलो अलर्ट जारी किया गया। इस दिन दौरान गरज चमक नाल हल्की तो दरमियानी बारिश ते तेज़ हवावां वगन की संभावना भी जताई गई है। हालांकि इन दिनों दौरान वध तों वध तापमान च कोई वड्डी तब्दीली नहीं होगी। इस दौरान पंजाब च वध तों वध तापमान बठिंडा च 38.5 डिग्री सैलसीयस दर्ज किया गया, जबकि हरियाणा च 38.8 डिग्री सैलसीयस के नाल रोहतक सब तों गर्म जिला रहा। IPL क्रिकेट में आज पंजाब किंग्स का मुकाबला धर्मशाला च शामी 7:30 बजे दिल्ली कैपिटल्स नाल होगा। ते आखर च खास खबर एक बार फिर तो सरकार ने कहा किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है ते देश को 60 दिनों का कच्चा तेल ते कुदरती गैस और 45 दिनों का LPG भंडार मौजूद है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे 16 मई को होने वाली 105 नगर निगम, नगर कौंसल ते नगर पंचायत चोणों लई चोण प्रोग्राम का ऐलान वोटों की गिनती 29 मई को होगी। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया, पास फीसद 94.52% रही। कुड़िया ने मुंडिया को पिछे छड़दिया फरीदकोट के जैतो की हरलीन शर्मा रही अव्वल। मौसम विभाग वालों अज पंजाब के वख-वख हिस्सों हनेरी झक्खड़ ते बिजली लिशकन बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। इस दे नाल ही प्रदेशक खबरां खत्म हुई। राष्ट्रीय खबरां का अगला बुलेटिन तुसीं सुनोगे शाम 7:30 ते। नमस्कार
1: दीदी।
2: हां
1: देखो
2: हैप्पी सोलवा बर्थडे।
1: दिखा, वाह मेरा फेवरेट कलर।
2: हमेशा शॉपिंग
1: जानदा हाँ माँ, खर्चे करन दी यही उम्र है, राइट?
3: सेविंग करन दी भी यही उम्र है।
4: पता है बापू, सेव करो, सही थां ते निवेश करो, मूल रकम ते ब्याज मिलेगा, जिसनु दोबारा निवेश करन ते ब्याज मिलता रहेगा।
1: मैनू पता है ना।
4: RBI कहता है
5: करो सही शुरुआत, बनो वित्तीय तौर ते स्मार्ट।

0: मैं क्या डॉक्टर सरूप सिंह जी तुसी खेती का भविख दसन के नाल नाल यह भी दसो भी चौहान पासियां तो घिरी अपनी जट कौम का की बनू।
1: देखो जी तुहानू उदण भी दस्या सी दिशावां चार ने दस हुंदियां ने कल साडा वर्तमान बन जांदा है उही अगले दिन साडा भविख। देखो हालत यह है जी बई साडे बुढ़िया का कल माड़ा सी ते साडा अज वडेरियां दे कल तो पैड़ा ते न्याणे दे भविख का अंदाजा हिसाब किताब तुसी आपे ला सकदे हो।
2: ते हुण सुणो इस लड़ीवार रेडियो नाटक की छेवीं

0: ये मेरा पिंड है यार, मैं किसके जाना है?
1: अच्छा फिर
0: उसने क्या, वो सरपंच साहब बैठे हैं, सबूत मांगता। फिर मैं सूए दे पुल उत्ते पंजाबी च लिखे हुए पिंड दे नाम वल इशारा किया, तो
1: हाँ
0: वो कहता है, अरे कहाँ जाएगा, अपने घर जाऊंगा, और कितने जाना है? चलो जी, उन्होंने गां जा लैन दिता मैनू। लो जी सरदार सरूप सिंह जी, मैं अंदरली गली पै गया, उत्थे भी उन्हां कौन मोन बंदियां दी बड़ी भरमार।
1: अच्छा फिर क्यों है पता?
0: होना की सी भाई, मैनू यही लगी जावे भाई, इस पिंड च बच्ची दाढ़ी आला मैं कल ही हाँ। फिर मैं गोरे खूह वाली गली लंघ के तुहाडे यानी सरूप सिंह होना दे खूह वाल नूं फिर नहीं पै गया। भी मैं उत्थे की देखदा, बड़े बड़े ट्रैक्टर दड़ दड़ करदे आ, ते उंदा उत्ते चिट्टे पटकियां वाले मोने कोने बंदे चढ़िया, वो मेरे अगू खेताल नूं जाई जान बई, जानी अपना जाणू पछाणू मैनू उत्थे कोई नहीं दिसिया, ये चाकी इत्थे ही खत्म।
1: अपने मास्टर जी गां भी है जां?
0: मैं जानी बस अड्डे बस फड़ के सीधा किसी होर पासे नूं चढ़ गया, फिर होर झलकी देखी, वो भी सुनावा के
1: सुनानी तो वो भी पऊगी मास्टर जी, ताई कोई नतीजा निकलू। दसो
0: मैं जानी किसे गुरु घर अगे खड़ा, शायद फतेहगढ़ साहब ही होवे। गुरु घर दे गेट उपर हिंदी च सर्व भारतीय गुरुद्वारा बोर्ड लिखा होया सी। मैं हक्का बक्का होया, इधर उधर झाकण लगा, इन च बरशे वाला मेरे को आया।
1: फिर क्यों है मास्टर जी?
0: उसका सवाल सुन के वो भाई मैं तो बेहोश हो के टिकण ही आला सी।
1: इहो जी की गल पूछ ली उस बरसे वाले ने?
0: वो बरसा फर्श उत्ते ठकोर के इदां बोलिया, कै बात है

0: यार उस दिन तो टेलर मास्टर तेज प्रकाश का सुपना हर वेले मेरे मन से सवार होया रहा है।
1: सच कहना सरूप सिंह, उदन का ही मैं भी सोची जाना भी बई असी वसदे केड़े देश हाँ।
0: इसका तत्सार तो यो होया कि सारी जमीन ते गुरु घर से भी गैरां का कब्जा होया ही लो, पंच सरपंच भी गैर पंजाबी बनिया करनगे। क्यों बई तुहानू की लगता इदा हो सकता है?
2: ओ होया ही पिया, ओ जे सारे ही छड़ छड़ बाहर भजी जावांगे आ गिनती का मामला है। आ साडे नहीं बाहरले मुल्कां च MLA जां मंत्री बनदे, उत्थे तां तुसीं ये देख सुन के चौड़े हो जांदे हो। आखे कनेडे च साडे 11 MLA है ते 7 MP भी हैगे है। आ टेलर मास्टर सच्चा रोंदा, UP बिहार वालियां दा कब्जा तां हो ही जाऊ भाई।
0: तां फिर यारो सुन लो गल मेरी ध्यान नाल, बंदा बेवस होने से अपना वसेबा छड़दा ते किरत दा तक्या ही अग्गे तो अग्गे तुरिया जांदा। पहली पातशाही ने सानू यह समझाया, सैकड़े साल पहला दरिया सतलुज के ढाए च इस पिंड की मोड़ी गड्ढन वाले वडेरे नू किरत खातर पुराना टिकाणा छड़ना पिया सी। उहदे वडेरे होर कई सदियां पहला बठिंडे संगरूर धूरी ते मुक्तसर के जंगली इलाके च भी किरत दे तक्के आए सी। हुण मित्रों मुकदी गल ये है बई साडे वडेरियां वांगू ही किरत की चाक च इत्थे आए इन्हां प्रवासियां ने तो आपां नू वसदे रख लिया। अरे इनकलाब मगरों जे प्रवासी ना आउंदे तां अपनी खेती खड़ जानी सी। खन्ने लुधियाणे गोबिंदगढ़ दियां सारियां फैक्ट्रियां बंद हो जाणियां सीगियां। बई हुण भी जे ये ना होण तां अपणियां तों बहुतियां दे डंगर वच्छे भुखे मर जाण, पशुआं मगर गोहे कूड़े दे ढेर लग जाण, मोटरां दी राखी ये सौंदे आ। गल की अपनी सारी खेती तो चलती इन्हां प्रवासियों के सहारे ही आ।
2: हाँ नाले होर तो होर साडे न्याणे ये खड़ाउंदे आ, उधर गोरियां दे न्याणे साडियां नूहां तियां खड़ाउंदियां।
3: हुण तो अपने सरकारी स्कूल भी इन्हां प्रवासियों के आसरे चलते आ, इन्हां दे न्याणे ही पंजाबी पढ़ते आ।
4: तुहाडे स्कूले को अपना न्याणा क्यों भेजू मास्टर जी, जदों अपने कोलों तो वोट बनाउण दा काम ही नहीं मुकना, नाले तुहाडे तां अपने बच्चे अंग्रेजी स्कूलां च जांदे आ।
2: मास्टर देबो को इन प्रवासियों में से अपना स्कूल नज़र आ गया। वैसे टेलर साहब को भी सपने में इस स्कूल मास्टर का डेरा दिखा ही दिया होगा, क्या कहते हैं? वैसे
1: तुसी

0: शाबाश करमप्रीत सिंह, इसी तरह हर टेस्ट पास करते जाओ। अब मैं देखूंगा कि भर्ती अफसर तुम्हें कैसे भर्ती नहीं करेगा।
1: ए, तुम आठों के आठों लड़के एकदम आउट आउट, आपकी मेडिकल रिपोर्ट सही नहीं है।
0: डॉक्टर, व्हाट्स रॉन्ग विद ब्लडी मेडिकल रिपोर्ट? आज मैं बात खत्म करके जाऊंगा और देखूंगा कि ये सिकटू सा डॉक्टर अपने आप को समझता क्या है। इसे मालूम नहीं है कि पेंशनर ऑफिसर की रिस्पेक्ट क्या होती है।
2: मैं क्या मेजर साहब, आप माने मिलिट्री ऑफिसर है ना, खैब बनना थोड़ी। हाँ चलिए, छड्डो खैर, इन्हें जो बाजे बाजे बड़े कब्बे होंगे, सिरों पुठे बंदे, पुराने बुढ़े उन्होंने ओडा दे गदे क्या करते सी।
0: बिल्कुल जाहिल लोगों से पाला पड़ा है मेरा। नहीं नहीं, लोगों से तो बिल्कुल भी नहीं, पशुओं से। इनको तो इतना भी इल्म नहीं कि सूबेदार और मेजर साहब में क्या फर्क होता है। ब्लडी इडियट।

0: क्या नाम है आपके कैंडिडेट का साहब?
1: जी करमप्रीत सिंह।
0: करमप्रीत सिंह की मेडिकल रिपोर्ट दिखाने साहब।
2: ये लीजिए सर, करमप्रीत सिंह, सन ऑफ स्वरूप सिंह।
3: मैं जानना चाहता हूँ कि इस छड़ी जैसे जवान में क्या कमी है।
0: देखने में ये आपको फिट लगता है साहब, पर हमें इंडियन आर्मी में नशेड़ी नहीं चाहिए मेजर साहब, हमें नशा रहित कंचन जैसी काया की जरूरत है।

0: देख भाई करमप्रीत, तेरी माँ ने मैनू तेरे सारे चाले दस दिते। वो कहती है भी तेनू हर तरह समझा के देख लिया, पर तू किसे कड़े बैठने नहीं तैयार नहीं।
1: नहीं डैडी जी, मैं तो मम्मी नू इहो कहा सी भी जे सुखजीवन भा दी डैथ हो गई तो उस च मेरा की कसूर है। जेड़े तुसी भाभी नाल मेरा मैड करना चाहते हो,
0: पहला तो तू उन्हूं भाभी भाभी कहना बंद कर। भाभी तेरी उदों तक सी जदों तक सुखजीवन उसका घर वाला सी। सुखजीवन नहीं रहा वो तेरी भाभी नहीं रही, समझ आएगा। बाकी रही है नैड वाली गल, ये नैड नहीं करके जहान का दस्तूर है। घर की इज्जत बार खजल खुआर होने नालों घर च ही रख ली जाए। आप ही तो कहना भी इसप्रीत नूं गहले वालियां नाल नहीं जान देना। उन्हूं रोकण दा इहो राह बई तू नरेंद्र कौर उत्ते चादर पा ले।
1: इसप्रीत मेरी मेरे भरा दी निशानी है, उस लई मैं कुछ भी करन लई तैयार हाँ।

0: आपकी ये बात समझा नहीं मेजर साहब।
1: इसमें समझ ना सकने वाली ज्यादा बात नहीं है सरदार स्वरूप सिंह। माँ को अपना बच्चा हमेशा बेकसूर और पाक साफ दिखाई देता है, जबकि उसके ऐब और नुक्स बाप को दिखाई देते हैं। माँ को जो प्योर सोना नजर आता है ना, उसमें मिलावट होती है। शुद्ध सोना बाप ही देख सकता है। आई बात समझ में? क्या कहते हो?
0: जी मेजर साहब, हुण तो चानन चानन हो गया।
1: अगले दिनों शाम के वक्त इस चिड़ी पर नजर रखनी है हमें। मैं हर शाम बच्चों को एक्सरसाइज और गेम्स करते सुपरवाइज करता हूँ। इसके साथ ही मैं दरख्तों के इस छोटे से जंगल यानी चिड़ी में आने जाने वालों पर भी नजर रखता हूँ। मैंने कर्मे को भी इस चिड़ी में जाते और फिर बाहर निकलते भी देखा है। अंदर ड्रग वगैरह सप्लाई की जाती है स्वरूप सिंह, मुझे ये शक है। क्या कहते हो?
0: मैं आज से ही यहाँ पहरा देना शुरू करता हूँ मेजर साहब, कोई गलत नहीं।
1: इसका मतलब मेरा शक सही साबित हुआ स्वरूप सिंह। इन दरख्तों के इस झुरमट में ड्रग्स का बिजनेस किया जाता है और कर्मा भी इन लोगों के चंगुल में फंसा हुआ है और यहाँ से ड्रग की सप्लाई लेता है।
0: मेजर साहब, मैंने तो कर्मे को नशे से बचाने के लिए अपने परिवार की रिहाइश खूपे कर देती थी, पर उस नशेड़ी ने इस बात का भी फायदा उठाना शुरू कर दिया। अब क्या किया जाए मेजर साहब?
1: हमें कर्मे को डॉक्टर से बात करके रिहैब सेंटर में एडमिट करा देना चाहिए। दूसरी तरफ पुलिस को ड्रग्स के इस अड्डे की सूचना देनी चाहिए। आप कर्मे को रिहैब में एंटर कराएं। दूसरे फ्रंट पर मैं अपनी सरपंच वाली ड्यूटी निभाता हूं।
2: स्वरूप सिंह वालों अपने परिवार की रिहायश खूह करने नाल कुछ चिर तां सुख सांभ रही। आखिर नशेड़िया ने खेतों विची डंडी पा के अपने शिकार कर्मे तक रसाई कर ही ले। कर्मा भी उन्होंने गुझे इशारे ते खास आवाज़ा सुनता, जंगल पानी जाण दे बहाने फसलों विची अगे तो अगे निकल जाता। वो पता नहीं किन्ना किन्ना चिर खेतों विच ही लुकया रहिंदा। कई बारी वह कई कई दिन खूह वाले घर ना मुड़ता। कर्मे ते सुरूप सिंह दे परिवार नाल की बनता है, ये आपां नाटक की 7वीं कड़ी विच सुणांगे।

0: हाँ जी बाल साहब बच्चों नूं देखो गल ये है कि जिदा आप पहला भी जिक्र कर रहे सी कि हर खेती खेतर का एक अलग प्रभाव है
1: जी
0: ते वातावरण भी अलग
1: सही गल
0: है ना। जिदा देखिए हुण वातावरण जिहड़ा

जुलाई तो देश भर में लागू होएगा। देहाती विकास मंत्रालय ने कहा है कि इस हरेक माली साल विच 125 दिनों दे रोजगार की गारंटी का एक कानून देहाती भारत नूं मजबूत बनाएगा। देश भर में नवे ढांचे को लागू करने लिए मौजूदा माली साल में 95,692 करोड़ का प्रबंध किया गया है। औरत मजदूरों की हिस्सेदारी उत्साहित करने लिए विकसित भारत जी राम जी कानून कम दियां थावां ते बच्चों की देखभाल एक महत्वपूर्ण प्रबंध करता है। 5 साल तो घट उम्र के 5 या वध बच्चों की मौजूदगी भी उन्हों की देखभाल लिए एक औरत मुलाजम नियुक्त की जाएगी। इस उपाय का उद्देश औरतों निर्विघन कम करना जारी रखने ते कार्यस्थानों वधेरे समावेशी औरतों दी जरूरतों प्रति वधेरे संवेदनशील बनाने ते योग बनाउणा है। पंजाब राज चोण कमिशन ने सूबे दी 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान कीता है, जिन्हां विच 8 नगर निगम, 76 नगर कौंसलां ते 21 नगर पंचायतां शामिल ने। वोटां दी गिणती 29 मई नूं होएगी। राज चोण कमिश्नर राज कमल चौधरी ने अज चंडीगढ़ विखे एक प्रैस कॉन्फ्रेंस दौरान चोण प्रोग्राम दा ऐलान करदिआं कहा कि इस ऐलान दे नाल सारीआं नगर निगमां, नगर कौंसलां ते नगर पंचायतां दे अधिकार खेतरां जिथे चोणां होण जा रहीआं ने विच तुरंत प्रभाव नाल आदर्श चोण जाबता लागू हो गिआ ते चोण प्रक्रिया पूरी होने तक लागू रहेगा। चोणा लड़ रहे उम्मीदवारों लिए नामजदगी प्रक्रिया 13 मई नूं शुरू होएगी और 16 मई तक जारी रहेगी। नामजदगी पत्रां दी पड़ताल 18 मई नूं होएगी, जदों कि नामजदगियां वापस लैण दी आखिरी तरीक 19 मई है। कमिशन ने चोणां नूं निरपक्ष, सुतंत्र ते शांतिपूर्ण ढंग नाल करवाउण लई सारे प्रबंध कीते ने। अज तमिलनाडु विधानसभा में 100 तो वध नवे चुने गए मैंबरां ने अहुदे दी सहुं चुकी। मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय ते कैबिनेट मैंबरां, विरोधी धिर दे नेता उदय निधि स्टालिन, साबका मुख्यमंत्री डॉ डी के पलानीस्वामी ते ओ पनीर सेल्वम ने सहुं चुकी। सड़क आवाजाई ते शाहराहां बारे मंत्री नितिन गडकरी ने अज कहा है कि भारत मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर मुक्त टोल वसूली सिस्टम की शुरुआत नाल तकनोलॉजी आधारित शाहराह प्रबंध एक नवे युग में प्रवेश कर गया है। नवी दिल्ली के मुंडका बकरवाला टोल प्लाजा विखे 7 आधुनिक टोल सिस्टम का उद्घाटन करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि यह पहल टोल प्लाजा से लगन वाले वाधू समय को घटाएगी ते ईंधन की बर्बादी, प्रदूषण और सफर में होने वाली देरी च काफ़ी गिरावट लियाएगी। IPL क्रिकेट में अज धर्मशाला विखे खेडे जा रहे मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीत के पंजाब किंग्स नू पहला बल्लेबाजी करने लिए किया है। आखिर च खास खबरें एक बार फिर। सरकार का कहना है कि देश में किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों लिए कुदरती गैस और 45 दिनों का LPG भंडार मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव आने वाले 1,000 साल लिए भारत के दृष्टिकोण को प्रेरित करेगा। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी रोजगार ते आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 लागू करने लिए एक नोटिफिकेशन जारी कर दिता है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे की 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान। इस दे नाल ही साडा ए बुलेटिन खत्म हुंदा है। साडा अगला राष्ट्रीय बुलेटिन सवेरे 8:30 बजे होएगा। नमस्कार।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

0: मीडियम वेव 343.6 मीटर यानी 873 किलोहर्ट्स ते डीटीएच दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र है। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। त्याहुन सुनदे हां प्रोग्राम वेव दा तहत काव्य पाठ करनगे अनिल पठानकोटी।
1: एक खुशी ध्यान को दफना गई, आज तितली माई के सहरा गई। लड़कियां बैठी हुई थी नाव में, धीरे धीरे तट तलक नौका गई। अब के थी उम्मीद बदली से बहुत, सबको दिखला के झलक बहला गई। बेटी अब्बल इम्तहानों में रही, अपने घर परिवार को चमका गई। सब सुराखों को जमीन पर भर दिया, एक चींटी मुश्किलें सुलझा गई। आग डायन भूतनी इस साल फिर, पेड़ अजगर घोंसले झुलसा गई। शक अशंका की है गुंजाइश बहुत, सबके कानों में हवा बतला गई। सुन रहा था कल पुराने गीत को, साथ पढ़ती थी मेरे याद आ गई। हवा ताज़ा ताज़ा, तबीयत हरी है, मेरे गांव के पास बहती नदी है। बुजुर्गों के पैरों में सर को झुकाना हमारे घरों की रिवायत रही है। किया जिक्र उलझन का औरों से जब भी, अधिक और पहले से उलझन बढ़ी है। कहीं छून जाए मेरा पैर उसको, तेरे घर की दहलीज खुशबू भरी है। सुबह सैर करते ये जंगल में देखा, किसी शाख पर लाश एक झूलती है, जिसे मैंने अब तक सुरक्षित रखा है। स्वर्गीय मेरे पिता की छड़ी है, नगर गांव बस्ती में कूचे गली में कोलाहल घमासान है, खलबली है। बैठे रहते हो सदा, आज उछल कर देखो, एक दरिया की तरह आज मचल कर देखो। ओढ़े रहते हो उदासी की थकन की चादर, कोई खुश रंग कभी चेहरे पे बल कर देखो। अपने पैरों पे खड़ा हो के अगर जीना है, उड़ रहे पंछी की परवाज में ढल कर देखो। अपने सीने से लगा लेंगे तुम्हें वीराने, रिश्ते संबंधों के जम घट से निकल कर देखो। कामयाबी के सफलता के शिखर छू लोगे, गम की दुख चिंता की आदत को बदल कर देखो। मुल्क के सब बुरे हालात सुधर जाएंगे, बेईमानी के उठे फन को कुचल कर देखो। पास कोई भी बीमारी न कभी आएगी, कुछ समय रोज सुबह शाम टहल कर देखो। किस तरह पाला है माँ बाप ने तुमको बच्चों, आग की लपटों से बेखौफ निकल कर देखो। एक दूजे से कुछ ना कहता था, घर में हर एक शख्स तन्हा था। चंद यारों ने मिलके कमरे में एक दिलचस्प खेल खेला था। पानी जिसको पिला रहे थे सब, खून में तर वतर परिंदा था। उम्र भर जो लगा रहा पीछे, एक बहगुमों गुमा का साया था। उम्र भर जो लगा रहा पीछे, एक बहमो गुमा का साया था। मैं तेरे पास कैसे आ पाता, तेज बारिश ने मुझको रोका था। मुद्दतों बात उस जगह पे हूँ, मुझसे वो जिस जगह पे बिछड़ा था। सुबह के वक्त सहन मस्जिद में मैंने एक बार झूठ बोला था, के रंजिश थी दिल में दोनों के, फिर भी मिले गले। ऐसे ही काश सिलसिला तहजीब का चले। जंगल में आग लगती है गर्मी में हर बरस, जंगल में पेड़ कोई भी मुमकिन नहीं फले। लोटी हैं चर के गायें, चरा घास है अभी। दफ्तर से मैं

आ रहा हूं थक के दिन ढले। सदियों से लोग हैं यहाँ, घर छोड़ते नहीं, आते ही रहते हैं यहाँ। तूफान जलजले भयभीत बूढ़ा बच्चों की जिद पे है नाव में, कहता है रब से जल्दी जल का सफर टले। अब दोस्त रिश्तेदार से मैं हूँ परे परे, हम साए हैं शरीफ मददगार और भले। गमों पे गालों पे फैली गम की तपिश दूर हो सके, गालों पे फैली गम की तपिश दूर हो सके। गालों पे अश्क मैंने हैं बहुत बार मले, कि गजल की गली से हम आए हुए हैं, सुनो रूह में हम समाए हुए हैं। खुदा भेज जो इनको नीचे उतारे, वो शासन पे डेरा जमाए हुए हैं। दिखा दूँ मैं रंग अपना उनको है मौका, सुना है वो महफिल में आए हुए हैं। अभी बच्चों के स्कूल में छुट्टियां हैं, गगन को जो सर पे उठाए हुए हैं। जिधर नौजवान आज सब गामजन हैं, मेरे ही ये रास्ते बताए हुए हैं। बहुत लोग घायल हैं अंदर से अब भी, जो गहरी कोई चोट खाए हुए हैं। गगन पे हंसी ये घटा और बादल, ये परमात्मा के ही लाए हुए हैं। विरोधी पाप का पल पल रहा हूँ मैं, कई सदियों से गंगा जल रहा हूँ मैं। कसम खाकर खुदा की अपने चेहरे पर, ये कालिख गलतियों की मल रहा हूँ मैं। मेरे अंदर गुबार उड़ता है जन्मों से, कभी कातिल कभी मकतल रहा हूँ मैं। किसी भी शख्स का अब दिल नहीं दरिया, जमाना छल रहा था छल रहा हूँ मैं। मेरे आगे झुकाते सर बड़े छोटे, समझते सब हैं आखिर डल रहा हूँ मैं। मेरा फल खा के सब पूजा भी करते हैं, मेरा फल खा के सब पूजा भी करते हैं। किसी बूढ़े शजर का फल रहा हूँ मैं, सभी भरते थे पानी बस्ती वाले, जरा सोचो अकेला नल रहा हूँ मैं। अरूजो इल्म फन का जिंदगी भर, अजीजो जान लो कायल रहा हूँ मैं। फिक्र के रास्ते से निकले हैं, शेर तो सोचने से निकले हैं। कोई इज्जत नहीं लिहाज नहीं, चोर ठग सामने से निकले हैं। उम्र काटी तनाव में हमने ऐसे हम हादसे से निकले हैं। चुप थे जब तक बहुत ही इज्जत थी, हम फकत बोलने से निकले हैं। जब बुजुर्गों के पास में बैठे कीमती मशवरे से निकले हैं। एक शायर हैं क्या कहें, हम तो आसमां के परे से निकले हैं। इस समय आज सब अकेले हैं, आदमी फासले से निकले हैं। जब तलाशी अनिल के घर की ली, चंद कपड़े फटे से निकले हैं। घर में लगाए पौधे को मैंने हरा किया। इंसानियत का मैंने भी जैसे भला किया। मैंने तो गलत था, तुमने ये जाहिर नहीं किया, मैंने तुम्हारा जिंदगी भर शुक्रिया किया। मेरे खिलाफ रोज़ मजमा लगाता है, मेरे खिलाफ़ रोज़ जो मजमा लगाता है, मैंने ही उसके पैरों पे उसको खड़ा किया। उम्मीद कम ही थी कोई सराह पर चले, हम बार मैंने सबके लिए रास्ता किया। मैंने मकान किराए पे ढूंढा बहुत मगर, माना कोई नहीं, सभी ने ही मना किया। बांटा न मैंने आज तलक दुख जहान से, दुख सारा मैंने अपने ही अंदर जमा किया। आया है मसाला कोई जब मेरे सामने, मैंने हमेशा खुद से अनिल मशवरा किया। गलत पथ पर तो वीराना पड़ेगा, इसी रास्ते पे तह खाना पड़ेगा। लिखा है घर के बाहर मेरे सुर लय, यहाँ आए हो तो गाना पड़ेगा। लिखा है घर के बाहर मेरे सुर लय, यहाँ आए हो तो गाना पड़ेगा। नहीं अच्छे अभी हालात घर के, इन्हें मेहनत से समझाना पड़ेगा। सभी का शुक्रिया घर मेरे आए, जो रूखा घर में है खाना पड़ेगा। ये बिगड़े बेटे को तालीम दे

रोड़े बन के, रुकावटा बन के, पर हर वो रुकावट, हर वो पत्थर सानू कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाता है। जेड़ा इंसान चलता रहता है वो अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचता है, क्योंकि हनेरा किन्ना भी कड़ा होवे, एक चानन की किरण काफ़ी होंगी उन्हें दूर करने वास्ते। जिंदगी विच हमेशा धीरज रखो, वक्त हर दुख नू हौली हौली ठीक कर दिंदा है। चलते चलते डिगना गलत नहीं है, पर डिग के ना उठना वो गलत है। अपने सुपनियां ते विश्वास रखो, राह अपने आप बनते जाएंगे। हर नवा एक नवी शुरुआत लैके आता है, नवी किरण लैके आता है। जिंदगी जिस तरह की एक रस्ता है, जिंदगी का राह कदे सीधा नहीं हुंदा, पर हर मोड़ कुछ ना कुछ सिखाउंदा जरूर है सानू। खुश रहना वो भी तो एक कला ही है, सानू हमेशा खुश रहना चाहिए है, चाहे हालात जिस तरह के मर्जी होन। क्योंकि जेडे लोग तूफाना तो नहीं डरते, वो ही तो इतिहास बनाते ने। ते राह राह भावे जिन्नी मर्जी लंबी होवे, पर हौसला होवे तां सफर सोहना बन जाता है, क्योंकि जिंदगी एक रस्ता ही तो है। तो दोस्तों, प्रोग्राम का आगाज करते हैं काला पत्थर गुरु के इस गीत तो, जिसनों गाया है किशोर कुमार ने।

0: अवतार सिंह बिलिंग दे नावल होया देश पराया ते आधारित यह रेडियो लड़ीवार नाटक तुसी सुनोगे हर सोमवार शाम 6:30 बजे देहाती प्रोग्राम
1: सोचा। लड़ीवार
0: नाटक होया

आकाशवाणी जलंधर तो सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। दोस्तों वाकई जिंदगी हसीन है क्योंकि जिंदगी दे राह हमेशा सानू मुस्कुराते ही चलते रहना चाहिए है। मंजिल अपने आप नेड़े आ जाएगी क्योंकि हर औखा वेला इंसान नू होर मजबूत बना के जाता है। इस करके सानू औखे वेले च घबराना नहीं चाहिए। राह विच आउण वालियां सारी ठोकरां ही सफलता का सबक सिखाउंदियां ने। ते जे हौसला जिंदा होवे तां कोई भी राह औखा नहीं लगता। देखो समय का काम है चलना ते साडा काम भी है चलना और एक ना एक दिन समा बदलता जरूर है। इसलिए कदे हार ना मनो ते हमेशा चलते रहो अगे वधदे रहो। सब तो वड्डी गल अपने आप ते भरोसा रखो दुनिया अपने आप यकीन कर लग पेगी। ते मंजिल मंजिल उन्हां नूं ही मिलदी है जो राह विच रुकदे नहीं क्योंकि जिंदगी तां इक किताब वर्गी है ना। हर दिन एक नवा सफा हुंदा है ते हर दिन चलदे रहांगे ते हर सफे नूं पढ़दे पढ़दे अगे वधदे रहांगे। खुशियां वड्डी खुशियां ते आउंदियां ही है पर छोटी छोटी खुशियां दी तलाश ना करो। छोटी छोटी खुशियां नूं हमेशा मनाउंदे रहो क्योंकि ये छोटी छोटी खुशियां ही वड्डी खुशियां बन जांदियां ने। रब ते हमेशा विश्वास रखो ते अपने उत्ते भरोसा कदे ना टुटन दिओ। सबर करन वालियां दे हिस्से हमेशा सोहणे दिन आउंदे ने क्योंकि जिंदगी दा सफर सोहणा तां ही बन सकदा है जदों दिल विच उम्मीद जिंदा रहे। ते आओ दोस्तों प्रोग्राम जिंदगी हसीने नूं अगे वधाउने आ। अगला गीत फिल्म क्यामत से क्यामत तक तो इस गीत नूं गाया है अलका याग्निक ते उदित नारायण ने।

0: हेलो,
1: यह आयकर विभाग है। आज हम आपके नाम से चल रहे खातों से अनिवार्य कटौती करेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया सेवा कर्मियों से संपर्क करने के लिए 9 दबाएं। दिस इज द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट।
2: अजय, कोई भी फोन कॉल फ्रॉड हो सकती है। कोई भी बटन दबण तो पहला एक मिनट लिए रुको ते सोचो ते पुष्टि जरूर कर लो। सावधान रहो, सुरक्षित रहो।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। तो दोस्तों, जिंदगी विच अगे वधदे रहना ही साडा मेन कम है, क्योंकि जिंदगी दे राहां विच चानण अपने हौसलियां नाल ही पैदा करना पैंदा है। ते जे मन मजबूत होवे तां हर मुश्किल आसान लगदी है। ते मन नूं मजबूत करन वास्ते हमेशा रब ते भरोसा रखो, क्योंकि हर रात तो बाद सवेर जरूर आउंदी है। ते जिंदगी दियां ठोकरां तो घबराना नहीं, क्योंकि यही ठोकरां ते इंसान नूं कामयाब बणाउंदियां ने। हमेशा हसते मुस्कुराते रहो, क्योंकि मुस्कान हर दर्द नूं होला कर दिंदी है। राह भावें औखे होण पर कदम कदे रुकने नहीं चाहिए, थकने नहीं चाहिए, क्योंकि चंगे दिनों लई तां माड़े दिनों नाल लड़ना पैंदा ही है। ते अपने सुपने हमेशा वड्डे रखो, फिर मंजिल भी वड्डी ही मिलेगी। हर दिन एक नवा मौका जरूर आंदा है कुछ चंगा करन दा। ते हर मौके नूं इस तरह देखिए कि यह मौका सानू कुछ ना कुछ चंगा जरूर देके जाएगा। जिहड़े लोग अपने आप नूं नहीं हराउंदे, उन्हां नूं कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि जे तुसीं आप ही हार मन लई तां तुहानूं कोई नहीं जिता सकता। इस करके अपने आप नूं कदी ना हराओ। दुनिया तुहानूं कदी नहीं हरा सकती, क्योंकि सबर अते मेहनत कदे भी व्यर्थ नहीं जांदे। जिंदगी दी असल सुंदरता उम्मीद ते प्यार विच हुंदी है। उम्मीद हमेशा कायम रखो। तूफाना तो डर के कदी कश्तियां कदे किनारे नहीं लगदियां। ते अपने दिल नूं हमेशा साफ रखो, राह अपने आप सोहणे बणदे जाणगे। ते आओ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीना नूं अगे वधाउने आ। ते अगला गीत तुहाडे वास्ते लैके आ रहे हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज़ च, फिल्म दिल है के मानता नहीं तो।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल

0: एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तों 50 साल विचकार होनी चाहीदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वीरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता है सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखिरी तरीक 20 मई 2026 है। चोन प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जां newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।
1: आकाशवाणी जलंधर ते सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है ते प्रोग्राम विच अगला गीत सिलसिला फिल्म तो इस गीत नु गाया है लता मंगेशकर ते किशोर कुमार ने।

एक जरूरी सूचना। आकाशवाणी जलंधर दी खेतरी समाचार इकाई विच समाचार वाचक ते अनुवादक एनआरटी कैजुअल पंजाबी लई योग उम्मीदवारां तों अर्जियां दी मांग कीती जांदी है। उम्मीदवार ने अंग्रेजी विषय नाल ग्रेजुएशन कीती होवे ते पंजाबी भाषा ते कंप्यूटर च मुहारत होवे। उम्मीदवार दी उमर 20 मई 2026 तक 21 साल तो 50 साल विचकार होनी चाहिदी है। तरजीही तौर ते उम्मीदवार जलंधर या इस दे नेड़ले इलाकें दा वसनीक होवे। चाहवान उम्मीदवार विद्यक योग्यता दे सर्टिफिकेट अते तजर्बे दियां तस्दीकशुदा कापियां नाल वेरवे सेहत बायोडाटा रंगदार पासपोर्ट साइज फोटो अर्जी नाल नत्थी करके भेजण। अर्जियां भेजण लई पता ए सहायक निदेशक खेतरी समाचार यूनिट आकाशवाणी केंद्र नेड़े BMC चौक जलंधर। अर्जियां भेजण दी आखरी तरीक 20 मई 2026 है। चोण प्रक्रिया बारे वेरवे सहज जानकारी अते खाली फार्म साडी वेबसाइट newsonair.com जा newsonair.gov.in ते जाके वैकेंसी कॉलम विचों प्राप्त कीता जा सकदा है। ध्यान रहे ए कोई नियमित रोजगार या नौकरी नहीं है, तुहानू जरूरत दे मुताबिक बुलाया जावेगा।

आकाशवाणी जलंधर से सुन रहे प्रोग्राम जिंदगी हसीन है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी जड़ी की निरंतर चलती जा रही है, एक समय की तरह, एक पल की तरह कि हमेशा चलता ही रहता है, जड़ा कदी मुड़ के नहीं आना। इस करके हर दिन नू खुशी नाल जियो, क्योंकि ये दिन मुड़ के नहीं आता। थोड़ा सबर ते बड़ा हौसला हर दुख नू हरौंदा है, ते मुश्किलों तो कदे ना डरो, ये तुहानू होर मजबूत बनाउंदियां ने। ते हमेशा हमेशा चंगे विचार अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखो, क्योंकि ये साड़ी जिंदगी नू होर सोना बना देंदे ने। उम्मीद कदे ना छड्डो, क्योंकि उम्मीद दे सहारे ही दुनिया कायम है। ते इस उम्मीद नाल अगे वधदे रहो कि कल होर भी चंगा आएगा। ते मन नू हमेशा शांत रखो, स्थिर रखो, क्योंकि जिंदगी का सब तो वड्डा सुख मन की शांति है। जिते हौसला होंदा है, उत्थे हर राह अपने आप सुखाली हो जाती है। हसना सीख लो, दुख अपने आप होले लगन लग पैणगे। रब दे फैसले ते हमेशा भरोसा रखो, वो हमेशा चंगा ही करदा है। ते आओ दोस्तों, प्रोग्राम जिंदगी हसीन नूं अगे वधाउने हैं। ते अगला गीत तुहानूं सुणाउने हैं जी, फिल्म दिल तो पागल है तो। इस गीत नूं गाया है लता मंगेशकर ते उदित नारायण ने।

0: ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਲਤਾ ਮੰਗੇਸ਼ਕਰ ਤੇ ਉਦਿਤ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪਾਗਲ ਹੈ ਫਿਲਮ ਤੋਂ ਇਹ ਗੀਤ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹਸੀਨ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਰਾਤ 9:15 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਮਾਚਾਰ ਸੰਧਿਆ, 9 ਵਜੇ ਨਿਊਜ਼ ਐਟ 9 ਤੇ 9:15 ਵਜੇ ਸੁਣੋਗੇ ਸਪੋਟ ਲਾਈਟ।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व सरमा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये राज्य में एनडीए का लगातार तीसरा कार्यकाल होगा। मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने का अनुमान व्यक्त किया और भारतीय पुरुष टीम वनडे क्रिकेट टीम रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर बरकरार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताते हुए राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज

0: जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री ने लोगों से सात सूत्रीय अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
0: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: श्री मोदी ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। उन्होंने नागरिकों से स्वदेशी उत्पादों का अधिक से अधिक उपयोग करने का आह्वान किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि लगातार आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बना रहेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि सोमनाथ लोगों को ये याद दिलाता है कि कोई भी राष्ट्र अपनी जड़ों से जुड़ा रहकर ही लंबे समय तक मजबूती से खड़ा रह सकता है।
0: आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था, तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था, भारत केवल आजाद नहीं हुआ है, भारत अपने प्राचीन गौरव को पुनः हासिल करने के मार्ग पर भी अब आगे बढ़ चुका है।
1: प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपए का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर हैं। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा तेल शोधक और पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: बैठक के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अधिकारियों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपीलों को जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री ने लोगों से मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने और कार पुलिंग को अपनाकर पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया था। उन्होंने एक वर्ष के लिए विदेश यात्रा टालने जैसे विवेकपूर्ण खर्च पर दोबारा सोचने का आग्रह नागरिकों से किया था। श्री मोदी ने एक वर्ष के लिए विदेशों में कार्यक्रम आयोजित करने या अत्यधिक सोने की खरीदारी को सीमित करने का भी आग्रह किया था। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी ने किसानों से रासायनिक उर्वरकों का उपयोग 50% तक कम करने, प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने का आग्रह किया। शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सरकार ने कहा है कि देश भर में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है और घरेलू एलपीजी की आपूर्ति निरंतर जारी है। नई दिल्ली में आज पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार उपभोक्ताओं को ईंधन की आपूर्ति सुनिश्चित कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने की अपील की है।
3: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
1: रसायन और उर्वरक मंत्रालय की अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने कहा कि देश में उर्वरकों का पर्याप्त भंडार है।
4: For the season of Kharif 2026,
5: खरीफ 2026 सीजन के लिए उर्वरकों का भंडार 51% से अधिक उपलब्ध है। प्रमुख उर्वरकों की अधिकतम खुदरा मूल्य MRP में भी लगभग स्थिरता बनी हुई है। संकट काल के बाद देश में उर्वरकों का घरेलू उत्पादन 76.78 लाख मीट्रिक टन रहा है, जबकि आयात के माध्यम से

0: 19.94 लाख मीट्रिक टन उर्वरक प्राप्त हुए हैं। संकट की स्थिति के बाद लगभग 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
1: कई केंद्रीय मंत्रियों ने भी देशवासियों से प्रधानमंत्री की 7 अपीलों का पालन करने का आग्रह किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोगों और कारोबारियों से विदेशी मुद्रा की आवश्यकता वाली वस्तुओं पर खर्च कम करने का आग्रह किया। वहीं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी कर दी है। ये अधिनियम इस वर्ष 1 जुलाई से देश भर में लागू हो जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि देश भर में इसके कार्यान्वयन के लिए वर्तमान वित्त वर्ष में 95,692 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।
2: विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह लेगा। इस नए अधिनियम का उद्देश्य एक वित्तीय वर्ष में रोजगार गारंटी को 100 दिन से बढ़ाकर 125 दिन करना है। इसके अलावा यह अधिनियम समय पर मजदूरी के साथ साथ पारदर्शी और जवाबदेह भुगतान पर जोर देता है। यदि निर्धारित समय के भीतर किसी को काम उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो इस नए अधिनियम में बेरोजगारी भत्ता देने का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि आज ही के दिन वर्ष 1998 में पोखरण में 3 परमाणु परीक्षण किए गए थे। उन्होंने बताया कि पिछले एक दशक में देश में स्टार्टअप्स के साथ रक्षा उत्पादन और निर्यात में कई गुना वृद्धि हुई है।
3: वर्ष 2014 में हमारे पास 350 से 400 स्टार्टअप थे। आज हमारे पास 2 लाख से अधिक स्टार्टअप हैं। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम में हम दुनिया में तीसरे स्थान पर हैं। सिर्फ एक दशक में हमारा रक्षा उत्पादन 174 गुना बढ़कर 1,54,000 करोड़ रुपए हो गया है और हमारा रक्षा निर्यात भी एक दशक में 34 गुना बढ़कर 23,622 करोड़ रुपए तक पहुँच गया है।
1: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा है कि बाघ, शेर, चीता जैसे बिग कैट्स के संरक्षण के लिए कॉरपोरेट फंडिंग बहुत जरूरी है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि भारत अगले महीने राष्ट्रीय राजधानी में पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इसका उद्देश्य बाघ, शेर, चीता और हिम तेंदुआ सहित 7 प्रमुख बिग कैट्स की प्रजातियों का संरक्षण करना है।
3: IBCA प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक पहल है बिग कैट्स के संरक्षण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कि उनके रहने के ठिकाने, तकनीक आधारित निगरानी, सामुदायिक संरक्षण, क्षमता निर्माण और संरक्षण के प्रति जागरूकता को सहयोग देने के लिए कॉर्पोरेट जगत का साथ बेहद महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि आप इन बिग कैट्स को बचाने के लिए आगे आएं।
4: टू कम फॉरवर्ड टू सेव द बिग कैट्स।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। असम में कल हेमंत बिस्व सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी के साथ श्री सरमा लगातार 2 बार मुख्यमंत्री बनने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बन जाएंगे। ये राज्य में NDA का लगातार 3रा कार्यकाल होगा। पुदुचेरी में बुधवार को राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल को जमीन हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। राज्य में नई गठित सरकार के बाद पहली मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि तृणमूल कांग्रेस की पिछली सरकार ने घुसपैठ को बढ़ावा देने

0: के लिए जमीन रोक रखी थी। राज्य में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना सहित कई अन्य योजनाओं के कार्यान्वयन की भी घोषणा की गई। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं सोनू सूद।
1: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 76,015 पर बंद हुआ। निफ्टी 23,816 पर बंद हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 83 पैसे की गिरावट दर्ज करते हुए 95.31 रुपए प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ।
0: मौसम विभाग ने गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश में कल लू चलने की संभावना व्यक्त की है। पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में अगले 4-5 दिन तक रात में गर्मी रहने की संभावना है। उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अगले 2 से 3 दिन में अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। इस बीच असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में अगले 2 दिन में तेज वर्षा हो सकती है। दिल्ली में कल बादल छाए रहने और तेज हवाओं के साथ वर्षा का अनुमान है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। आज जारी की गई रैंकिंग में न्यूजीलैंड पर भारत की बढ़त 8 अंक से घटकर 5 रह गई है। भारत 1 अंक के नुकसान के साथ 119 अंक से घटकर 118 पर आ गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 15 और अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लड़कियों के अंडर 17 वर्ग में आज 8 मुक्केबाज फाइनल में पहुंच गए। हालांकि 4 भारतीय मुक्केबाजों को आज सेमीफाइनल में हार के बाद कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा। IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स के बीच मुकाबला हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में जारी है। ताजा समाचार मिलने तक पंजाब किंग्स ने 15 ओवर में 2 विकेट पर 149 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा जागरूकता, खतरे कम करना और आपदा रोकना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। चर्चा में गृह मंत्रालय में अग्नि सुरक्षा सलाहकार प्रशांत लोनकर और दिल्ली अग्निशमन सेवा के निदेशक अतुल गर्ग शामिल होंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए एकजुट होने का आह्वान किया। पश्चिम एशिया संघर्ष को दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया। सरकार ने कहा, पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन का तथा LPG का 45 दिन का भंडार उपलब्ध। केंद्र सरकार ने 1 जुलाई से विकसित भारत जी राम जी अधिनियम के कार्यान्वयन की अधिसूचना जारी की। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंत बिस्व शर्मा कल असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani. I'm Anuja Kumar with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi calls upon citizens to unite to ease burden on national resources, terms West Asia conflict one of decades' biggest crises. Government assures no shortage of petroleum as the country holds 60 days stock of crude oil and natural gas and 45 days of LPG. Centre notifies implementation of Viksit Bharat G. Ramji Act from 1st of July. BJP leader Himanta Biswa Sarma set to take oath as Assam Chief Minister tomorrow, marking NDA's third consecutive term in the state. IMD forecasts heat wave conditions over Gujarat, central Maharashtra, Rajasthan and West Madhya Pradesh tomorrow. And in cricket, India retained top spot in men's ODI team rankings. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi today called upon the citizens to unite to ease burden on national resources, terming the West Asia conflict one of decades' biggest crises. The Prime Minister was addressing the gathering after inaugurating the Sardar Dham Hostel at Vadodara in Gujarat.
3: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है

0: सीता, देखो इस आसमान को, जैसे बादल नहीं तुम्हारी पलकें हो।
1: तुम हमेशा बातों के फूल बुनते हो मोहन, पर क्या ये फूल कल की धूप सह पाएंगे?
0: सीता, मैं आसमान से बादल चुरा लाऊंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें कभी धूप नहीं लगने दूंगा।
1: मेरे पिताजी कहते हैं कि चमकने वाली हर चीज सोना नहीं होती। तुम अमीर हो मोहन, तुम्हारे लिए दुनिया एक खिलौना है, पर मेरे लिए तो मेरा स्वाभिमान ही मेरी दुनिया है।
0: सीता, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? देखो मेरी आंखों में, देखो, यहाँ कोई सेठ का बेटा नहीं खड़ा। सीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और वादा करता हूँ कि अगर मौत भी आई तो वो हमें अलग नहीं कर पाएगी।
1: इतने बड़े वादे मत करो मोहन, जिंदगी अक्सर वादों का इम्तिहान लेती है।
0: तो लेने दो इम्तिहान, मैं तैयार हूँ इस इम्तिहान के लिए। तुम तैयार हो?
1: हाँ।
0: तो फिर ये दुनिया हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती।

0: सीता बेटे, आज तुम्हारी आंखों में वो चमक है जो किसी नए ख्वाब के देखने पर आती है। मगर याद रखना बेटी, ख्वाब जितने ऊंचे होते हैं उनकी बुनियाद उतनी ही गहरी होनी चाहिए।
1: पिताजी, ये जरूरी तो नहीं कि हर रास्ता पहले ही तय किया जा चुका हो। क्या हम कभी अनजान रास्तों पर सिर्फ भरोसे के दम पर नहीं चल सकते?
0: चल तो सकते हैं सीता, मगर अनजान रास्तों पर अक्सर धोखा मोड़ बनकर खड़ा होता है। जिंदगी की किताब में हर सबक आसान नहीं होता।

0: अनजान रास्तों पर सिर्फ भरोसे के दम पर नहीं चल सकते?
1: चल तो सकते हैं सीता, मगर अनजान रास्तों पर अक्सर धोखा मोड़ बनकर खड़ा होता है। जिंदगी की किताब में हर सबक आसान नहीं होता, कुछ सबक हमें तोड़ देते हैं।
0: मगर अगर कोई हमें सहारा देने वाला हो, कोई ऐसा जो कहे कि वो हर मुश्किल में साथ खड़ा रहेगा?
1: सीता, ये दुनिया एक बहुत बड़ा बाजार है, यहाँ रिश्तों की बोली लगती है। जो लोग ऊंची इमारतों में रहते हैं, उनके लिए प्यार अक्सर एक इन्वेस्टमेंट होता है। वो तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें फायदा दिखता है। जिस दिन उन्हें लगेगा उनकी हैसियत कम हो रही है, वो तुम्हारा हाथ छोड़ देंगे।
0: पर सब एक जैसे नहीं होते।
1: मगर मैं एक शिक्षक हूँ सीता, मैंने दुनिया को पढ़ाया है और दुनिया ने मुझे। मैं बस ये चाहता हूँ कि मेरी बेटी किसी ऐसी डील का हिस्सा न बने जहाँ उसके चरित्र और उसके जज्बात का सौदा किया जाए। याद रखना बेटी, प्यार में सौदा नहीं होता, और जहाँ सौदा हो वहाँ प्यार नहीं होता।
0: आपका मतलब है कि अमीरी और गरीबी के बीच की दीवार कभी नहीं गिर सकती?
1: दीवार गिर सकती है सीता, अगर दिलों में सच्चाई हो और मन में भरपूर विश्वास। पर अक्सर ये होता है कि दीवार तो वही रहती है, बस इंसान बदल जाता है। तुम बस अपना स्वाभिमान संभाल कर रखना, वही तुम्हारी असली जायदाद है।
2: तो ये सच है कि तुम उस स्कूल टीचर की बेटी से शादी करना चाहते हो?
3: जी पिताजी, पिताजी वो बहुत अच्छी लड़की है, उसके संस्कार।
2: संस्कार से तिजोरी नहीं भरती मोहन, हमारा एक स्तर है। शहर के सबसे बड़े लोग हमारे घर रिश्ता लेकर खड़े हैं, और तुम चाहते हो कि मैं एक ऐसी लड़की को अपनी बहू बनाऊं जिसने सिर्फ और सिर्फ गरीबी देखी हो?
3: लेकिन पिताजी, मैं उससे प्यार करता हूं।
2: प्यार? मोहन, तुम अभी बच्चे हो, जिंदगी जज्बात से नहीं सौदों से चलती है। सुनो मेरा आखिरी फैसला, अगर तुमने उस लड़की से नाता नहीं तोड़ा तो मैं आज ही तुम्हें इस जायदाद से बेदखल कर दूंगा। तुम्हारे पास ये महल नहीं होगा, ये गाड़ियां नहीं होंगी, कुछ नहीं होगा।
3: पिताजी, पिताजी ये आप क्या कह रहे हैं?
2: चुन लो, या तो सड़क पर खड़े होकर प्यार करो या इस कुर्सी पर बैठकर राज करो। फैसला तुम्हारा है
3: पिताजी।

0: सीधा ये मैं नहीं कर सकता। मैं सड़क पर नहीं आ सकता। मैंने सोचा था कि मैं लड़ पाऊंगा, लेकिन लेकिन सीता, मैं कमजोर हूँ सीता, मैं बहुत कमजोर हूँ, मैं नहीं कर पाऊंगा।
1: तो तुम्हारा प्यार सिर्फ तब तक था जब तक तुम्हारी जायदाद सलामत थी।
0: मुझे अपने भविष्य में गरीबी की बू आने लगी। मैं सच में सीता, मैं इस दलदल में नहीं फंस सकता। मेरे पापा कहते हैं कि रिश्ते हैसियत से निभाए जाते हैं। मुझे माफ कर दो सीता, मैं जा रहा हूँ। मुझे माफ कर दो सीता, मैं जा रहा हूँ।
1: सादा हो गया। मोहन ने मेरी मोहब्बत की कीमत लगाई और उसे ठुकरा दिया। पिताजी बिल्कुल सही कहते थे, ये दुनिया एक बाजार है। मैंने जिस शख्स को अपना खुदा समझा, वो तो सिर्फ एक खरीदार निकला। नहीं, आज के बाद सीता रोएगी नहीं। आज के बाद मैं इस प्यार नाम के शब्द को अपने जहन से मिटा दूंगी। मोहन, तुमने मुझे नहीं छोड़ा,

तुमने अपनी रूह को बेच दिया है। एक दिन तुम्हें याद आएगी ये गरीब टीचर की बेटी, जब तुम्हारे पास सब कुछ होगा पर सुकून नहीं।

0: शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन के दामाद बन गए हो। ये रिश्ता हमारी बिजनेस को आसमान पर ले जाएगा।
1: मोहन, ये ज्वेलरी देखी तुमने? मेरे डैड ने लंदन से मंगवाई है। और सुनो, मुझे ये पुरानी कोठी पसंद नहीं। हम शादी के बाद नए पेंट हाउस में शिफ्ट होंगे। और स्माइल करो ना, आज हमारा ग्रैंड सेलिब्रेशन है। लोग हमारी अमीरी देखने आए हैं, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा नहीं।
2: मैं जानता हूं कि मैं तुम्हें वो महल नहीं दे सकता जिसके तुम काबिल हो। मैं एक साधारण बैंक क्लर्क हूं और मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आने दूंगा।
1: मुझे महल नहीं चाहिए रवि जी, मुझे बस इज्जत चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जहां कोई शर्त ना हो, कोई सौदा ना हो।
2: मेरे लिए तुम मेरी दुनिया हो सीता। हम मिलकर एक छोटा सा घर बनाएंगे जहां सिर्फ सच्चा

0: सीता, तुम आज फिर वही पुरानी डायरी पढ़ रही हो क्या? आज भी कोई पुराना जख्म दुख रहा है?
1: नहीं रवि, बस ये देख रही थी कि वक्त कितना बड़ा टीचर होता है। उस दिन अगर मेरा दिल ना टूटा होता तो शायद मुझे आप जैसा साथी कभी ना मिलता।
0: मैंने हमेशा कहा है सीता, मुझे तुम्हारे अतीत से कुछ लेना देना नहीं। मेरे लिए तुम्हारा आज और तुम्हारी सच्चाई ही सब कुछ है। अपने प्यारे बेटे राज को भी हम वही सिखाएंगे कि रिश्ते दिल से बनते हैं, तिजोरी से नहीं।
2: कामिनी, आज तुम फिर जा रही हो क्या? आज की पार्टी में जाना जरूरी है? कामिनी, तुम्हें मालूम है ना कि बिजनेस में कितनी बड़ी दिक्कत आ गई है। मुझे तुमसे कुछ मशवरा करना था।
3: मशवरा? मोहन, मैं कोई तुम्हारे ऑफिस की अकाउंटेंट नहीं हूँ, और वैसे भी तुम्हारी बोरियत भरी बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं। आज शहर के सबसे बड़े बिल्डर की पार्टी है।
2: तुम्हें मेरी परेशानी से ज्यादा अपनी पार्टियों की फिक्र है। कामिनी, मैं तुम्हारा पति हूँ।
3: पति? तुम तो सिर्फ एक स्टेटस सिंबल हो मेरे लिए। सच तो ये है कि मैं आज भी उस लड़के से प्यार करती हूँ जो लंदन में है। मेरे पापा ने तो सिर्फ तुम्हारे कारोबार और खानदान को देखकर मेरी शादी तुमसे की थी। उन्होंने कहा था कि मोहन से शादी एक इन्वेस्टमेंट है, पर उन्हें क्या पता था कि ये इन्वेस्टमेंट इतनी जल्दी लॉस में चली जाएगी।
2: तो मेरे लिए तुम्हारे दिल में, कामिनी, तुम्हारे दिल में कभी कुछ था ही नहीं क्या?
3: दिल? मोहन, मेरे खानदान में दिल से नहीं, चेकबुक से फैसले होते हैं। तुम्हारे पास जब तक पैसा है तब तक तुम मिस्टर मोहन हो। जिस दिन ये खत्म, उस दिन हमारा रिश्ता भी खत्म।

0: हेलो, क्या मैं मिस्टर रवि से बात कर रहा हूँ?
1: जी जी जी जी मैं ही हूँ। क्या हुआ रवि, ठीक तो है ना?
0: देखिए धीरे धीरे, वो क्या है कि हाईवे पर एक ट्रक से उनकी बाइक का एक्सीडेंट हो गया है। हम उन्हें सिटी हॉस्पिटल लाए थे, मगर क्या?
1: अरे बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं आप? बोलिए।
0: हम माफी चाहते हैं। हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। आप प्लीज हॉस्पिटल आ जाइए।

0: मेरे लिए चॉकलेट लाए।
1: चॉकलेट राज बेटा, तेरे पापा कभी चॉकलेट नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे, कभी नहीं लाएंगे। उन्होंने भी मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़ा, अकेला छोड़ दिया मुझे, अकेला छोड़ दिया।
2: कामिनी, कामिनी, तुम ये क्या कर रही हो? सारा सारा सामान पैक कर लिया? कामिनी, कम से कम इस वक्त तो मेरा साथ दे दो तुम। देखो ना, ये देखो, ये बैंक वाले कोठी नीलाम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मिलकर लड़े तो
3: हम मोहन, हम तब थे जब तुम्हारे पास बैंक बैलेंस था। मेरे बाप ने मेरी शादी तुम्हारे खानदान की शान देखकर की थी, तुम्हारे इस उजड़े हुए चेहरे को देखने के लिए नहीं।
2: तो क्या मैं कामिनी तुम लोगों के लिए एक तिजोरी था? ये देखो, बेटी नेहा वो रो रही है, कामिनी कम से कम उसके लिए ही रुक जाओ यहाँ पे।
3: नेहा को तुम संभालो, समझे? मैं अपनी जिंदगी इस किराए के मकान में बर्बाद नहीं कर सकती। और ये गहने, ये सब मेरे पापा ने दिए हैं मुझे, इन पर तुम्हारा कोई हक नहीं।
2: कुछ कहने मुझे दे दो कामिनी।
3: छोड़ो,
2: मुझे कर्ज उतारना है, वरना ये लोग।
3: मैंने कहा छोड़ो मुझे।
2: प्लीज मुझे कुछ
3: हाथ बंद लगाओ इन गहनों को। तुम्हें क्या लगा था कि मैं सीता की तरह कोई त्याग की मूरत हूँ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ रोऊंगी? मैं कामिनी हूँ, कामिनी। मेरे लिए रिश्ते सिर्फ एक प्रॉफिट और लॉस का सौदा होते हैं। तुम्हारा चैप्टर अब लॉस में है, इसलिए मैं इसे बंद करती हूँ।
2: कामिनी, कामिनी रुक जाओ, कामिनी रुक जाओ, कामिनी। मैंने भी तो सौदा किया था ना, सीता का दिल बेचकर। ये महल खरीदा था मैंने, और आज वो सौदा भी मुझे बीच रास्ते में छोड़ गया। सीता, सीता तुमने सही कहा था कि प्यार में सौदा नहीं होता, और यहाँ सौदा होता है, वहां कोई अपना नहीं, अपना नहीं।

0: तुम परेशान हो? आज फिर तुम्हारे पापा की तबीयत खराब है क्या?
1: हाँ राज, उन्हें लगता है कि उनकी बीमारी और हमारी गरीबी तुम्हारी कामयाबी के रास्ते में दीवार बन जाएगी। वो डरते हैं कि तुम्हारी माँ, जो शहर में इतनी सम्मानित टीचर है, मुझे कभी स्वीकार नहीं करेगी।
0: मेरी माँ ऐसी नहीं है नेहा, उन्होंने मुझे सिखाया है कि इंसान की पहचान

उसके बैंक बैलेंस से नहीं, उसके ईमान से होती है। चलो आज तुम उनसे मिलो, वो तुम्हारी सच्चाई देखकर तुम्हें सीने से लगा लेंगी।

0: माँ, ये नेहा है, मैं चाहता था कि आप इससे मिलें।
1: पाए लागू माँ जी।
2: अरे बस बस, जीती रहो बेटी, बैठो यहाँ मेरे पास। राज, तुम जाओ, हमारे लिए जरा चाय बनवाओ, मुझे नेहा से कुछ बातें करनी है।
0: अच्छा जी।
2: नेहा, तुम्हारी आंखों में एक अजीब सा ठहराव है, जैसे तुमने बहुत कम उम्र में बहुत कुछ देख लिया हो।
1: जी, पापा अक्सर बीमार रहते हैं, कभी हमारे पास सब कुछ था, पर आज एक पुराने किराए के मकान में रहते हैं। मुझे डर लगता है कि मेरी ये गरीबी राज के चमकते हुए करियर में कोई रुकावट ना बन जाए।
2: गरीबी रास्ता रोकती है नेहा, पर मंजिल नहीं बदलती। अगर तुम्हें चुनना हो, एक तरफ बेहद दौलत हो और सुकून ना हो, और दूसरी तरफ सिर्फ एक वक्त की रोटी हो पर इज्जत हो, तो तुम किसे चुनोगी?
1: इज्जत तो माँ जी, दौलत तो हाथ की मैल है, आज है कल नहीं, पर जो इज्जत एक बार चली जाए वो दुनिया की सारी दौलत से भी वापस नहीं खरीदी जा सकती। मेरे पापा ने यही सीखा है और उन्होंने मुझे भी यही सिखाया है।
2: बहुत बढ़िया, तुम्हारे पिता ने तुम्हें सही सबक दिया है। नेहा, जिंदगी में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो रिश्तों को दौलत से तोलते हैं और एक वो जो उन्हें रूह से निभाते हैं। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या लगता है असल में प्यार क्या है?
1: मेरे लिए प्यार कोई सौदा नहीं है माँ जी, प्यार तो एक जिम्मेदारी है। अगर हम किसी का हाथ पकड़ते हैं तो उसका मतलब सिर्फ उसकी खुशियों में शामिल होना नहीं, बल्कि उसके दुखों का हिस्सेदार बनना भी है।
2: वाह नेहा, तुमने वही बात कही जो बरसों पहले मेरे पिताजी ने मुझसे कही थी। जिंदगी जीने का ढंग वही है बेटी, जहाँ तुम्हारे उसूल तुम्हारी औकात से बड़े हो। राज ने बिल्कुल सही लड़की चुनी है। तुम्हारे पास दौलत भले न हो, पर तुम्हारी समझ और तुम्हारी सोच ही इस घर की असली रौनक बनेगी।
1: शुक्रिया माँ जी, मुझे लग रहा था कि शायद आप मुझे
2: ठुकरा दूंगी। नहीं बेटी, मैंने जिंदगी में सौदा करने वालों को बहुत करीब से देखा है, इसलिए मैं सच्चाई की कदर करना जानती हूँ। तुम मेरे घर की बहू नहीं, बेटी बनकर आओगी।

0: नेहा बेटी, बेटी मेरी बात समझो तो। ऐसा है कि वो बड़े लोग हैं, राज एक बड़ा ऑफिसर है, हमारी हैसियत तब उनके सामने क्या है। हम उनके दरवाजे पर रिश्ता लेकर जाएंगे ना तो वो स्वीकार नहीं करेंगे, नहीं करेंगे स्वीकार।
1: नहीं पापा, आप गलत सोच रहे हैं। राज की माँ बहुत अच्छी हैं। उन्होंने मुझसे कहा था कि इंसान की कीमत उसके कपड़ों से नहीं, उसके संस्कारों से होती है। आप बस मेरे साथ चलिए।
0: नेहा, मैं वहाँ गया तो लोग क्या कहेंगे? एक दिवालिया बाप अपनी बेटी का सौदा करने आया है।
1: पापा, प्यार में सौदा नहीं होता, ये बात आपने ही तो मुझे सिखाई थी। चलिए मेरे साथ।
0: चलो बेटी, चलो जैसा तुम कहो।

0: सी लाइब्रेरी और गार्डन दिखा दूं? उसे किताबें बहुत पसंद है।
1: हाँ बेटा, क्यों नहीं। नेहा, ये घर अब तुम्हारा ही है, जाओ राज के साथ घूम कर आओ।
2: जी पापा, मैं अभी आई, आप बातें कीजिए।
3: ठीक है बेटी।
1: मोहन, नाश्ता ठंडा हो रहा है, चलिए शुरू कीजिए।
3: सीता, मैं यहाँ बैठने के काबिल नहीं हूँ। जब मैं इस शानदार घर में दाखिल हो रहा था ना, तो हर दीवार मुझसे पूछ रही थी कि मोहन तुमने किस चीज का घमंड किया था।
1: अमीरी और गरीबी दिमाग में होती है, हालात में नहीं। तुमने अमीरी को जिंदगी समझा और मैंने संस्कारों को।
3: सीता, मुझे माफ कर दो। सीता, मैंने तुम्हारे प्यार को एक बिजनेस डील समझा। सोचा था कि एक गरीब की बेटी हमारे खानदान की शान नहीं बन सकती, लेकिन देखो ना, आज मेरी शान नीलाम हो गई। मैं सड़क पर आ गया और तुमने बिना किसी सौदे के ऐसी बुलंदी पाई यहां जहां मैं सर उठाकर देख भी नहीं सकता।
1: मोहन, आज तुम डर रहे थे ना कि एक अमीर अफसर की मां तुम्हारी बेटी को ठुकरा देगी। अगर मैं वैसी ही होती जैसा तुमने सोचा था, तो शायद आज तुम्हारी बेटी का दिल टूट जाता। मगर मैंने नेहा को उस दिन पसंद कर लिया था जब मुझे ये भी नहीं पता था कि वो तुम्हारी बेटी है।
3: सीता, क्या तुम्हें सच में नहीं पता था?
1: बिल्कुल नहीं। हाँ, मगर मैंने उसके अंदर वो सच देखा जो तुम कभी मेरे अंदर देख ही नहीं पाए। मैंने उससे वादा किया था कि उसे इस घर में वो इज्जत मिलेगी जो हर बेटी का हक है।
3: सीता, मैं कैसे कहूँ तुम्हें अभी। सीता, तुमने मेरे सब पाप धो दिए। सीता, मैंने जो तुम्हारे साथ किया उसके बदले में तुमने मेरी बेटी को प्यार देकर सब भुला दिया। तुमने इससे बड़ी सजा और इससे बड़ा इनाम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो सकता। सीता,
1: सजा और इनाम देने वाली मैं कौन होती हूँ मोहन, ये तो वक्त का फैसला है। बस इतना याद रखना, रिश्तों में जब तक हिसाब किताब रहता है तब तक वो रिश्ते नहीं, सौदे होते हैं। और मेरे घर की बुनियाद प्यार पर है, और प्यार में सौदा नहीं होता।
3: मेरे दिल का बोझ हल्का हुआ है सीता, तुमने मुझे इंसान बना दिया। सच में शुक्रिया अदा करता हूँ मुझे इंसान बनाने के लिए। सच में तुम्हारा शुक्रिया।

आकाशवाणी दा ए जलंधर केंद्र है। रात दे 10 बज चुके ने। पेश ने मुख खबरां। सरकार दा कहना है कि देश विच किसी भी पेट्रोलियम उत्पाद की कोई कमी नहीं है। 60 दिनों का कच्चा तेल, 60 दिनों लई कुदरती गैस अते 45 दिनों का एलपीजी भंडार मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सोमनाथ मंदिर अमृत महोत्सव आने वाले हजारां सालां लई भारत दे दृष्टिकोण नूं प्रेरित करेगा। उन्होंने मंदिर मुड़ उसारी दे 75 साल पूरे होने ते महापूजा कीती। केंद्र सरकार ने विकसित भारत जी राम जी रुजगार अते आजीविका मिशन ग्रामीण कानून 2025 नूं लागू करन लई एक नोटिफिकेशन जारी कर दिती है। पंजाब राज चोण कमिशन वालों सूबे दीआं 105 स्थानक संस्थावां लई चोणां 26 मई नूं करवाउण दा ऐलान। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने अज कहा है कि भारत मल्टी लेन फ्री फ्लो MLFF बैरियर मुक्त टोल वसूली सिस्टम की शुरुआत नाल टेक्नोलॉजी आधारित शाहराह प्रबंध के एक नवे युग विच प्रवेश कर गया है। पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड ने 10वीं जमात का नतीजा ऐलानिया। पास फीसद 94.52% रही। कुड़ियों वालों मुंडियां नूं पिछे छड़दिया फरीदकोट के जैतों की हरलीन शर्मा रही अव्वल। जलंधर पुलिस कमिश्नरेट ने जिले में अमन कानून की व्यवस्था बनाए रखने समूह रेस्टोरेंट क्लब और होर अजिहियां लाइसेंसशुदा खाण पीण वालियां थावां अद्धी रात 12 बजे तक मुकम्मल बंद करन दे हुकम जारी कीते। भारतीय टेक्नोलॉजी संस्थान रोपड़ ने अज UVI कंसल्टेंसी प्राइवेट लिमिटेड नाल एक समझौता पत्र ते दस्तखत कीते। गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर ने वकारी आलम यूनिवर्सिटी रैंकिंग फॉर इनोवेशन विच यूनिवर्सिटी ब्रांड अते प्रतिष्ठा दी श्रेणी विच विश्व पद्धर ते 78वां स्थान प्राप्त कीता। अते मौसम विभाग वल्लों अज पंजाब दे वख-वख हिस्सियां विच हनेरी नाल चक्खड नाल बिजली लिशकण बारे ऑरेंज अलर्ट जारी। मीडियम 343.6 मीटर यानी 873 किलो हर्ट्स ते DTH दी आकाशवाणी पंजाब सेवा दा ए जलंधर केंद्र ए। तुसी साडे प्रोग्राम वेव्स ऐप राही भी सुन सकते हो। ते लो हुण सुनो पंजाबी कवि सभा। भाग लैण वाले कवि ने अमरजीत कौंके, बलविंदर सिंह पट्टी, हरमीत विद्यार्थी ते परमजीत सिंह।

0: ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗਾਈ ਇਸ ਗਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦਾ ਗਜ਼ਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਵਸ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪਲਾਂ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਰਾਤ 11 ਵਜੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸੁਣੋਗੇ ਹਿੰਦੀ ਸਮਾਚਾਰ।
1: ਨਮਸਕਾਰ, ਆਕਾਸ਼ਵਾਣੀ ਸਮਾਚਾਰ ਕੇ ਸਾਥ ਮੈਂ ਸਰ ਫਿਰੋਜ਼ੀ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम एशिया संघर्ष को एक दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक बताया है। उन्होंने राष्ट्रीय संसाधनों पर बोझ कम करने के लिए नागरिकों से एकजुट होने का आह्वान किया है। वडोदरा में सरदार धाम छात्रावास का लोकार्पण करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि निरंतर प्रयास कर रही है कि इस स्थिति का देशवासियों पर कम से कम प्रभाव पड़े। प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से सात सूत्री अपील को अपनाने का आग्रह दोहराया।
2: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टाले।
1: प्रधानमंत्री ने देशवासियों से विदेशों से आयातित उत्पादों का उपयोग कम करने और विदेशी मुद्रा के व्यय से जुड़े व्यक्तिगत कार्यों से बचने का आग्रह किया। इससे पहले प्रधानमंत्री सोमनाथ अमृत महोत्सव में शामिल हुए। श्री मोदी ने कहा कि सोमनाथ मंदिर अटूट आस्था, दिव्यता और देश की शाश्वत आत्मा का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि सोमनाथ अमृत पर्व केवल अतीत का उत्सव नहीं है, बल्कि ये आने वाले 1000 वर्षों तक देश की प्रेरणा बनेगा। प्रधानमंत्री ने सोमनाथ अमृत पर्व पर एक विशेष डाक टिकट और 75 रुपये का विशेष सिक्का भी जारी किया। केंद्र सरकार ने कहा है कि पेट्रोलियम उत्पादों की कोई कमी नहीं है। कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का 60 दिन और एलपीजी का 45 दिन का भंडार उपलब्ध है। विदेशी मुद्रा भंडार 703 अरब डॉलर के स्तर पर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में आज नई दिल्ली में हुई मंत्री समूह की बैठक में ये जानकारी दी गई। भारत उन चुनिंदा देशों में से है जहां पश्चिम एशिया संघर्ष शुरू होने के 70 दिन के बाद भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं। सरकार ने कहा कि लोगों को घबराने या ईंधन और अन्य उत्पादों की अत्यधिक खरीद करने की आवश्यकता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार से संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली के 6 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे, जहां वे राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सहयोग सहित द्विपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री नीदरलैंड जाएंगे, जहां वे किंग विलियम अलेक्जेंडर, क्वीन मैक्सिमा और प्रधानमंत्री रॉब जेटन से मिलेंगे। तीसरे चरण में प्रधानमंत्री स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, जहां वे प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ

व्यापार, हरित ऊर्जा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उभरती तकनीकों समेत कई क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नॉर्वे में तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। इस दौरान भारत और नॉर्डिक देशों के बीच तकनीक, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री इटली जाएंगे, जहां वे राष्ट्रपति सर्जियो मैटारेला और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि ये यात्रा यूरोप के साथ भारत के व्यापार और निवेश संबंधों को और मजबूत करेगी। प्रवर्तन निदेशालय ने आज पश्चिम बंगाल सरकार के पूर्व अग्निशमन और आपातकालीन सेवा मंत्री सुजीत बसु को दक्षिण दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले के सिलसिले में कोलकाता से गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान नगर पालिका में नौकरी दिलाने के बदले सुजीत बसु पर धन और अन्य लाभ लेने का आरोप है। असम में कल हेमंता बिस्वा सरमा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। गुवाहाटी में शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग के निमंत्रण पर 13 से 15 मई तक चीन की यात्रा पर रहेंगे। चीन के विदेश मंत्रालय ने आज ये जानकारी दी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैसेज भेजे ने टी डी मल्होत्रा, रितिक मल्होत्रा, प्रतीक, अनिल, जयवीर, डॉक्टर अमनदीप। कालका तो शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज। पिंड उगाला, जिला अंबाला, हरियाणा तो सानू मैसेज भेज रहे ने रजिंदर कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी, राघव, हरमन ते पूरा परिवार। बहुत बहुत शुक्रिया जी इन्ना प्यारा मैसेज भेजन दे लई। तुसी बहुत सारे फुल पत्तियां बना के नाल नाल भेजियां, बहुत बहुत धन्यवाद। कनेरा महला पटियाला तो सानू मैसेज भेज रहे ने मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता, नितिन, पलक, करण, गीतू, निहारिका, हार्दिक ते वंश बत्ता। यह सुनना चाहते ने अमरिंदर गिल दा कोई भी पंजाबी गीत। बिल्कुल जी, तुहाडी फरमाइश जरूर जरूर पूरी करांगे, बस प्रोग्राम नाल इसे तरह बने रहो। सरहंदी बाजार पटियाला तो प्रेम कुमार रहेजा, कांता राणी, चरण रहेजा, डैनी, नीतू, जोत ते सजनी, इन्हां दा भी बहुत बहुत स्वागत है जी। गुरप्रीत सिंह, वीर सिकंदर सिंह, बिलिंग, पिंड टंगेड़िया, जिला फतेहगढ़ साहिब तो सानू मैसेज भेज रहे ने, बहुत बहुत स्वागत तुहाडा जी। अगला मैसेज भेज रहे ने महेश, मंडी हरजी राम मलोट तो। सुखदीप सिंह, नरिंदर कौर, सनी मनी, काका बिट्टू, लाडी मोहन, जनक नगर, जलंधर तो मैसेज भेज रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी, इन्होंने नाल बड़ा प्यारा एक इमोजी भेजा, तो बहुत बहुत शुक्रिया सुखदीप सिंह जी इन्ना प्यारा मैसेज भेजने लिए। तो आओ हुण सुनते हैं जी प्रोग्राम की अगली पेशकश, दिलशाद अख्तर का गाया हुआ अवला गीत।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਸੁਗਾਤ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ ਦਿਲਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਖਤਰ ਦਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਗੀਤ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ,
1: ਹੈਲੋ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।
0: ਹਾਂਜੀ, ਕੌਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ?
1: ਸਰ, ਮੈਂ ਸੰਤੋਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਔਰ ਸਰ ਮੈਂ ਪੁਲਿਕਾ ਕੇਰਲ ਸੇ ਬੋਲ ਰਹਾ ਹੂੰ। ਸਰ,
0: ਆਪਕਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਹੈਲੋ
1: हेलो
0: संतोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्रोग्राम सुगात में। कैसे
1: सर,
0: हैं
1: आप? आपका भी बहुत। सर, मैं आपको एक चीज बोल रहा हूँ, मीठी बोली बोल के
0: जी,
1: मीठी बोली बोल के बताओ अपना दिल बहलाने के लिए।
0: वाह वाह, तो शुरू शारे भी करते हैं संतोष जी।
1: मैं पूरा है ना, मैं सर मैं आपको एक चीज बोल मैं दोबारा सुनाता हूँ सर। मैं 1991 से मैं जुटा हुआ हूँ मैं इस मेन प्रोग्राम पे। सर, मैं आपको एक चीज में बोल रहा हूँ, मोमबत्ती तो मोमबत्ती होता,
0: बोलिए,
1: मोमबत्ती तो मोमबत्ती होता, मैं तो अगरबत्ती को जलती हुए देखे हैं। इंसान तो क्या, प्यार की राहों में भगवान को भी डर डर का ठोकर खाते हुए ब्लैक एंड व्हाइट टेलीविजन पे देखे हैं।
0: अरे वाह वाह वाह, क्या बात है
1: सर। जो भी है ना, मैं जो भी सीखा हुआ हूँ, और मैं जब है ना सर, मैं पंजाब में था, मैं जब मैं आया था, मैं उस समय मेरा उम्र 11 साल था। मैंने घर से मैं उदाहरण भाग के आया था, और जो भी हूँ सर, जो भी हूँ, और मैं पंजाब से, मैं इसके बोले तो जो भी हूँ मैं, और जो भी आप सबका प्यार है
0: बिल्कुल,
1: और मैं अच्छा हूँ। मैं पंजाब मेरे दिल में है, और मैं केरल में हूँ, और मेरे को कोई भी नहीं रोक सकता है सर। और मेरे पास में इतना हुनर है ना, मैं लाइन में हूँ, बिजली मिस्त्री हूँ मैं।
0: अरे वाह, बहुत खुशी हुई आपसे बात करके।
1: मेरे को नहीं रोक सकता कोई मेरा है ना। मैं ये सर, मैं 2 दिन छुट्टी मार दूं ना, ये पूरा है ना मेडिकल ये है ना। मैं जी,
0: शायद आपका आवाज कट रहा है संतोष जी, आज जल्दी से बता दीजिए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
1: क्या सर,
0: आपका आवाज कट रहा है, जल्दी बताइए कौन सा गीत सुनना चाहते हैं आप।
1: सर, आप है ना अपना मन पसंद का सर, ये ना मैं ये चीज बोल रहा हूँ सर, इंसान को कभी सच्चाई पे चलना चाहिए सर। मैं आपको एक चीज बोलूं मैं सर
0: जी, बोलिए।
1: जिसका नाम लिया
0: जी,
1: दिल ने जिसका नाम लिया मैंने उसका दामन थाम लिया। दिल ने जिसका नाम लिया मैंने उसका दामन थाम लिया। जब जब दिल पे दर्द हुआ तो मैं सिर्फ आपका नाम लिया।
0: अरे वाह, चलिए आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा संतोष जी। हम आपके लिए एक सुंदर सा गीत सुना रहे हैं, उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छा लगेगा। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हेलो
1: हेलो। हाँ जी सर,
0: हेलो,
1: हेलो सर, रंजीत
0: सत श्री अकाल जी। कौन बोले ने? हेलो,
1: बोल रहा हूँ, बॉर्डर तो।
0: हाँ जी, रंजीत जी बोल रहे ने शंभू बॉर्डर तो। बहुत बहुत स्वागत है जी थोड़ा प्रोग्राम सुगात विच। की हाल चाल है? वधिया ही चाहिए। तो अज केड़ा की सुनवाइए जी?
1: जितने ज्यादा सुनाओ जी।
0: ठीक है जी, कॉल करने लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोई खास किस सुनना, कोई सुना दिए।
1: बड़ा छोटी फॉर्म।

आप अपनी पसंद का कोई भी गीत सुना दें, इस तरह लिख के भेजें हैं, मजहर अंसारी, रजिया अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, और इन्हों का बहुत बहुत स्वागत है जी प्रोग्राम सुगात विच। जवाहर नगर तुर्ग तो आरसी कांबड़े, करुणा मीना ते बहुत सारे साथी है सुनना चाहते ने सुरजीत पिंदरखिए का कोई भी पंजाबी गीत। बिल्कुल जी थोड़ी पसंद का गीत तक पहुँच रहा, बस प्रोग्राम के नाल इस तरह बने रहो। उपरकोट मोहल्ला बुलंदशहर तो मुहम्मद सईद अब्बासी, निगत प्रवीण अब्बासी, शहनवास तो बहुत सारे साथी यह सुनना चाहते ने गुरदास मान की आवाज़ों में कोई भी पंजाबी गीत। इन्हें सब की रली मिली फरमाइश से आओ सुनते हैं जी प्रोग्राम की अगली पेशकश।

मेरे मेहरबान दोस्तों, मैं आप सब सूझवान स्रोतियां ते दर्शकों का बेहद शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपने निमाणे जे माण नूं माण बख्शा है। ते मेरी भी आप सब लई इहो दुआ है, जेड़ा अज तक होया ना होवे, मैं ऐसा थोनू प्यार दिया। मेरी उम्र हजारां साल होवे, हर साल थोड़े तो वार दें। सो गीत पेश है कि जदों दिलां दी वही ते इश्क दे खाते खुल दें, ते हर दिल चो आवाज की निकलती है।

हरे नमस्ते हरे नमः, हर हर करत नहीं दुख जमै। ए फरमान प्रभु दे अनन प्यारे भगत भगत नामदेव जी द्वारा उचारित है। भगत नामदेव जी दुखां दा नास करन वाले करता पुरख नू नमस्कार करदे हन, उदे अग्गे सीस निवांदे हन। नमस्कार करन दा रवायती ढंग दंडवत होके नमन करन दा सी। राग बिलावल विच साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी अकाल पुरख दे चरना विच बेंती करदे ने कि हे प्रभु जीओ, आप जी मेरे प्राणा दे आसरे हो, मैं आप जी दे अग्गे दंडवत होके नतमस्तक हुंदा हां ते आप जी तो अनेकां वार बलिहार ने जांदा हां। प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार है, नमस्कार दंडौत बंदना अनेक बार जाओ बार है। सरवण करदे हां भाई गुरमेल सिंह ते उन्हां दे रागी जत्थे वल्लों गायन कीता होया।

प्रभ जी, तू मेरे प्राण आधार है। नमस्कार दंडौत वंदना, अनेक बार जव बार है। आप जी सरवण कर रहे सो भाई गुरमेल सिंह ते उना दे रागी जत्थे वालों गायन कीता होया ए शब्द। साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहेब जी दे अंग 1301 ते साहेब श्री गुरु अर्जन देव जी द्वारा कानुड़ा राग विच उचारित शब्द सुशोभित है, जिस विच आप जी नर रूप विच अकाल पुरख दे अवतार नू ते कुल मनुखां दी पत रखण वाले नरपत नू नमस्कार करदे ने। आप जी उस मुक्तिदाता अकाल पुरख तो बलिहार जांदे ने। नारायण नरपत नमस्कार है, ऐसे गुर कौ बल बल जाइए, आप मुकत मोहितार है। सरवण करदे हां डॉक्टर अलंकार सिंह होरां द्वारा गायन कीता होया।

0: नारायण नरपत नमस्कार है। इस शब्द का गायन कीता सी डॉक्टर अलंकार सिंह होरा। हुण सरवण करदे हां इस शब्द दी व्याख्या। व्याख्याकार ने ज्ञानी गुरलाल सिंह।
1: कानड़ा महला पंजवां कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोह तारै रहाओ। कवन कवन कवन गुण कहिए अंत नहीं कछ पारै लाख लाख लाख कई कोरै को है ऐसो बेचारै। विषम विषम विषम ही पई है लाल गुलाल रंगारै कहो नानक संतन रस आई है ज्यो चाख गूंगा मुस्कारै। ए पावन शब्द शहीदां दे सिरताज बाणी के बोहित पंचम पातशाह धन धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी दा कानड़ा राग अंदर उचारण कीता होया। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन अंग 1301 ते सुभाए मान है। रहाओ दियां तुकां अंदर पंचम पातशाह कृपा करदे हन नारायण नरपत नमस्कार है। ऐसे गुरु को बल बल जाइए आप मुकत मोह।

देस तिसे आदेस, आद अनिल अनाद अनाहत, जुग जुग एको वेस। आप जी सरवण कर रहे सो भाई इकबाल सिंह ते उना दे रागी जत्थे पासों इना पौड़ियां दा गायन।

विशेषता है इस भजन में। भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों का वर्णन एक साथ प्रत्येक पंक्ति में किया गया है।

ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ। ਆਸ ਅੰਦੇਸੇ ਤੇ ਨਹਿ ਕੇਵਲ ਹਉਮੈ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾ।

0: कलकला भरपूर है तू सच्चा साहिब सच वाले हो जिन की सो पार पया कहो नानक करते किया बाता जो पिछ करना सो कर रहा महला दूजा
1: जोग शब्द ज्ञान शब्द वेद शब्द ब्राह्मण है खत्री शब्द सूर शब्द शूद्र शब्द प्राकृत है।

अनुमान अकल लिखला की पारस पेटिया छह करे सतगुर प्रसाद परम पद पाया भगत पाए पंडार परे मिटिया जनमान मरण पो भागा चित लागा संतोष तरे कब काल ठोकर

संतोख सरोवर बस है अमर अस्त्र सिंह प्रकाश है बिलत तान उपजे दुख निरंतर नाश है दुख सागर पायो तिंत हर मग न हुटे पंचम सत संतोख नील सनाम उठे तत्व प्रमाण बिना सिरे हो व्याख्या स्तूप बचायो गुरु रामदास कल उतरे ते अभय अमर पद पायो जग तो सत्य प्रमाण मन एक के आयो धन धन सतगुर अमरदास जिन नाम दृढ़ायो नाम जिन नाम धान रिद सिद्ध तत् दास की कै सरोवर मिले हो पुरख भेटे हो अविनाशी आदले भगत

जगत उदाहरण नव निदान भगत पवतारन अमृत बूंद हरना मिसकी पिखे निवारन सहज तरोवर फलो ज्ञान अमृत फल लागे गुर प्रसाद पाई है तन ते जन वट भागे ते मुक्ते पे सतगुरु शब्द मन गुर पच्चा पायो गुर रामदास कल उतरे ते शब्द ईसान बुझायो गुर रामदास कल उतरे ते शब्द ईसान बुझायो।

बिचारे काम क्रोध खो वह जियो की अनसपन दाता अगम ज्ञान देखे आता एन सत्यान पावे पलक न सो वह जियो जाको देख कदरत कर जावे नाम सो निदान पावे।

संबंधी नूरर सों कुरसों चटिया दुद दिछे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म

सोई गन्हो अपागा, चरण कमल जाका मन रागियो।

नानक मेरे शरीर का एक रथ एक रतवाह हो जुग जुग फिर बिटाए ज्ञानी बुझता सात जुगरा संतोखा धर्म ग्रथवा।

नानक तो मुखंतर पाहे। जुज में जोर चली चंद्रावलकार कृष्ण जादम पाया पार जात गोपी लाया वृंदावन में रंग किया।